सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 14 मई 2026। सवेरे के 5:55 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही समय में प्रातः के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में रिले किया जाएगा।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क

0: समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
2: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

साई कहते हैं भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे।

हे कान्हा, जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए, न जाने कैसे हम आपके काबिल हुए। न भूलेंगे हम उस हंसी पल को जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए।

सब कहते हैं कि कामयाब बनो दुनिया सलाम करेगी, सब कहते हैं कि सलाम करो कामयाब बनो दुनिया सलाम करेगी, मैं कहती हूँ मोहम्मद के ग़ुलाम बनो कामयाबी खुद तुम्हें सलाम करेगी।

वाहे गुरु तेरी थोड़ी सी दृष्टि जो मुझ पर हो जाए, वाहे गुरु तेरी थोड़ी सी दृष्टि जो मुझ पर हो जाए, मेरे कर्म सफल हो जाए, मेरा जीवन सवर जाए।

मुरली सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछे मोहन का, सब कुछ राधे राधे है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कलाकार थे मनहर उदास, अनुराधा, साजन बाबू, हरप्रीत कौर और चित्रा सिंह।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.99 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। छह बजकर 30 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का चिंतन, विषय है मेहनत।
1: मनुष्य अपनी सभ्यता के विकास के साथ अपनी मेहनत से जीवन के समस्त क्षेत्रों को समृद्ध और प्रशस्त करता आया है, लेकिन संसार में प्रमुख रूप से दो प्रकार के मनुष्य देखे जाते हैं, एक तो भाग्यवादी और दूसरे कर्मनिष्ठ या मेहनती। सभी सुख समृद्धि चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, लेकिन मेहनत या कर्म के बिना सुख और शांति नहीं मिल सकती। जहां एक ओर भाग्यवादी एकमात्र भाग्य का आश्रय लेकर निष्क्रिय बनकर दुखद जीवन बिताते हैं, वहीं दूसरी ओर मेहनती परिश्रमी मनुष्य भाग्य को छोड़कर सतत और अथक श्रम से मेहनत करता है और हमेशा प्रसन्नचित रहता है। जीवन में मेहनत या परिश्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। मेहनत के बिना कोई भी मनुष्य धन, विद्या, कला आदि के क्षेत्र में कुशलता नहीं प्राप्त कर पाता है। सुख, शांति और समृद्धि श्रम पर आधारित होने के कारण उसके लिए कल्पनातीत रहती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य को इस संसार में नित्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म या मेहनत से ही जीवन गतिशील रहता है। कर्म के लिए ही श्री कृष्ण का यह भी उपदेश था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कभी नलिन का भी कथन है कि जीवन एक सुमन मानो तो सौरभ उसका श्रम है, देवों की वरदान शक्ति भी इसके आगे कम है। दृढ़ संकल्प की शक्ति के द्वारा निष्ठा या श्रम के बल से ही धरती का कायाकल्प होता है। यह पृथ्वी उन्हीं मेहनतियों के लिए है जो इसका अमृत मंथन करते हैं, जो अपनी मेहनत से रेगिस्तान को जोतकर पर्वतों को काटकर जल

0: से सींचकर पृथ्वी के सूखे अंचल को हरा भरा बना देते हैं। इसी संदर्भ में आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा है कि कर्म श्रेष्ठ है, कर्म ही सिद्धि मंत्र है, कर्म ही मनुष्य के जीवन को पवित्र और अहिंसक बनाता है। मानव जीवन में अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, कष्ट निवारण के लिए, समस्या के समाधान के लिए, जीवन संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए अपनी मेहनत जितनी सहायक सिद्ध होती है उतना अन्य कोई नहीं। इसीलिए सर्वांगीण उन्नति के लिए मनुष्य को शारीरिक तथा मानसिक श्रम से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि जिन व्यक्तियों ने भाग्य का पल्ला छोड़कर कर्म पथ पर पग बढ़ाया उन्होंने ही इतिहास का निर्माण भी किया। श्री कृष्ण अगर भाग्याश्रित ही रहते तो ग्वाले का जीवन बिताते, नादिर शाह आजीवन ईरान में भेड़ों के झुंड को ही चराते, स्टालिन पारंपरिक जूते बनाने का ही काम करते, गोरकी कूड़ा कचरा ही बीनते, मुंशी प्रेमचंद साधारण प्राइमरी पाठशाला के सहायक अध्यापक ही रह जाते। लेकिन इन सब ने अपने दृढ़ संकल्प से, अटूट लगन से, अथक परिश्रम मेहनत से आज इतिहास में अपना स्थान अमर बना दिया। मेहनती मनुष्य सिंह के समान पराक्रमी होता है और अपने ही परिश्रम से लक्ष्मी पाता है। भाग्य देगा ये कायरों का नारा है। मेहनत के बिना शक्तिशाली शेर भी अपना खाद्य नहीं पा सकता, उसे भी प्रयास करना पड़ता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्थ सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत में सब कुछ संभव है, यहां कुछ भी असंभव नहीं है। बस दृढ़ संकल्प से, अटूट लगन से, मेहनत कर्म करने की देरी है। समय पर किया गया परिश्रम समय पर पोए गए बीज की भांति कई गुना अधिक सुख फल देता है और समय बीतने पर तो केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। महामना मदन मोहन मालवीय ने अपनी कर्मठता के आधार पर ही घर घर द्वार द्वार जाकर परिश्रम से धन एकत्रित किया और वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज उनकी गाथा गाता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर भी सतत सचेष्ट, कर्मठ, परिश्रमी, बुद्धिमान मनुष्य की ही सहायता करता है। उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र साहाय्यकृत विभु।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, विषय था मेहनत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश, जानकारी युवाओं में बढ़ता हृदय रोग। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अशोक आलोक सिंघल।
2: श्रोताओ आपका स्वागत है। श्रोताओ आप जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां समय समय पर हो जाती हैं। वैसे तो हमारे शरीर के सभी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब दिल की बात होती है तो हम कुछ ज्यादा सचेत हो जाते हैं, यानी हृदय रोग से बहुत हम घबराते हैं। और जिसके बारे में सुनते हैं कि वो व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है तो थोड़ा चिंता बढ़ जाती है, क्या कारण है। और विशेष रूप से ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सामान्य रूप से हम समझते हैं कि 50 साल से या और अधिक उम्र दराज लोगों में होती है, लेकिन आजकल देखा गया है कि ये कम उम्र के लोगों में, विशेष रूप से युवाओं में, ये समस्या बढ़ रही है। क्या कारण है और क्या इसका निदान है, इस पर हम बात करेंगे। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक सिंघल, जो कि वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ है रामपुर में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, लेकिन परेशानी यह है कुछ संस्थाएं और डॉक्टर्स तो इस बात पर बहुत गंभीर हैं
2: जी,
3: लेकिन यूथ वो इन बातों को ठीक से नहीं समझ रहा है। जिसमें मॉडर्न लाइफ स्टाइल या जिसे कहते हैं हम एक फ्री लाइफ स्टाइल की तरफ इतना चला गया है
2: जी,
3: कि वो सुनने को तैयार ही नहीं है। सबसे बड़ी ट्रेजिडी यही है कि यूथ
2: जी
3: इन चीजों को सीरियसली नहीं ले रहा,
2: इग्नोर कर रहे हैं।
3: अब रही हार्ट अटैक की बात, ऐसा सब जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या बीमारी है। जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा
2: जी।
3: हार्ट के अंदर कई नलियां होती हैं, 3 मेन होती हैं, 3 उससे कम मेन होती हैं। तो जब भी कोई नली 100% ब्लॉक हो जाती है, उसके आगे खून नहीं जाता है, तो वो हिस्सा हार्ट का डेड हो जाता है, इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और जब हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाएगा तो उसकी पंपिंग

0: फंक्शन कम हो जाएगा और हार्ट वीक हो जाएगा।
1: जी
0: उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम होगी कि आपकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी।
1: हाँ।
0: अब सवाल यह है कि ये प्रॉब्लम्स यंग में क्यों हो रही हैं? 50 के ऊपर या 40 के ऊपर ये प्रॉब्लम होती थी
1: जी।
0: अब हम खूब कॉमनली देख रहे हैं कि 30 ईयर्स की एज, 25, 26 और 30 साल से ऊपर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। नाउ इट इज़ नॉट ए रेयर थिंग,
1: बिल्कुल
0: ये रेयर नहीं है, इट इज़ गेटिंग कॉमन
1: जी।
0: सो इसके कारण क्या हैं? सबसे बड़ा कारण तो होता है जेनेटिक्स, जीन्स।
1: अच्छा,
0: जिनके फैमिली में फर्स्ट ब्लड रिलेशंस में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है
1: जी,
0: उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस 5 times ज़्यादा होते हैं यंग एज में भी। और ये फर्स्ट ब्लड रिलेशन क्या होते हैं
1: जी?
0: फादर, ब्रदर, सन
1: जी,
0: एंड मदर, सिस्टर एंड डॉटर। ये 6 लोग फर्स्ट ब्लड रिलेशन होते हैं। तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम जेनेटिक फैक्टर का इन्फ्लुएंस, असर हमारे ऊपर कम पड़े, ऐसा कर सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा है लाइफस्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफस्टाइल। कहने में तो बड़ा फैसिनेटिंग ऑर्नामेंटल वर्ड है, बड़े लोग यूज करते हैं पार्टीज वगैरह में, करते नहीं है। व्हाट इज लाइफस्टाइल? नाउ जीवन शैली, जीवन शैली में आज की मॉडर्न शैली में हमारा जो शारीरिक श्रम है
1: जी
0: या व्यायाम है, ये बिल्कुल नीचे आ गया। हम लोग बिल्कुल आजकल बैठे रहने के आदि हो गए, जिसे हम कहते हैं काउच पोटैटो।
1: जी जी,
0: द वर्ड नाउडेज इज वेरी पॉपुलर, काउच पोटैटो।
1: बिल्कुल,
0: हम टीवी देखेंगे, हम स्मार्टफोन पे बैठे रहेंगे, हम लैपटॉप पे बैठे रहेंगे। तो एक जो रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम हमारे दिनचर्या का हिस्सा होते थे पहले, आज से 30 साल पहले,
1: जी जी,
0: वो टोटली डिसअपियर हो गए। शायद 1% से भी कम लोग रेगुलर एक्सरसाइज या गेम्स में इन्वॉल्व होते होंगे। ये क्लब का जो एक फैशन हो गया है, वहाँ जाके ड्रिंक्स एंड ड्रिंक्स के साथ हैवी फास्ट फूड खाना
1: जी,
0: ये सब दूसरा, इट इज फ्यूलिंग द प्रॉब्लम, घी में आग का काम कर रहा है ये।
1: बिल्कुल,
0: इसके अंदर कई चीज आ जाती हैं। एक तो एक्सरसाइज खत्म हो गई।
1: हाँ।
0: और जो हम खा रहे हैं उसका कंपोजिशन क्या है? फैट, लॉट ऑफ फैट, क्योंकि फास्ट फूड 2 चीजों से बनता है, रिफाइंड शुगर एंड फैट, सैचुरेटेड फैट। ये दोनों बहुत इंजूरियस हैं उस शरीर को जो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि हमें इन 2 चीजों पे बहुत ध्यान देना है, खाना पीना एंड एक्सरसाइज, जो कि बिल्कुल जीरो हो गया। ये सब कुछ बात कर रहा हूं मैं एक उस सेक्शन की सोसाइटी की जो अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास, इवन जो लोग सोशियो इकोनॉमिक लेबर क्लास में हैं या लो मिडिल क्लास में हैं, वो अब भी लेबर करते हैं
1: जी,
0: और उनमें ये प्रॉब्लम कम है।
1: कम पाया।
0: जेनेटिक के बाद नंबर 2 पे स्मोकिंग आता है। अपने समाज के भले के लिए कि हम प्राइमरी प्रिवेंशन पे ध्यान दें, और बार बार मैं ये कह रहा हूँ जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको दूर करें, उनका इलाज करें।
1: डॉक्टर आलोक सिंघल जी, आप जीवन शैली में बदलाव करके बहुत कुछ अपने दिल के लिए, अपने हृदय के लिए किया जा सकता है, अपने को स्वस्थ रखा जा सकता है। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश में जानकारी, युवाओं में बढ़ता हृदय रोग। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अशोक सिंघल और प्रस्तुति डॉक्टर विनय वर्मा की थी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर के बाद 6:45 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान भाग संख्या 290। कलाकार होंगे सुरेश वाटकर, संगीत सतीश भाटिया का होगा। सात बजे कार्यक्रम लोक रंग में कुछ लोकगीत आप सुन सकेंगे। कलाकार होंगी सावित्री दीक्षित। 7:31 पर फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे पेश किया जाएगा। 8:45 पर सुनना न भूलिए नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 100 एंड

9:25 पर कार्यक्रम गौरव भारत देश के विषय रहेगा हजरत निजामुद्दीन।

9:30 पर उर्दू कार्यक्रम पेश किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे तकरीर उर्दू फ़कत उर्दू नहीं तहजीब है मेरी, मोहतरमा शाहिन बी से। कलाम शायर में सर्वेश कुमार से उनका कलाम सुनिएगा, पेशकश शीबा बी की होगी। दस बजकर 10:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे, 11:00 सुनिएगा धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक जिंदगी के आईने में कड़ी संख्या 1।

11:30 पर श्रोताओं की शब्दावलियों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन पेश किया जाएगा। 12:10 पर गीत आपके नाम आप सुन सकेंगे और 1:15 पर धरती गाती है कार्यक्रम के अंतर्गत नैना देवी श्रीवास्तव की आवाज में कुछ लोकगीत आप सुन सकेंगे।

0: ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग संख्या 290। कलाकार हैं सुरेश वाटकर और संगीत सतीश भाटिया का है।
1: एपिसोड नंबर 290 290।

लंका दहन करके पवनसुत हनुमान सीता जी का समाचार लेकर समुद्र के इस पार आ चुके हैं। प्रभु से निवेदन करते हैं, हे करुणानिधि, अशोक वाटिका में सीता माता का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, अतः शीघ्र ही चलकर दुष्टों का नाश करके उन्हें ले आइए। जनक नंदिनी के क्लेश का वर्णन सुनकर श्री राम की आंखों में अश्रु उमड़ आए। बोले, मन वचन और तन से जिसे केवल मेरा ही आसरा है, उस पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। हे पुत्र, तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला कोई भी देव, मनुष्य अथवा अन्य तनधारी नहीं है। मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हनुमान उनके

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में रिले किए जाएंगे।

0: हिमंत बिश्व शर्मा इत्येषः मुख्यमंत्री रूपेण द्वितीय कार्यकालस्य प्रथम मंत्रिसभायाः अध्यक्षतां कृत्वा प्रसार माध्यमान् संबोधयन् घोषणैः अकरोत्। सर्वकारेण केन्द्रीय अन्वेषण विभागस्य सीबीआई इत्यस्य निर्देशकाय प्रवीण सूद इत्यस्मै एकवर्षस्य विस्तारः दत्तः। उत्तरप्रदेशे धूलि प्रभञ्जनेन सह विद्युत प्रभञ्जनेन वृष्ट्या च गत चतुर्विंशतिहोरासु त्रिचत्वारिंशत् जनाः मृताः। भदोही मण्डले सर्वाधिकाः 15 जनाः मृताः इति सूचनास्ति। पश्चिमबङ्गसर्वकारेण आलुकं पलाण्डुः फल शाकानि तैलबीजादिभिः सह अन्यधान्यानि आवश्यकोत्पादेभ्यश्च अन्ताराज्यस्तरेषु आवागमनाय सर्वे प्रतिबन्धाः उपाहरिताः। अन्ते प्रियाः श्रोतारः, क्रीडावार्तायाम् IPL इति क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ रायपुरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 धर्मशालायां पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस इत्येते दले पुनः क्रीडिष्यतः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7 हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं सावित्री दीक्षित।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग, कलाकार थी सावित्री दीक्षित। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: राष्ट्र राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ मातृभाषा मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
1: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
2: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
0: राष्ट्र राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ मातृभाषा मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश,
1: हमारा भारत देश। भारती।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में 7:18 होने को हैं। अब अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
4: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि अब ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य धान के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल तथा मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने व कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान

0: दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
1: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी। और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो, बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय एवं निदेशालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग तथा आवश्यकता आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
3: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। संशोधित दरें आज से पूरे देश में लागू हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने से 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है।

0: हैं और अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: सबसे ज्यादा मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतें बिजली गिरने, दीवार गिरने और धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के कारण लोगों और वाहनों पर पेड़ गिरने से हुई हैं। कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:32 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे, बस अब से कुछ ही देर के बाद।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे।

0: तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। कीजिए कबूल तरन्नुम का प्यार भरा आदाब और नमस्कार। श्रोताओं, रिश्ता भी क्या खूब होता है, कुछ मीठी नोकझोंक, बहुत सारा प्यार, विश्वास, अपनापन, कुछ छोटी बड़ी शिकायतें और उन शिकायतों में दिल की सारी कड़वाहट, सारी भड़ास निकल जाने के बाद फिर वही खूबसूरत सा एहसास, अपनापन, भरोसा और हर पल साथ निभाने का वादा। जी हाँ साथियों, यही वादा एक दूसरे से हमने भी किया है और देखिए ना, इसी वादे को निभाते निभाते अब आकाशवाणी को 90 साल होने को है और आज भी, कल भी और आने वाले सारे वक्तों में हम यही दुआ करते हैं कि जिस तरह से हम और आप मिलकर इस रिश्ते को पूरी लगन, चाहत और ईमानदारी के साथ निभाते आए हैं, उसी तरह निभाते रहें। आकाशवाणी आपका है और आप सब आकाशवाणी के। इसी तरह अपनी खुशियां, अपने गम हमसे साझा करते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, सुनते और सुनाते रहिए आकाशवाणी के कार्यक्रमों को, क्योंकि रिश्ता तो दोनों ही तरफ से बराबर से निभाया जाता है तो प्यार और बढ़ जाता है। इसी प्यार को बरकरार रखिए, रोज हमसे मुलाकात करते रहिए और यकीन मानिए ये रिश्ता और भी अटूट, प्यारा और मजबूत बन जाएगा।

श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर और नज़र डालते हैं आज यानी 14 मई के इतिहास में देश और दुनिया में घटित कुछ प्रमुख घटनाओं पर। 1999 में सदी का आखिरी विश्व कप क्रिकेट की लॉर्ड्स इंग्लैंड में शुरू हुआ। एक में भारत और मलेशिया में 7 समझौते हुए। 2004 में डेली मिरर नामक पत्रिका ने इराक में युद्ध बंदियों पर कथित अत्याचार को दर्शाने वाली झूठी तस्वीरों के प्रकाशन के लिए ब्रिटेन से माफी मांगी। 1962 में भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 1992 में भारत सरकार ने तमिल टाइगर्स LTTE विद्रोही संगठन पर प्रतिबंध लगाया और 1607 में उत्तरी अमेरिका में अंग्रेज़ों ने अपना पहला स्थायी ठिकाना जेम्स टाउन वर्जीनिया में स्थापित किया। 1657 में मराठा साम्राज्य के छत्रपति और शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म पुरंदर किले पर हुआ। 1702 में इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस और स्पेन के खिलाफ युद्धबंदी की घोषणा की सत्रह सौ छियानबे में ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने पहली बार स्मॉल पॉक्स चेचक का टीका लगाया। श्रोताओं, अब बात करते हैं आज जिन हस्तियों का जन्मदिन है उनके बारे में। 1657 में आज ही के दिन जन्म लिया छत्रपति संभाजी महाराज, जो मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। 1883 में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रसिद्ध वकील संविधान सभा के सदस्य थे, जिनका आज के दिन जन्म हुआ है। 1984 में मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सह संस्थापक का जन्म भी आज ही के दिन हुआ है। 1892 में अरुण चंद्र गुहा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ। अब जानते हैं आज हुए कुछ निधन के बारे में। 2010 में वृंदा करंदीकर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि थे, जिनका निधन 2010 में आज ही के दिन हुआ है। और 2011 में महेंद्र सिंह

टिकैत किसान नेता थे जिनका निधन आज ही के दिन हुआ। 1978 में जगदीश चंद्र माथुर प्रसिद्ध नाटककार, और 1943 में निधन हुआ है अल्लाह बख्श, जो अंग्रेजी शासन के दौरान एक जमींदार, सरकार ठेकेदार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे आकाशवाणी के 90 साल पर विशेष कार्यक्रम अपनी रेडियो साथी तरन्नुम के साथ।

0: AIR at 90.
1: श्रोताओं, आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 साल पूरे करने वाला है। इसी खुशी को साझा करते हुए हमने बात की हमारे एक बहुत ही पुराने श्रोता से। आइए सुनते हैं आकाशवाणी और उनके रिश्ते की कहानी।
2: परिचय दीजिएगा आप पहले।
3: मैं जी सुनील पाठक, अनारकली बाजार जगराओं, पंजाब से जी।
2: जी जी जी, आकाशवाणी के 90 साल होने की खुशी में आप क्या कहना चाहेंगे, अपने क्या विचार साझा करना चाहेंगे हमारे साथ?
3: ये अगले महीने जून की मेरा ख्याल 8 तारीख को जी 90 अपना साल हो जाएंगे।
2: जी जी,
3: तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे 46 साल हो गए जी आकाशवाणी से जुड़े हुए जी।
2: जी,
3: मेरी इस टाइम जो एज है वो 63 साल की है जी।
2: अच्छा।
3: जब मैं 15 साल का था तब से मुझे शौक था जी, अपना हमारे यहाँ जलंधर रेडियो स्टेशन था, वहां से फरमाइश आती थी
2: जी।
3: और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जब कईयों के नाम आते थे, हमारे जगराओं से भी एक सुरेंद्र भाटिया थे
2: जी।
3: उनका नाम आता था, मैंने बड़ी बार सोचा कि क्या कैसे इसका नाम इनका नाम रेडियो में आ रहा है जी।
2: जी जी,
3: बहुत ही मुझे यानी कि उस वक्त लग रहा था कि नाम देखो उनका, अब वो बैठे जगराऊं और उनका जलंधर से नाम आ रहा है, वो इनका नाम कैसे आ रहा है, क्योंकि उम्र से छोटी थी जी, 15 साल था। तो मैंने एक दिन उनकी दुकान पर चला गया जी, सुंदर भाटी की दुकान है, हमारी दुकान की थोड़ी सी आ गई है
2: जी।
3: तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब अभी आपका नाम, मैंने कल रात को 10:30 बजे फरमाइश रानी जोशी जी पेश कर रहे थे, उनकी जवानी में आपका नाम सुना था नारकली बाजार जगराओं से सुंदर भाटिया
2: जी।
3: तो मैंने कहा कि मुझे वो उसका भी इसका एड्रेस दे दो, तो मैंने भी लेटर पोस्ट कार्ड डालने हैं। उस वक्त पोस्ट कार्ड 5 पैसे का होता था जी, उसके बाद 15 अच्छा। पैसे का हुआ, उसके बाद 25 पैसे का हुआ और अब 50 पैसे का है
2: जी।
3: अभी भी मैं पोस्ट कार्ड लिखता हूँ आपके, वो जो आपकी प्रोग्राम है ना गीत आपके नाम
2: जी जी,
3: उसमें लिखता था, और वो जो आपका प्रोग्राम शाम को आता है गीत गाता चल
2: जी,
3: और अनुरोध गीत
2: जी,
3: इसमें बराबर मैं पोस्ट कार्ड लिखता हूँ, अभी भी लिखता हूँ। मेरे 1000 पोस्ट कार्ड तो मेरी दुकान पर पड़ा है
2: जी,
3: और 1000 पोस्ट कार्ड मेरे घर पर है जी।
2: जी,
3: मैंने मुझे बहुत शौक था, मैंने पोस्ट कार्ड 5 रुपए के ले आया था मैं अपना डाकने से।
2: अच्छा।
3: मैं उनकी दुकान पर पोस्ट कार्ड ले गया, मैंने कहा भाई साहब भी एक पोस्ट कार्ड ना मुझे लिखकर दे दो, भी मैं भी ना उसमें अपना नाम सुनना चाहता हूँ।
2: अच्छा।
3: ट्रांजिस्टर में, तो जो मेरे डैडी थे वो अपना ट्रांजिस्टर से खबरें सुनते थे और मैच आता था जी अपने कमेंट्री।
2: अच्छा।
3: रात के 12 बजे 11:30-12 बजे तक ऑस्ट्रेलिया से आती थी, क्योंकि बहुत ही आकाशवाणी मुझे अच्छा लगा कि देखो कितनी कमेंट्री दे, तो बहुत से लोग ना मेरे डैडी के पास आ जाते थे वो क्वेंटी सुनने के लिए। जब कोई आउट होता था ना, जब पाकिस्तान का किसी का आउट होगा या ऑस्ट्रेलिया को, तो बहुत रोला यानी कि होता था, ताड़िये मारते थे जी। बहुत मजा आता है यानी कि रेडियो से तो बहुत लगाव है जी। मैंने एक दो प्रोग्राम सुने और

0: बाद उन्होंने बोल दिया कि इसका एड्रेस ये है, तुहाडी फरमाइश है भी
1: अच्छा
0: केयर ऑफ स्टेशन है आकाशवाणी जलंधर, पिन
1: अच्छा
0: कोड नंबर इतना उन्होंने बोल दिया कि आप ऐसे लिखो पिछले पासे अपने शहर का नाम, उसके बाद अपने नाम और उसके बाद गीत के बोल लिखो। मैंने वैसे ही वो जितने पोस्ट कार्ड से मैंने सभी डाल दिए, और भगवान की कृपा से 20 दिनों बाद मेरा मेरा मेरे डैडी का नाम, मेरी मम्मी का नाम,
1: उस दिन तो सर आपको बहुत खुशी हुई होगी।
0: वो इतनी खुशी हुई ना, मेरे डैडी ने कहा ये कहाँ से आपका नाम आ गया। तो मैंने कहा कि मैं जो आपने मुझे जेब खर्ची दी थी ना स्कूल के लिए, मुझे जो 25 पैसे दिए थे ते उसमें से मैंने 5 रुपए के पोस्ट कार्ड अपना डाकखाने से लेकर वो डाल दिया।
1: अच्छा,
0: हाँ, यानी कि डैडी बहुत खुश है, करना बहुत अच्छा शौक है पुत्र, ये शौक ना रिडवे के साथ बिल्कुल बरकरार रखना।
1: अच्छा,
0: और तभी से लेकर आज तक जी मैं ठीक है। अगर मैं तो मेरी बात अब मैं आप बिल्कुल सच बोलता हूँ, जैसे ना कोई भी फरमाइश आती है जो सुबह आती है, जब मैंने जब नहाने लगता हूँ जी, तो मेरा जो ना अपना जो मोबाइल है वो भी अपना बाथरूम में होता है जी।
1: इस समय सर आप अभी जैसे प्रोग्राम आकाशवाणी के सुनते हैं, अभी हमारे प्रोग्राम जा रहे हैं, इस समय के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
0: वैसे है जी आपके, एक तो जी आपकी जो फरमाइशी प्रोग्राम ये अच्छे लगते हैं
1: जी,
0: और जो आप ज्ञान विज्ञान के प्रोग्राम प्रसारित करते हैं ना
1: जी जी,
0: वो भी अच्छे लगते हैं, और खासकर जो युवानी प्रोग्राम आपके शाम को 5 बजे से 6 बजे आते हैं,
1: अच्छा
0: वो भी मैं सुनता हूँ। उसमें आप सवाल पूछते हैं और फेसबुक पर आप सवाल भेजते हैं और हम उनका जवाब देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और जो
1: नमस्कार सर,
0: इस पर मोबाइल ऐप पर प्रोग्राम बिल्कुल साफ आ रहे हैं
1: जी।
0: जब हम रेडियो पर सुनते थे कभी आवाज ऊंची हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, कभी प्रोग्राम बंद हो जाता, इसमें कोई भी अब इसमें कोई भी परेशानी नहीं हमें होती, बहुत ही अच्छी तरह से हम सुनते हैं
1: जी।
0: ठीक है, और आगे पहले से आगे यानी कि इसमें सुधार बहुत आया जी अपने आकाशवाणी में
1: जी। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात करी।
0: हाँ मैडम
1: जी,
0: ठीक है मैडम, मैं बस एक बात सभी दोस्तों को जो भी प्रोग्राम यानी के प्रोग्राम में खत लिखते हैं या रेडियो को सुनते हैं और जो 90 साल हमारे हो रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और साथ में आकाशवाणी अपना रामपुर को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: आपको भी बहुत बहुत बधाई, इसी तरह से आकाशवाणी के प्रोग्राम आप सुनते रहिए और खुश रहिए।
0: हाँ मैडम, मैं आपकी आवाज ना उसमें सुनता रहता हूँ, जो गीत आपके नाम आता है ना प्रोग्राम
1: जी, जी,
0: आप बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाते हैं
1: जी। धन्यवाद सर,
0: थैंक यू मैडम जी, थैंक यू,
1: वेलकम वेलकम,
0: थैंक यू।

अभी आपने सुनी हमारे पुराने श्रोता सुनील पाठक, जो अनारकली बाजार जगराव से अपने दिल की बात साझा कर रहे थे आकाशवाणी के 90 साल होने की खुशी में। इसी के साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी तरन्नुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे, आकाशवाणी के 90 साल पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में सुबह के 8 बजने को है। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है।
1: देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। 20 विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश डोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू प्याज सब्जियां फल खाद्यान्न और तिलन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्य सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति

0: चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार आधार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज फल सब्जियों अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Saira Mujtaba. The headlines. 2-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran Syed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
4: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 88th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
3: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance and live-in relationships. He clarified that religious practices would remain outside the scope of the bill.
5: Assam cabinet so passed uniform civil code. We customized that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of uniform civil code. We have also kept all rituals, traditions, custom practiced by the people of Assam outside the scope of uniform civil code. The UCC bill will be laid before the assembly on 26th of May.
3: With this move, Assam is said to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a uniform civil code bill.

0: X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. In Uttar Pradesh, rain along with dust storm and lightning have claimed 60 lives in the last 24 hours. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incidents and asked the officials to provide every possible help to the affected people. More from our correspondent.
1: A sudden change in weather conditions has caused widespread devastation across the state, with storms, heavy rain and lightning strikes claiming many lives. 17 people died in Prayagraj, while 15 in Bhadohi district, 10 in Mirzapur, 9 in Fatehpur, 5 in Badayu, and 4 deaths are reported in Bareilly district. More than 100 people got injured also and have been admitted to different hospitals. Maximum deaths happened due to incidents of lightning, wall collapse and trees falling on people and vehicles due to dust storm and hail storm. Incidents of falling of electric poles and trees have reported from different districts affecting the power supply and road traffic. Hail storm accompanied with rain have damaged the crops badly. Chief Minister Yogi Adityanath held meeting with all the senior officials and asked them to provide compensation to the affected people in next 24 hours. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: Meanwhile, India Meteorological Department has forecast heat wave to severe heat wave conditions at isolated places in West Madhya Pradesh and West Rajasthan today. East Rajasthan, Gujarat and Maharashtra will also witness heat wave conditions at isolated places. Meanwhile, the weather agency has predicted heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya today. According to IMD, heavy rain is also predicted over Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 3 days. Places over Delhi, Punjab, Haryana, Bihar, Chhattisgarh, Chandigarh, Odisha, West Bengal and the northeastern states are expected to experience thunderstorms and lightning today. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu secretly visited the United Arab Emirates and met its president during the war with Iran. According to a statement from Netanyahu's office, the Israeli Prime Minister held talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The statement described the meeting as leading to a historic breakthrough in relations between Israel and the UAE. However, no details of the breakthrough were disclosed. In IPL cricket, Virat Kohli created history and broke several records during Royal Challengers Bengaluru's 6-wicket victory over Kolkata Knight Riders in Raipur last night. Kohli scored an unbeaten 105 runs off 60 balls, including 11 fours and 3 sixes. It was his 9th IPL century, the most by any player in the tournament's history. During his innings, Kohli also completed 14,000 T20 runs, becoming the first Indian and the fastest player ever to reach the milestone, breaking Chris Gayle's record. He also crossed 400 runs this IPL season. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
2: Thank you, Saira. Newspapers have widely noticed the hike in import duty of gold and silver after PM's appeal, as also US President Donald Trump's visit to China. Import duty on gold, silver hiked to 15%, writes Financial Express, while in the Sun Times headlines, in first step after PM's appeal, gold silver duty raised to 15%. The Asian Age writes, BRICS foreign minister set to begin talks in Delhi today. In the Neat paper leak case, the Tribune writes, Neat probe traces guest paper to Kerala, CBI nabs 5 suspects. The Statesman headlines, Vijay government wins confidence vote, gets backing of rebel AIADMK MLAs. The same newspaper also informs decision on Kerala CM will be announced today. Indian ships given priority pass in Strait of Hormuz, says Iran Deputy Foreign Minister, writes the Pioneer. US President Donald Trump given a red carpet welcome in China. The Asian Age carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on 3-day visit to hold Xi talk on Iran war and trade. The Times of India writes, deal maker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu, in its editorial title, Testing Troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलों नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केट केओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोद्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहदा अरब अमारात के उमूर खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
4: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकतदार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू ब्रिक्स एट द रेट 20 इस्तेहकाम इख्तरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में असलाहत के मौजू पर एक और इजलास मुनद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वाम मुत्तहदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
3: आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम असेंबली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनक्किद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वजा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज्यादा शादी, विरासत और बगैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाजे किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख्ताम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें खाम चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के जुमरे से ममनू के जुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी सीएक्सएल और टीआर

कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कीजिए कबूल तरन्नुम का प्यार भरा आदाब और नमस्कार।

0: वो भी ऐप से। वाह, फंसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ, 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले?
4: ना, पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और?
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
1: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: कार्यक्रम में आगे बढ़ती हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दबंग से श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल चाहता है से शंकर महादेवन की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साहो से तुलसी कुमार और गुरु रंधावा की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को।

अब सुनिए आशीष कौर और जुबिन नौटियाल की आवाज़ में फिल्म पागलपंती से इस खूबसूरत से गीत को।

अभी आप सुन रहे थे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में 9:15 होने को हैं। अब अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से कुछ ही क्षणों में रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए कुशीनगर और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का।
1: भगवान बुद्ध की मां पर निर्माण स्थली कुशीनगर में त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम म्यांमार बौद्ध विहार में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भारत में म्यांमार के राजदूत ऊ जाव ऊ तथा अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही विश्व में शांति संभव है। भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का संदेश दिया है।
2: भगवान तथागत बुद्ध का सर्वकालिक महत्व है, आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। और संसार के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है, हमने शांति दिया है।
1: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में विभिन्न बौद्ध विहारों के बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय लोगों ने आकर्षक शोभा यात्रा निकाली, जो नगर का परिभ्रमण कर माथा कुंवर स्तूप पर आकर संपन्न हुई। जनपद कुशीनगर में नगर पंचायत फाजिलनगर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गयी। अध्यक्ष पद के लिए हुए इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सुनीता शाही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के अवधेश सिंह को 713 मतों से पराजित किया। यह सीट उनके पति शत्रुमर्दन प्रताप शाही के निधन के कारण रिक्त हुई थी, जिस पर भाजपा ने उनकी पत्नी सुनीता शाही को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। कुशीनगर जिले में मतगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया विगत 7 मई से शुरू हो गई है, जो 21 मई 2026 तक चलेगी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें तथा अपने परिवार, पड़ोस एवं परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही प्रगणक एवं जनगणना कर्मियों का सम्मान करते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3: पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, जिसमें आप सभी की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और जन सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 7 मई 2026 से लेकर 21 मई 2026 तक संचालित की जाएगी। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें।
1: कुशीनगर जिले के पूर्व विधायक डॉक्टर वीके मिश्र का विगत 6 मई को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। स्वर्गीय मिश्र कुशीनगर जिले की पडरौना विधानसभा सीट से सन 1980 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। बाद में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पडरौना के खिड़किया शमशान घाट पर किया गया, जहां भारी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।
0: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
4: सार्वजनिक सड़क परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर विशेष जोर दे रही है। शहर के अंदर एक सीमित दूरी तक के लिए ई बसों के संचालन की कामयाबी के बाद अब उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपी रोडवेज ने मध्यम और लंबी दूरी के लिए ई बसों के संचालन की कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना के तहत गोरखपुर के दो प्रमुख स्टेशनों 20 नई इलेक्ट्रिक बसें अयोध्या, बनारस, सुनौली सहित अलग अलग महत्वपूर्ण मार्गों पर दौड़ेगी। रोडवेज ने गोरखपुर से विभिन्न रूटों के लिए ई बसों का ट्रायल कर दिया है। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार 9 बसें वाराणसी और 3 बसें अयोध्या के लिए

0: लगाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस के संचालन के लिए राप्ती नगर में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायल के बाद अब रोडवेज अगले 10 दिनों में बसों के विधिवत संचालन की समय सारणी भी जारी कर देगा। ईंधन की बचत होने के कारण परिवहन निगम इसका लाभ यात्रियों को कम किराए के रूप में देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने 2-लेन ब्रिज का लोकार्पण फीता काटकर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते देश प्रदेश के साथ ही गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है। 2017 के बाद गोरखपुर में विकास की विस्तृत श्रृंखला तैयार हुई है। विकास से बढ़ी सुविधाओं का लाभ लंबे समय तक प्राप्त होता रहे, इसके लिए नागरिकों को भी विकास कार्यों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी होगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान में 50,000 से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर के गीडा में उद्योगों के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में चारों ओर 4-लेन 6-लेन की कनेक्टिविटी है। यहाँ एम्स बन गया है। खाद कारखाना और पिपराइच में चीनी मिल फिर से चल रही है। उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, आयुष विश्वविद्यालय, चिड़ियाघर, बेहतरीन पर्यटन स्थल रामगढ़ ताल, कई होटल सहित अनेक सुविधाओं का यहाँ विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि वाटर बॉडी पर 2-लेन ब्रिज बनने से इस समूचे क्षेत्र में इंटरनल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। सीएम ने GDA के अफसरों से कहा कि वाटर बॉडी को रामगढ़ ताल के समकक्ष जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने स्वच्छता और सुंदरता को लेकर मोहल्ले स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
1: गीडा में जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों के माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार की सुविधा अकेले गीडा में प्राप्त हुई है। ये गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्राप्त हुआ है। फर्टिलाइजर अलग है, एम्स अलग है, पिपराइच की चीनी मिल अलग है, आयुष विश्वविद्यालय अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ अच्छे अच्छे होटल खुल रहे हैं, उन होटलों में अलग है। हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया हुआ है।
0: पूरी दुनिया को योग का पाठ पढ़ाने वाले योग गुरु परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी की जयंती 10 मई रविवार को उनके अनुयायियों की ओर से धूमधाम से मनाई गई। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र नगर स्थित ध्यान केंद्र पर किया गया। अनुयायियों ने सबसे पहले गुरु के भजन गाए और फिर पुष्पांजलि आरती कर गुरु को याद किया। गुरु युक्तेश्वर गिरी से लोक कल्याण की कामना की। इस दौरान पूरा परिसर गुरु की भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। गोरखपुर जिले में ज्येष्ठ मास का दूसरा बड़ा मंगल 12 मई को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के बेतिया हाता मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तारामंडल स्थित बालाजी मंदिर के साथ विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़े ही आस्था भाव के साथ बजरंगबली का प्रसाद ग्रहण किया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
5: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
6: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
7: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 800

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव भारत देश के सूफी संत निजामुद्दीन।
1: हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका जन्म 1238 में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रमुख सूफी संतों में से एक थे। वे चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे और अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं और मानवीय प्रेम के लिए जाने जाते थे। निजामुद्दीन औलिया ने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद उनकी माँ उन्हें दिल्ली ले आईं। दिल्ली में ही उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद से दीक्षा ली और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। बाबा फरीद के मार्गदर्शन में वे आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। उनकी शिक्षाओं का मुख्य केंद्र मानवता, प्रेम और करुणा था। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को समान रूप से महत्व दिया और हमेशा दूसरों की सेवा और सहायता करने पर जोर दिया। उनके कथन "सभी से प्रेम करो, घृणा किसी से नहीं" ने कई लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें एक महान संत के रूप में प्रतिष्ठित किया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित है और यह स्थान आज भी उनके अनुयायियों और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उनके यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। उनके शिष्य, विशेषकर अमीर खुसरो, ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और सूफी संगीत तथा कव्वाली के माध्यम से उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुँचाया। निजामुद्दीन औलिया ने 1325 में इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी लोगों को प्रेम और करुणा की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। निजामुद्दीन औलिया का जीवन और उनका कार्य यह सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता और धार्मिकता मानव की सेवा है। उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन हमें प्रेम, शांति और करुणा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उनके द्वारा स्थापित मूल्यों ने न केवल अपने समय में बल्कि आज भी लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डाला है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गौरव भारत देश के सूफी संत निजामुद्दीन। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम, पेशकश शीबा नूर की है।
1: या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गर्मा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक तकाजा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदा बीना दे, भटके हुए आहों को फिर सूए हरम ले चल, पैदा दिले वीरा में फिर सौरिश महशर दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। जी हाँ सामईन, इस खूबसूरत दुआ के साथ आपकी मेज़बान हाजिर है आज के उर्दू प्रोग्राम के साथ। शीबा नूर की जानिब से सलाम मोहब्बत कबूल कीजिए। सामईन, ज़बान उर्दू की अहमियत और अफादियत को हमने हर दौर और हर सदी में तस्लीम किया है। ये वो खूबसूरत ज़बान है जो दिलों को जोड़ती है। इसने ज़माने के बहुत से उतार चढ़ाव देखे। सामईन, उर्दू की इब्तिदा के सिलसिले में मुख्तलिफ कस्म के नज़रियात पेश किए जाते रहे हैं। जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ती गई, कदीम ख्यालात की जगह जदीद नज़रियात ने ले ली। इस ज़बान को कभी खड़ी बोली, कभी ब्रिज भाषा, कभी हिंद आरई ज़बान कहा गया, और आज ये उर्दू ज़बान अदब के तौर पर हमारे साथ है। सामईन, इस ज़बान को दरबारों से फ़रोग मिला, सूफियों और खानखाहों ने में इसे सराहा गया। इसमें अगर हिंदी के अल्फाज मौजूद हैं तो वहीं संस्कृत के अल्फाज भी। जिसने इसे मकबूलियत बख्शी, जी हाँ सामईन, चंद्रबरदाई के कलाम हिंदू गीतों में भी उर्दू के अल्फाज मिलते हैं। सामईन, अगर उर्दू ज़बान व अदब की नशोनुमा का जायज़ा लिया जाए तो शायद इसके लिए ये वक्त दरकार नहीं, क्योंकि बात तवील होती चली जाएगी। बहरहाल, उर्दू ज़बान व अदब ने अपना रिश्ता मजबूत किया है और इसकी शीरीनी के हम सब कायल हैं। इस ज़बान ने दिलों पर हुक्मरानी की है। उर्दू सिर्फ अदब नहीं, एक तारीख़ है। अदब ज़रूरी है, इसी से शख्सियत संवरती है। अदब ज़रूरी है, इसी से शख्सियत संवरती है। जो अदब से खाली हैं वो इंसान नहीं होता। जी हाँ सामईन, उर्दू ज़बान अदब और नज़ाकत खूबसूरती को हम सब तस्लीम करते हैं। अगर लिसानियात का जायज़ा लिया जाए तो उसके लिए एक लंबा वक्फ़ा चाहिए। बहरहाल, उर्दू ज़बान ने हमारे दिलों पर हुक्मरानी करके साबित कर दिया कि अदब ज़िंदगी का आईना हुआ करता है। तो सामईन, ना तो अदब के लिखने वालों में आज तक कोई कमी है और ना ही शायकीन अदब के पढ़ने वालों में। इनके शौक़ की तस्कीन दर्जा बदर्जा होती रहती है। तो सामईन, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहतरमा शाहीन बी की ये तकरीर, जिसका मौजू है उर्दू फ़कत उर्दू नहीं तहजीब है मेरी। आइए समाअत करते हैं ये तकरीर।
2: आज मैं उर्दू के हवाले से कुछ आपके सामने बात करना चाहती हूँ। हिंदुस्तान की पैदाशुदा ज़ुबानों में से उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो हिंदुस्तान में ही पली बढ़ी है और यहीं के मुख्तलिफ सूबों में दफ्तरी सरकारी ज़ुबान बनी। जैसे जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान भी यही उर्दू ज़बान है। 1947 ईस्वी से कबल पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में शामिल था। और आज उर्दू ज़बान की तरक्की का आलम यह है कि हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन ज़ुबान बन गई है। तारीखी एतबार से बागौर मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि उर्दू ज़बान बहुत

मराहिल व मनाजिल से गुजर कर आज हमारे हाथों में है और पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए है, जिसकी मंजर कशी दाग दहलवी ने इस तरह की है कि उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबा की है। इसी जिम्न में मुख्तसर जिक्र किया जाए तो बजा होगा कि हिंदुस्तान में उर्दू का बीज 1000 ईस्वी के बाद पड़ा, जबकि उर्दू का बाकायदा आगाज़ 12वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में हुआ। इसी वजह से 1200 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक के दौर को उर्दू ज़बान के पहले दौर के नाम से याद किया गया है और 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक उर्दू ज़बान अपने इर्तिकाई मनाजिल तय करके कदीम उर्दू के नाम से मंसूब हुई और फिर 1700 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक उर्दू का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक का ज़माना उर्दू के दूसरे दौर का पहला दौर है। 1800 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का अहद उर्दू के दूसरे दौर का दूसरा अहद है, जिसको इब्तदाई ज़माने में हिंदी और हिंदवी कहा जाता था, जहां अमीर खुसरू पहले शायर के तौर पर नज़र आते हैं। प्रोफेसर शमशुर रहमान फारूकी अपनी किताब उर्दू का इब्तदाई ज़माना में लिखते हैं कि जिस ज़ुबान को आज हम उर्दू कहते हैं, पुराने ज़माने में उसी ज़ुबान को हिंदवी, हिंदी, दहलवी, गुजरी, दक्कनी और फिर रेख्ता कहा गया है और ये नाम तकरीबन इसी तरतीब से इस्तेमाल में आए। 1832 ईस्वी में हिंदुस्तान में भी उर्दू सरकारी ज़बान बनी। उर्दू ज़बान हिंदुस्तानियों के दिलों में ऐसी रसी बसी हुई है जैसे उनकी सरिस्त में शामिल हो गई हो। जब कोई उर्दू ज़बान बोलता हुआ नज़र आता है तो यूँ महसूस होता है जैसे कानों में रस घोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, यानी कोई उर्दू बोल रहा है। उर्दू एक शीरी ज़बान है। उर्दू ज़बान में गुफ्तगू करना ऐसा मालूम होता है जैसे लबों से फूल झड़ रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल ख्यालात, दकीक और पेचीदा मसाइल और बड़ी से बड़ी बात को बहुत खूबसूरत और कम लफ्ज़ों में पेश करने की जो सलाहियत उर्दू ज़बान में है, वो दुनिया की किसी ज़बान में नहीं। इसी बात को एडवर्ड टेरी अपनी किताब वॉयज टू ईस्ट इंडिया, जो लंदन से 1655 ईस्वी में शाये हुई थी, लिखते हैं, हिंदुस्तान बड़ी जानदार ज़ुबान है और ये कम से कम लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह डालने पर कादिर है। यहाँ मैं अहमद वसी का ये शेर पढ़ना मुनासिब समझूंगी, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। शिमाल मशरिक हो या शिमाल मगरिब, उर्दू ज़ुबान की धूम हर जगह मची हुई है। उर्दू ने बादशाहों से लेकर आम इंसान तक हर जगह हर किसी की रहबरी और रहनुमाई की है। जब कभी किसी दूसरी मुश्किल ज़बान को समझने में परेशानी होती है, उस वक्त भी उर्दू ज़बान के सादा सलीसल लफ्ज़ हमारी ज़ुबान पर आकर हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारे जज्बात व ख्यालात को दूसरों तक और दूसरों के जज्बात व ख्यालात को आसान और उम्दा अंदाज में हम तक पहुँचाने में मदद करते हैं। उर्दू ज़बान की मिठास और शीरनी, जाज़बियत और ठहराव, उर्दू ज़बान के ये वो औसाफ़ हैं जो दुनिया की किसी ज़ुबान में नहीं मिलते। नीज़ ये कि ऐसी शाइस्त शुस्ता ज़ुबान है, अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि सैकड़ों और भी दुनिया में ज़ुबानें हैं मगर, सैकड़ों और भी दुनिया में ज़ुबानें हैं मगर, जिस पे मरती है फसाहत वो ज़ुबान है उर्दू, जिस पे मरती है फसाहत वो ज़ुबान है उर्दू। उर्दू जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान है और ये किसी इलाके की नहीं बल्कि हमारी मुश्तरका तहजीब की एक अलामत है, जिसकी जड़ें कायम करने में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की मेहनतें शामिल हैं। इसकी मकबूलियत और अहमियत का बय्यन सबूत यह है कि आइन हिंद की 22 ज़ुबानों में उर्दू ज़ुबान भी शामिल है। हर तहजीब व तमद्दुन के मुनफरिद अनासिर होते हैं और उनकी अपनी अलग अलग शिनाख्त हैं, लेकिन उर्दू वाहिद ऐसी ज़ुबान है कि उसके अपने ज़ाब्ते और कायदे होने के साथ साथ उस पर हर मज़हब के असरात नज़र आते हैं और यह ऐसी लचीली भी है कि हर ज़ुबान के अल्फाज को अपने अंदर समू लेने की सलाहियत रखती है। उर्दू अपने तलफ़ुज़ के एतबार से बहुत दिलकश वाकई हुई है, लेकिन ये दिलकशी उसी वक्त तक बाकी रहती है कि उर्दू को उसके सही तलफ़ुज़ के साथ अदा किया जाए। तलफ़ुज़ किसी भी ज़ुबान की रूह है और बदन से रूह निकल जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है।

और अगला शेर देखिएगा। चलो आओ शायर, ये मक्ता है जो मैं अब पेश करने जा रहा हूँ।

0: गया।
1: सामईन, अभी आप महसूस हो रहे थे जनाब सर्वेश कुमार के इस खूबसूरत कलाम से, जिनका खूबसूरत अंदाज़े बयां कुछ अलग ही था। यकीनन आप लुत्फ अंदोज ज़रूर हुए होंगे। और सामईन, अब प्रोग्राम का थोड़ा सा रुख तब्दील करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम आपके लिए एक ओबी प्रोग्राम लेकर आए हैं जो यकीनन आपको बेपनाह पसंद आएगा, जिसका मौजू आज के मौजूदा ज़माने के हवाले से ही है, मौजूदा दौर की पेचीदगियाँ। आइए सामईन, समाप्त करते हैं ये ओबी प्रोग्राम।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना, फिल्म थी 1942 आ लव स्टोरी, आवाज़ कुमार शानू की, फरमाइश आप सबकी, श्री रोकेडेश्वर नगर से, पंगरा शिंदे तहसील वसमत ज़िला हिंगोली महाराष्ट्र से, रामचंद्र इंगोले सिद्धांत टिंकू रामाबाई सुरेंद्र मयूरी सुरभि मंजुषा नामदेवराज राव शिंदे पाटिल मास्टर विलास शिंदे सुनील जबड़े, अशोक नगर ज़िला हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू पार्वती सखाराम ठेके रोहित सोनू मोनू

जीजा माता नगर हिंगोली महाराष्ट्र से लक्ष्मी उत्तम काबले, तमसा रोड तहसील हदगांव से श्याम राव बेबी और बिट्टू की, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव, परी संजना, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे की, शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बेहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित समरराज, आर्यन बेबी, आरोही इशिका, अंजलि श्वेता वर्मा की, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश नर्मदा, सुनील साहिल, अंश कुमारी, सुजाता पोहर कार की। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म हेना से लता मंगेशकर की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को, फरमाइश आप सबकी। पोस्ट बराला धरड़ ताल मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता बाई सानिका गजानन घायल की। रेलवे कॉलोनी भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार की। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा की। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू वर्मा व प्यारी बेटी प्राची की। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, असलम सैफी, गंज डुंडवारा से शमशुल कमर की। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हेना से इस खूबसूरत से गीत को।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म कलयुग से राहत फतेह अली खान की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को, फरमाइश आप सबकी। दतरेंगी से भागवत वर्मा, लिवई से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से चालिक पुजारी की। कस्बा बराडा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका जयप्रकाश राहुल, नूर नमन सिमरत गुरकीरत गुरशब्द की। गौतम नगर जिला नादेड़ से प्रभाकर जोंदले आरती जोंदले की। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान की। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण मनोहर बाई, प्रभुलाल बांगरी की। गांव कुम्हार हेड़ा जिला सहारनपुर से सैयद मसरूर, अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया और आफिया की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में फरमाइश आप सबकी, बेडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक प्राची और तनु करमरकर की। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार की। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल, शीला और गायत्री धंजे की। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद की। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित की। मोहल्ला थाना टीन रामपुर से इकराम अली, फैजान अली, एहसान अली, शहनाज, गुलनाज, रूमा, इमरान, जहीर और आसिफ भाई की। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा की। जातुका किशनपुर से आलम, शबाना, रिजवान, इमरान, आलम शेख, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से कैसर आलम, हिना कौसर, वकील राही, फिरोज आलम और नाज परवीन की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम दीवाने से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में इस खूबसूरत से गीत को फरमाइश आप सबकी। दौलत बाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी की। बोड़खेड़ा पीतरामल ज़िला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नहाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूड़त की। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी, मोहम्मद अर्श इदरीसी की। चौधरी ढाबा बिलारी से रज़ा अहमद, इशरत जहां, जमाल कमाल, आयत और हमजा की। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ कार्यक्रम आपके अनुरोध पर संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी तरन्नुम को दीजिए इजाजत।

0: संबंध सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी,
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओ, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न है श्रोताओ कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का

0: पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
1: जी।
0: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी तो मेंढकों के टर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
1: जी।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।

0: पास घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।

0: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना।

0: का पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
3: हाँ
5: दूसरा क्या?
4: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बहुत मुश्किल। बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ। आ गया हो। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं, फायरिंग।

0: मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस

0: बगीचे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
2: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
2: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी।
0: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओ, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: ये कहानी
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अभी आप हमारी प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर में धारावाहिक जिंदगी के आईने में की कड़ी संख्या 1।
4: जिंदगी के आईने में सभी श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। जिंदगी सांसों की सरगम पर एहसासों की रवानी, कुछ पाने कुछ खोने की कहानी।

0: समय इंसान को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ हाथों से फिसल भी जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम कुछ पल ठहरते हैं, जिंदगी के आईने में बीते हुए लम्हों को निहारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लबों पर कभी मुस्कुराहट थिरकती है तो कभी आंखों की कोर से आंसू भी झांकते हैं।
1: ये आईने से अकेले में

0: श्रोताओं, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं महापारा बेगम, जो कि एक जाना माना नाम है रामपुर में संगीत की दुनिया में। एक बहुत लंबा अनुभव उनके साथ है। रामपुर दरबार की संगीत परंपराओं से वो जुड़ी रही हैं। आज इस वक्त हमारे साथ हैं महापारा जी। सबसे पहले तो हम आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करते हैं।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत लंबा दौर आपने देखा है, बहुत कुछ बदलाव
1: बहुत कुछ देखा और देखते चले आ रहा।
0: कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए, किस तरह का माहौल था रामपुर में, किस तरह के इस शहर का रहन सहन था, किस तरह के रीति रिवाज थे और किस तरह से रामपुर दरबार की रौनक सब देखा करते थे।
1: रामपुर का हमारा बचपन तो ऐसा गुजरा कि हमें पता ही नहीं कि बचपना होता क्या चीज। पहले तो यूं सोचिए, तहजीब तमीज, बच्चा हो या बड़ा हो, बचपन ही से तालीम मिलती है। तो हमारी सोसाइटी जो थी, हमारी दादी वो हमद अली खां की बीवी थी, नवाब हमद अली खां की।
0: अच्छा।
1: तो हम रजा अली खां जानते थे कि ये उनकी पोती, मगर हमें लगाव ज्यादातर गाने बजाए बचपने से। हाँ। और शैतानी में भी बहुत तेज थे। बचपना तो होता ही ऐसा है कि जिससे पता ही नहीं होता। और फिर वो बचपना जो कि हमने ऐसी अपने बड़ों की खिदमत की है कि ये हमारा दिल जानता बचपन ही से। और आज नहीं, इस वक्त की 110 साल की उम्र में भी अगर मैं ये सुन लूँ कि अल्लाह ना करे किसी की तबीयत खराब है, फौरन पहुँचूँ। खिदमत ना ये देखती हूँ कि नीचा है ना ऊंचा है, सबसे बड़ी बात उसकी ये बेटे। अब हमारी बचपने में हमने बहुत कुछ अल्लाह का शुक्र खाया भी और पिया भी। बहुत सी चीज़ें ऐसी कि अब नाम लेने से फ़ायदा भी कुछ नहीं है ही नहीं।
0: अच्छा, तो अपने बचपन का वो दौर बताइए जब किस तरह का शहर बसा हुआ था, इतनी बिल्डिंगें भी नहीं होंगी, इतनी चहल पहल भी नहीं होगी।
1: उस टाइम में कोई बिल्डिंगें ज्यादा नहीं थी, रहन सहन इतना अच्छा था कि हम लोगों में आप लोगों में एक इत्तेफाक बहुत अच्छा था। चीजों की सत्ताई 1 रुपए में पूरी अंडिया पकती थी, अब आपको यकीन नहीं आगा। और कोई चीज ऐसी नहीं थी कि मेवा की पिंडिया नहीं बनती हों, मुरब्बे नहीं बनते हों। एक नवाबी का दौर सत्ता उस टाइम में कुछ नहीं। 4 आने का घी मंगाया गुलाम रब्बानी से, एक उनके यहाँ से, और आग डाल दिया। अगर खिचड़ी बनी तो खिचड़ी के बीच में घी डल गया, उसको हजम करने को भी तो चाहिए। हाँ। और इस वक्त के दौर में तो मेरा बच्चा ना हम कोरमा खा सकते, ना मुर्गा खा सकते, कुछ ही नहीं। आधी 5 निवाले गिन के आप यकीन करें, इस वक्त के दौर की बता रही हूँ। तो हम कहते हैं ऊपर वाले की तरफ से रिस्क नहीं हमारे नसीब में। अब रहा ये कि बचपना कही तो ये ऐसी गुजर गई कि कभी नवाब के पास, कभी अपनी दादी के पास, कभी न, इतनी हमें मोहलत नहीं मिली जो हम ऐसे वैसों में बैठ के अपनी बदतमीजी या कोई बेहूदा बात। और आज भी वही, अल्लाह का शुक्र। बाइज्जत होना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, बेइज्जती 2 मिनट में मिलेगी और इज्जत बड़ी मुश्किल में मिलेगी। यहाँ
0: आपने संगीत की दुनिया में नाम कमाया है, बहुत इज्जत के साथ आपको याद किया जाता है। जब जब रामपुर के संगीत का जिक्र होता है तो जहन में आप ही का नाम आता है और आपसे ज्यादा पुराना कोई कलाकार इस इलाके में है भी नहीं। तो संगीत की तरफ शुरुआती तालीम आपने किस तरह से हासिल की?
1: नवाब साहब, नवाब रजा अली खान, शाहिर ऐसे थे, अगर 50 आदमी गा रहे हैं उन्होंने यूं करके देखा, अब जिसमें कमी होगी तो वो झुकेगा। अब उन्होंने यूं किया, आप चुप जाइए। और अगर उसने जरा कुछ जद्दोजहद की तो ये कहते थे एक गाओ। अच्छा। अब जो गाने वाला वो भी भूल जाएगा। मिलके तो सब अच्छा काम कर लेते हैं, मगर अकेले में बहुत मुश्किल है। तो यूं पकड़ होती थी, मगर हमारा तो ये रहा, हमें डर ही नहीं लगा।

0: कभी डर नहीं लगा। और लोगों को रकम में दिलवा दूँ, हमेशा लड़की हैं बच्ची हैं, अगर मेरे यहाँ कोई औलाद हुई उनका अपना डॉक्टर मुझे देखने आता था, मेरे बच्चे उनके यहाँ डीसी रूम में जाते थे, तो क्या बात, मर्दाना माहौल था। मगर हाँ, ये चीज़ें हमारे अपने बस में थी। अब आप हमारे बेटे की जगह हो, इस टाइम हमारे बेटे की जगह हो, जवानी के टाइम में तो कुछ कह नहीं,
1: जी
0: मगर
1: सर,
0: अपना मुस्तकबिल सही रहा तो आज हम निकले। आदाब आदाब आदाब, इज्जत कमाना।
1: कौन कौन से गुरु ऐसे रहे जिनसे आपने तालीम हासिल की?
0: अरे साहब, अब गुरुओं के नाम मैं आपको बताऊं, इसाक हुसैन खां, मुश्ताक हुसैन खां, वजीर खां, शब्बन खां, निसार हुसैन खां, मुश्ताक हुसैन खां, इसाक हुसैन खां, अब इतने नाम, ये तो पूरा झमकर था कत्थक में। अयोध्या प्रसाद को आप जानते होंगे, नाम सुना
1: जी
0: होगा,
1: जी जी
0: पखावज वाले,
1: पखावज
0: वो भी हमारे साथ रहते थे। तबले पे मोहम्मद जान खान, जो हिंदुस्तान का मानाबाद था, वो मेरे साथ,
1: खेरकवा साहब,
0: जी जी जब मैंने कत्थक डांस सीखा तो वो मेरे साथ बजाते थे। और फिर एक तबले वाला घर जाता था मेरे, रस्ता पहले पुराने घर बेटे खपरेलों के मकान, उनमें रस्से पड़े हुए, अब उसे पकड़े हुए, अब पैरों से उसे कह रहे हैं कि भाई पैर चलेंगे तो जुबान भी चलेगी, हाथ भी चलेंगे, तो तालीम ऐसे मिलती थी। और जब नवाब के पास आते तो वो बजाते थे खरताल, अब ADC था नवाब का काबुल का, ऐसा जैसे अंग्रेज, वर्दी पहने, रिवाल्वर पड़ा हुआ उसके, पिस्तौल पड़ा हुआ, अब सिखाने को खड़े होगा, नहीं आ रही दिमाग में, अरे भाई क्या बुराश करवाओ, अगर नवाब साहब को गुस्सा आ गया तो है सब क्या, जरूर कोई ना कोई होना जरूरी, मैं भाई मेरे दिमाग में नहीं आ। और जहाँ उन्होंने दरवाज़ा खोला, कमरे में आए, मैं खड़ी हो गई, अब मैंने सलाम किया, आइए। अब उन्होंने खरताल ले ली, तबले वाला बैठ गया, बाजे वाला बैठ गया, अब हम शुरू हो गए, अब लोग ताज्जुब कर रहे हैं, तो वो बोल रहा हमारे दिमाग में थी, खरताल बची थी ना, तो वक्त से पहले ही हम शुरू हो जाते थे।
1: कुछ बोल आपको याद है इस वक्त?
0: जी तार थे ये, पहले तो देखिए ये जो TV में दिखाते 1 2 3 4 1 2 3, और हमने गिनती के हिसाब से सीखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ता धिन धिन ता धिन धिन ता, ता थे तति थे ता थे तति थे थे त थे त थे थे थे त त ता थे थे थे त त ता थे थे थे त त ता धिन धिन ता धिन धिन ता। ऐसे हमने गिनती से सीखा, 15 आदमी से बताने वाले, कोई गिनती पे बोलिए तो 5 शेर के घुंघरू बहुत अहमियत रखते हैं। एक कंपाउंडर नौकर था जो पैरों और एक देख पानी उबलता था, जब
1: अच्छा।
0: पैरों की पट्टियां खुलती थी फौजी मलटरी की, तो फिर वो पैर धरते थे नमक के पानी से। हमने बहुत कुछ बेटे इज्जत कमा ली, बस ये नहीं रखा।
1: रामपुर दरबार की एक खासियत ये रही कि रामपुर दरबार ने जब संगीत का कहीं भी नामो निशान नहीं रहा था, अवध मिट चुका था,
0: जी,
1: दिल्ली
0: जी।
1: भी बर्बाद हो रही थी, तो रामपुर नवाब ने संगीतकारों को अपने यहाँ आसरा दिया, कला को उन्होंने समझा,
0: जी, जी।
1: सहेजा और महफूज रखा। रामपुर दरबार में संगीत किस तरह से कब कब हुआ करता था, किस तरह की महफिलों का दौर होता था?
0: वो ये होता था कि हम सुबह 8 बजे
1: जी,
0: शाम को, ये पीछे जाफर सवाले मियाँ रहते हैं, नन्नी बेगम के वो
1: जी,
0: उनकी माँ, वो ये बच्चे, हम, उनकी वालदा बेगम साहिबा, ये सब हम लोग सब साथ बैठ, अब बजे मतलब 5 बज गए 6 बज गए, और अगर किसी ने मुतशावर दे दिया तो आफत आ गई। हम अपनी मर्जी से गारन किताब खोलने में पता है कि हमारा क्या चीज़ शौक से सुनते, वो उसे पन्ने को देख रहे हैं, वही गारन, वही पन्ने खोल रहे हैं, वही गारन, अब आँखें बंद कर बैठे हैं, मौज आ रही है, राग रागनी चल रही, सावन में सावन, बसंत में बसंत, झूले में झूला, कौन सी चीज़, तराना, तिरवट, चंदन, ठुमरी, दादरा, कहरवा, और क्या, हर चीज़, अल्लाह का शुक्र है, इतनी जिंदों में हमने बेटे कोई कमी नहीं छोड़ी।
1: आपने बहुत साधना भी की है और हर चीज़ में आप
0: नाम रहा अल्लाह
1: का नाम है,
0: जी,
1: और गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, तीनों कलाओं में जो कि संगीत का मूल है उनमें आपने निपुणता हासिल की,
0: मैं रोटेशन के जी
1: जी। तो आपको खुद को सबसे अच्छा क्या लगता था? बहुत चीजें हैं गाने की विधाएं, जैसा कि आपने नाम लिया, ठुमरी, कहरवा, सावन, झूला, आपको खुद को क्या बहुत अच्छा लगता था, वो थोड़ा सा सुनाइए।
0: रागों में
1: जी,
0: राग दरबारी है, राग दुर्गा है, राग शहाना है, राग तिलक कामोद है, एक कामोद है, राग शंकरा है, राग यमन कल्याण है, एक यमन है तो एक यमन कल्याण भी है। मेरे पास तो राग इतने हैं कि आप सुन भी नहीं पाएंगे, मुझे 6 महीने दो मैं तो बोलती रहूंगी, क्यों, राग के नाम
1: जी।
0: और अगर ये चाहें कि इसमें से मैं ये चीज़ आपको दे दूं तो माफ़ कीजिएगा, ना तो आप उसकी धुनी

0: बना सकते हैं ना उसे अलहदा गा सकते हैं, क्योंकि जहाँ जो चीज़ बन गई उसका वजन उतना ही रहेगा। तो आपके बेकार हैं
1: जी जी।
0: अब हम भी सोचते हैं कि हम दुनिया से जा रहे हैं, अच्छा किसी को पहुंच जा, मगर ना कोई सीखने वाला ना कोई सिखाने वाला, क्योंकि इसके कदरदान बेटे बहुत कम है। अब गजलियात को ले लीजिए, अब गजलियात की कितनी बड़ी अहमियत है और कितने मायने रखती है, उसके शेर देखे जाते हैं। हमारी बेगम की थी गजल, ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। और एक गजल थी उनकी, ऐ रगे दिल तुझे हुआ क्या है। अब रहा ये कि बेटे जिंदगी में, अब हमारी नवाब कहते थे शादी नहीं होगी, हमारी माँ बोली अरे साहब ये तो बड़ा मसला, शादी तो मैं करूँगा। वो साहब ऐसे मामूली घर पहले कहाँ देखते थे बेटे,
1: जी जी जी।
0: और शादी हमारी हो, जब हमारे दो बच्चे हो गए तो नवाब साहब को पता हुआ, वो कत्थक डांस की निकली के भाई ये भाई आज दिन चाह रहे, नवाब साहब बोले अब जब हम तो खड़े ही हो गए, जब खड़े हो गए तो हमारी फूफी थी वो बोली हुजूर आज 10 दिन की जच्चा है। अरे बोले बिठा लो, मैं 3 दिन की जच्चा पहुंच गई। अब वो मुझसे कहते थे घर जाओ। बड़ा ख्याल जैसे अपनी औलाद को, तो क्या बेटे हमने अपनी इज्जत को रखा, कहते थे इन जैसी बनो, इन्होंने पूरी रियासत में आज तक किसी ने यही नहीं कहा कि उंगली पकड़ी। 10 घर हम नहीं कोठियों में जाते हैं, जो हमारे जानने वाले कोई ये नहीं कहेगा, सब पीठ पाथ रख के ये कहते हैं कि बहुत अच्छी गुजार दी। तो देखिए अपना मुस्तकबिल अपने साथ है, अब ये थोड़ी कि मैं आपके साथ खिलल्ली बनूं, ये बेहुदा बात है, ये सब हमें खुद भी नागवार है।
1: तो महापारा जी उस वक्त में आप कितना रियाज करती थी, किस तरह से ये तालीम को अपनी आप और बढ़ाती गई कि आज इस मुकाम
0: तक पहुंचे हैं। हम तो ऊपर वाले की तारीफ करेंगे कि अल्लाह ने इतनी सी खोपड़ी में ऑटोमेटिक खोपड़ी थी। हाँ ये मैं आपसे खुद बता रही हूँ, अगर जो चीज दिल को पसंद आई तो वो हम बराबरी बस समझ लो वो हमारे दिल में उतर गई। तबला आप बजा रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, मैंने सीख लिया। अब मैंने कहा हुजूर मैं तबला सीखूंगी, हाँ सीखो। बनो दरबारी।

0: बिल्कुल
1: बहुत सारी यादें आपके जहन में होंगी। नवाब रजा अली खां खुद लिखते भी बहुत अच्छा थे और सावन के कई बोल उन्होंने लिखे हैं।
0: सनी बर... देखो अभी इसमें ठेका क्या लगेगा, चार बैत वाला, चार चार बोलते हैं
1: जी।
0: मौसमी बरसात आया, अब वो धपनी पे ढप ढप करते हैं, अभी हम वहां से बजाते हैं। मौसमी

किरीट न पेंगे बढ़ाए आओ स किरीट न पेंगे बढ़ाए। टीका रानी को जरा झूला झूलाए, टीका रानी को जरा झूला झूलाए आओ स किरीट न पेंगे। हिंदी की चीजें हैं मगर उसको हम उर्दू में गाते। आपने चतरंग नहीं सुनी होगी, एक राग में आठ ताले आठ राग बदलूंगी और सब कल्याण, एक चीज नहीं हटे। अब देखिए एक दरअसल एक मामूली चीज।

0: जी चाहता है कि आप यूं ही गाती रहें और
1: अभी
0: हम
1: तो किसी काम क्योंकि देखिए ये चीजें उमंग की जवानी की ताकत की, अब तो मेरा बच्चा अब क्या बात, अब ये ऊपर वाले की देन आप लोगों की इज्जत है, हमारे अंदर कुछ नहीं। हाँ हम तो उसी सही बोल रहे हैं, क्या करें, अब उमंग वाला दौर तो हमारा बहुत अच्छा गुजर गया, ऐसा कि अब गा ही रहे, चलते फिरते गा रहे हैं, लेटे हैं तो गा रहे, खुदा की मार था गाना तो किसी ने गाया ही नहीं हो जैसे मैंने गाया, तो क्या वो तो घुट्टी हो गई। मैं गई उनके नवाब की बड़ी लड़की बम्बई में सबसे बड़े मिनिस्टर थे, अलीगढ़ भी आके गई थी, अब साहब हमारी घर नैना देवी को तो जानते होंगे आप, नाम सुना होगा, अब साहब रेडियो सिंगर साहब हम लोग गा रहे हैं, नैना देवी ये बैठी, राजमा बैठी, जाफर मक्की सवाले की माँ बैठी, अब हम लोग अब सारे कपड़ों में आप भुसियाँ में जो क्या पता आप कौन, अब सब आवाज़ें सुन सुन के चले आ रहे। मैंने कहा भाई, बोली नैना देवी कि आप रेडियो में गा लीजिए, मैंने कहा जी, अरे भाई रिकॉर्डिंग कर लिए, मैंने कहा जी हाँ, एक था सेरा बामी का दौरा स्टेट के, बच्ची की मंगनी हुई थी छूट गई जंकर।

0: वो बलिया थे वहां।
1: जी
0: अब वहां वहां मंगनी में गए तो माँ तो एक आफत हो गई, गाड़ी लड़ गई, साहब अस्पताल में दाखिल हो गए। अपना बाप का इतना मुँह निकल गया कि क्या होगा। मैं तो बड़े अरमान साहब साहब ऐसे में ऐसा गाय आप यकीन करना मरे जी भूल गए अपनी इज्जत के आगे के भाई हम आगे आपकी भी तो रखना है ना अपनी। इस रंग से हमने बेटे जिंदगी गुजार दी।
1: कौन कौन से ऐसे खास मौके होते थे रामपुर दरबार में जब ये महफिलें आरास्ता होती
0: एक
1: थी?
0: बात सुनिए, हमें मर्दाने से कोई मतलब, मर्दाने में हीरा बाई, मोती बाई, सुदेशी बाई, बेनजीर और ये अख्तरी बाई ये सभी आती, तो हमें तो दरबार से कोई मतलब। जनाने में जो दरबार होता था राजमाता का, ये मोटे मोटे खम्बे सोने के, चिल फर्शी सोने की, चिलम सोने की, जंजीरें उसकी सोने की, अरे साहब गांव तकियों में झबियाँ लगी हुई खींचने की, सब सोने की। एक तरफ उनकी हमद अली खां की बीवी और एक तरफ रजा अली खां की बीवी, उनका खानदान। अब अरे क्या पूछ रहा हूँ, वो दौर गुजरा। अब हमसे ये पूछा गया या रजा राय बरेली कि ये जो गुम्मत बना इसके पर वो बनी हुई उस पर क्या होता। मैंने इसमें सब महारानी बैठती थी, जगह जगह से लोग आते थे वो सब बैठती थी, इसमें हम भी लोग जाते थे, मगर सामने मर्दाने में नहीं। मर्दाने में कभी गाने ही हो, जिसको बुलाना हुआ जनाने में बुला लिया, समाज को भी बुलाना हुआ तो नहीं बुला लिया और उनका सुन लिया। कभी अगर ऐसा होता तो कितनी बेइज्जती होती आपको सोच। तमाम तोपें पूरे किले पे लगी, पूरी पलटने लगी हुई, अल्लाह वो दौर बगैर छः छः जगह तो हमारा इंक्वायरी होती थी, ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ।
1: बहुत दुनिया देखी आपने और सुनहरा दौर देखा, वो दौर देखा जो
0: क्या
1: आज जिसके बारे में बात
0: साहब
1: करते भी
0: खून खौलता है देख के, बेगैरती है, बेहूदगी है, नहीं अदब उठ गया ना, लिहाज उठ गया मेरा बच्चा। हाँ अब ये थोड़ी अगर आप माशाल्लाह 10 बच्चों के बाप हैं, मेरी तो आप औलाद की जगह, जब मैं आपकी इज्जत नहीं करूँगा आप मेरे क्यों करेंगे। हम तो इतना बच्चा उससे भी इज्जत नहीं बोलते,
1: जी जी
0: अपनी इज्जत आप करो।
1: मौसीकी की दुनिया में बहुत कुछ तब्दीलियां आई हैं,
0: जी
1: वो आपको कैसे लगती?
0: बुरी, क्योंकि अंदर की कला जो होती है वो और होती है।
1: क्या क्या तब्दीलियां आ गई आपके दौर से और आपके दौर में?
0: ये तो कहिए कोई जानते ही नहीं ना।

0: गुरु को, मुझे दुनिया से जाना है बेटी, आपको रहना, आप तो खुद इज्जत करो हमारी, हमने कोई खुदा ना करे आपका इलम थोड़ी चीन, ना मेरे खानदान में ये आप कहीं मालूम कर लें, किसी ने नहीं किया, ना औरत ना मर्द एक मेरे अलावा।
1: आज जो संगीत के सीखने वाले हैं
0: जी,
1: क्या वो उसी दौर की तरह है जब आपने संगीत सीखा था?
0: जी नहीं।
1: क्या क्या बदलाव उनमें आ गया है और किस तरह से उन्हें अब करना चाहिए?
0: बात ये देखिए, सुर तो एक ही होते हैं, सुर तो नहीं बदले जाएंगे, मगर उसके तरीके बदल दिए, गाने के लहजे बदल दिए, तबले के बोल बदल दिए। अब हमारे तो तबले के बोल हैं वो और ही हैं जो बजाएंगे इनके और होंगे, इसलिए वो कोई हमारे साथ नहीं बजाता। और हमारे तो नोटिशन है ना, तबले के बोल भी हैं, तबले के मात्रे भी हैं, गाने के बोल हैं, गाने के सारे गामा सभी कुछ। तो ये चीज़ें पहले तो सिखाने वाले नहीं, माफ़ कीजिएगा बेटे, स्कूल ऐसे चल गए ना, अब चाहे जैसा भी कुछ है वो स्कूल में तालीम डांस स्कूल का हो गया, उस आदमी से आदमी बचाव करता, हम पैसे पे नहीं मरते हैं, हम मरते हैं इज्जत पे, हम मरते हैं कि जो आप हमारे साथ इज्जत हमारी करते हो, हमें पैसों की परवाह नहीं।
1: अच्छा, कभी आपने अपनी परफॉर्मेंस दी हो, ऐसी दाद मिली हो जो आज तक आपके जहन में हो?
0: साहब दाद की तो बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है जिस जगह गए दादी मिली, क्योंकि हमारे कर शेरवानी साहब इलाहाबाद के थे, वो नवाब साहब से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, डॉक्टर शौकतुल्लाह के खानदान की बता रही हूँ। वो साहब हम गए, ये किताबें बिक रही हैं, हाँ किताबें, ये कितने की है, ये कितने की, जो गाना शुरू हुआ तो यकीन कीजिए 10 दिन हम रुके, 10 दिन हम रुके वहाँ पे, और जब कोई तकरीब हुई उन्होंने हमें बुलाया, हमारे पास तो मेरे लाल हमने कोई कमी नहीं।
1: अच्छा, उस दौर में अपनी आवाज़ को ठीक रखने के लिए क्या नुस्खा अपनाया आपने?
0: आप यकीन कीजिए हर चीज़ खाते थे, हर चीज़ हमने लोगों को देखा कि कुछ ऐसे ही कि खटाई नहीं खा रहे हैं कुछ, अरे साहब हम तो कहीं बंदी नहीं थे, गले में बाग था, इतना बड़ा बाग आज भी है, इतनी इतनी बड़ी संतरे आलू बुखारे, अरे दुनिया की चीज़ ऐसा खाया मौलन कहती थी साहब ये बच्ची है नहीं मानेंगी, तो आवाज़ तो ये अल्लाह की दी, मेरा तो ऑपरेशन हुआ हुआ है बेटे
1: जी जी,
0: टॉन्सिल का ना नवाब के बच्चों का हुआ था मेरा भी।
1: लेकिन उम्र के इस दौर में भी आपने खुद को चुस्त दुरुस्त रखा हुआ है, काफ़ी कुछ मेहनत आप अपने शरीर पर भी करती होंगी, कैसे आज आपने मेंटेन किया हुआ है अपने आप को?
0: सबसे बड़ी मेंटेन तो चलना है
1: जी,
0: और हमेशा ये मेरे नवासे बैठे इनसे पूछिए अलग अलग लिख कर देना निवाले 5, दिमागी तकलीफ अलहदा है, दिली तकलीफ अलग, जब ताकत नहीं होगी तो आदमी क्या करेगा, मगर हम कहते हैं उसने रिजक ही उठा लिया, क्या पता आदमी खाने से जीता देखे
1: जी, जी,
0: अब हम आपसे सेब हम नहीं खा सकते, संतरा हम नहीं, कोई चीज़ ही नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर और डर भी लगता, क्या खा गए तो कहीं हाई और रहता ही हाई।
1: आप हमारे साथ अभी और सालों तक रहें, हम दिल से यही दुआ करते हैं,
0: मोहब्बत
1: और इतनी अच्छी इंसान है आप, इतना प्यार करने वाली हैं कि आपके साथ जितना भी वक्त गुजरता है तो दिल को ये लगता है कि एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जिसका साया हमारे साथ रहे, उसका हाथ हमारे सिर पर
0: है। सिवाय दुआओं के बेटे और कोई काम ही नहीं है, और दुआ सबसे बड़ी नेमत है, वो तो बड़ा बदनसीब आदमी जिसने दुआ नहीं ली अपने बुजुर्गों की, सबसे बड़ी बात ये, हम तो बेटे दुआ का, लोग कहते हैं ये दुआ का खजाना है, दुआ भी हम और रंग से देते हैं जी, जब सड़क पे निकले मम्मी सिर पे हाथ रख दो तो उसकी बीवी बोली ये दुआ का खजाना है, हाँ ये तो निकलती है तो इनका।
1: अच्छा महाभारत जी, बहुत लंबी जिंदगी आपने देखी है और हर इंसान की कुछ ना कुछ तमन्ना होती है, शुरू से वो एक सपना देखता है और जब वो सपना पूरा हो जाता है तो उसके दिल को तसल्ली भी होती है, तो कौन सी ख्वाहिश ऐसी है जो तमन्ना भी दिल में कुरेदती है आपको?
0: अब ये बात मैं बताऊँ आपको, पाजी अरमान तो अल्लाह पूरा करता है, बाजे दिल के दिल में ही रह जाते हैं। हम इतने घर में गरीब में गए थे बेटे कि हमें कोई मेहनत ही करके खाई, शेख मानने की बात नहीं, हमारे मियाँ कपड़े वाले मिल में नौकर से क्या तनख्वाह थी 2500 रुपये, और फिर घरदारी, फिर ससुर और सास और नंदे 14 नंदे, मगर अल्लाह से तोबा करते हैं बेटे, मायके से अच्छे गए थे खाते भी, मगर हमारे आदमी में एक ये बात बड़ी खूबी की थी, आपसे बात कर रही उन्हें पता नहीं, इनसे बात कर रही हूँ हंस के पता नहीं, क्योंकि मर्द खुद आजमाता है या औरत है कि
1: बिल्कुल,
0: आज तक कोई ये नहीं कहेगा कि ये इस समाज की आदमी, क्योंकि हमें बेटे वो तालीम ही नहीं मिली, हमें तो कोई ऐसे वैसे से या अल्लाह अल्लाह को बुरा ना लगे मैं परवर दिया, कोई कहेगा कि ये क्या बात कर रही, हमें तो ऐसे वैसे से बात करते भी घिन आती है, मेरा बच्चा जो बेतहजीब लोग होते हैं।
1: अच्छा, अब आज के जो बच्चे हैं मौसीकी की तरफ उनका रुझान है, उनके लिए आप का

0: क्या कहना है, क्या आपका आशीर्वाद है उनके लिए?
1: मेरे बच्चों के लिए तो यह है कि अल्लाह का बेटे लाख लाख दुआओं का है कि एक डीएम के नौकर हैं। अरमानों की अगर आप पूछें तो बतेरे बहुत कम निकले क्या कोई शेर है। तो हमारा तो अरमान बस गरीबी में बहुत बुरी गुजरी है जी। अब आपको यहाँ बता रही हूँ ना कि हमने खुद कमा के खाया है और अपने बच्चे पाले और बाबा अंदाजा लगाई। हम बिजक भी सकते थे, गाने बजाने का काम तो हमारे तो आदमी को पता भी नहीं होता, मगर नहीं, हमें उतना जाना है। वो तो आदमी हमारे भरोसे पे, हम उसके भरोसे पे तोड़ी, तो इज्जत तो हमारी अपनी है बेटे। ये तो बेवकूफ़ औरतें हैं जो ये कहें हम आपकी इज्जत लिए बैठे ना।
0: जो संगीत सीख रहे हैं बच्चे, उनके लिए आपका क्या कहना है, किस रास्ते पे वो चलें, किस तरह से अपने आप को तैयार करें?
1: एक बात सुनिए, संगीत का मतलब यह है कि पहले सारे गामा क्या चीज़ है, सात सुरों में ही तो सारी कायनात है।
0: बिल्कुल।
1: और इस सुरों में हजारों सुर, एक ही होगा मगर हजारों रंग होंगे उसके अंदर एक ही सरगम में। सा नी सा गा मा नी धा मा पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे सा धा नी सा गा रे सा गा मा गा रे सा नी सा गा नी धा मा पा मा गा रे गा मा पा गा रे सा धा नी सा गा रे गा मा गा रे सा नी सा गा मा सा सा रे सा नी धा पा मा गा मा पा धा नी सा रे सा नी सा गा गा रे सा नी सा गा मा। और ऊपर तो ये सरगमे सपाटे की कहते थे, पहले सुर से और आखिरी सुर तक जाना, मध्यम पंचम चढ़ी गंदा रुधी गंदा। तो ये आजकल कहाँ बता रहा है, जो गाना उस्तादों का सीखा हुआ होता है, जो पुराने लोग गुजर गए बेटे वही कर, में थोड़ा आपको मिला है थोड़ा इनको मिला थोड़ा ये है। पूरी कायनात कोई नहीं देता, ये नवाब रज़ई अली खां था जिसने पूरी कायनात दे दी। आप पूरी किताब आपने अभी देखी नहीं, आपको सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर दिमाग अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमसे भी लोगों ने दो चार ने कहा भी कि हम अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि अच्छा उस्ताद मिले जिसको मालूमात अच्छी, जिसकी नींव अच्छी पड़ गई, मकान पूरा खड़ा हो जाए। तो यही गाने बजाना का जो सरगमों से वाकिफ रागों से, इस राग की सरगम ये भैरवी की है, ये भैरव की है, ये परत की है, ये तो उससे ही आदमी आगे बढ़ता है। और जब आपके अंदर वो चीजें नहीं है तो आप नहीं गा सकते।
0: महापारा जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और अपनी जिंदगी के खास लम्हात बांटे हमारे श्रोताओं के साथ, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और ये दुआ करते हैं कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो।
1: आप
0: ये
1: और दुआ कीजिए हमारे लिए, पक्की उम्र और क्या बढ़ती चली जाए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: श्रोताओं, ये थी जिंदगी के आईने में कार्यक्रम की आज की कड़ी। अगले अंक में फिर हमारे साथ होगी एक और शख्सियत। तब तक के लिए असीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरोहर में धारावाहिक जिंदगी के आईने में की कड़ी संख्या एक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 11:30। प्रस्तुत है श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित आज का मनभावन कार्यक्रम।

श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली शब्दावली हमारे पास आई है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खां, राजिया खां सिमरन खान लिखते हैं। जी हां दोस्तों, इच्छाओं का अंत कहां, पांव जमीन पर थे तो बादलों की चाह थी, अब पंख मिल गए तो सितारों की तलाश है। इंसान की फितरत भी कितनी अजीब है, जो पास है वो कम, जो दूर है वो खास है। पांव के छाले नहीं देखते, बस मंजिल की चाह है। इंसान की फितरत ही शायद अधूरी एक आह है। खिलौने बदल जाते हैं पर खेलने की जिद वही रहती है। बचपन से बुढ़ापे तक बस कुछ और की प्यास बहती है।

भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। श्रोताओं, कार्यक्रम की ये अगली शब्दावली हमारे पास आई है ईदगाह गेट मुरादाबाद से, शफी अहमद अंसारी, रईस दूल्हा अंसारी लिखते हैं, वक्त के साथ बदलते रिश्ते, जिंदगी की सबसे बड़ी उदासी यह है कि जिन लोगों के लिए हम जीते हैं वही आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं, कभी किस्मत की वजह से, कभी वक्त की वजह से, और कभी गलतफहमी, यही गलतफहमियां दूरी ला देती हैं। आखिर में यादें तो रह जाती हैं मगर वो लोग साथ नहीं रहते।

0: कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं,

बढ़ते हैं, नदियाँ अपने आप बहती हैं, बच्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, हमें बड़े करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे किए बिना कुछ नहीं होता। ये इंसान का अहम भाव नहीं है तो क्या है? जीवन अपने से चलता है, सृष्टि अपनी मस्ती में मलंग रहते चलते रहती है। हम नहीं थे तब भी सब कुछ अपने आप चलता था, और सृष्टि के अंत तक सब कुछ अपने आप चलता ही रहेगा। भविष्य में हम नहीं होंगे तब भी सब कुछ चलते रहेगा। ये चलते रहने की प्रक्रिया अविरत चलती रहती है, इसे भगवान भी नहीं रोक सकता। बुराई को कोई कभी मिटा नहीं पाया, क्योंकि बुराई भलाई का अनुषंगिक है, इसे मिटाने में भगवान भी असमर्थ रहा। रावण को भी कोई मिटा नहीं पाया, रावण मिट गया तो समझो राम लीला भी मिट जाएगी। बुराई रहने से भलाई का मान सम्मान है, बुराई ना रहे तो भलाई को कौन पूछेगा? किसी चीज़ का भी आरंभ अपने हाथ में नहीं है तो उसका अंत हमारे हाथ में कैसे होगा? ज्ञानी सत्य को जानता है कि चीज़ें अपने से ही होती हैं, जो भी चीज़ें प्रकृति से आती हैं प्रकृति ही वापस लेगी, जहाँ से आती हैं वहीं वापस चली जाती हैं। हम बीच में व्यर्थ ही अपने आप को खड़ा कर देते हैं, इसलिए सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। आते वक्त हमें किसी से नहीं पूछा कि तुम क्यों आए हो, आते वक्त हमें किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्यों आए हो, और जाते समय भी कोई नहीं पूछेगा कि तुम क्यों जा रहे हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू सब परमात्मा पर छोड़ दे, वह जो कराए तू कर, तू अपने को बीच में मत ला। एक बात गांठ बांध के रखना, हमारे किए कुछ नहीं होता, जो होना है वही होके रहता है, उसे ना भगवान रोक सकता है और ना इंसान।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमारे पास आई है जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा लिखते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी इस गलत फहमी में मत रहना कि लोग तुम्हें सच में चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुमसे मिलने वाले वायदे को चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जिंदगी बड़ी अनमोल है। हम किसी भी इंसान से मतलब के लिए व्यवहार ना रखें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के काम आते रहें, ये जिंदगी है जनाब। हर हाल में जीना है, क्योंकि जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, मिलकर सामना करना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हम खुश हैं, यह ज़रूरी नहीं कि आने वाला कल भी आपको खुशियाँ देगा। इसलिए ऊपर वाले से जिंदगी मिलने का शुक्रिया कीजिए। ऊपर वाले ने आपको जितना दिया है उतने में ही खुश रहे, क्योंकि जितना आपके पास है ना उतना हर किसी के

पास नहीं। जिंदगी को ऐसे जियो जो मिसाल जाए, मिसाल बन जाए। काम ऐसा करो कि लोग आप पर गर्व करें। सब कुछ मेहनत करने से ही होता है। मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमारे पास आई है। राजद्वारा कोठी अफसर आला रामपुर से रूमा खान, बॉबी खान, सुबहान मदीहा, गुलफशां जीना तमान, शबनम अब्बासी, शमा परवीन, सिमरन खान। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को फतेह करना चाहते हो तो अपने आप को फतेह करो। अगर तुम कामयाबी का सबसे बड़ा उसूल सीखना चाहते हो तो अपनी मदद आप करना सीखो। अगर तुम दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत अमली इख्तियार करना चाहते हो तो खामोशी इख्तियार करो। अगर तुम शैतान के सीने पर मूंग दलना चाहते हो तो हमेशा हक पर रहो। मोहब्बत में गुजारा एक लम्हा 100 बरस की जिंदगी से अच्छा है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मनभावन। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
2: Strengthening cooperation against terrorism.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष

0: अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स H20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 12:05 हुए हैं। सुनिए लापता व्यक्ति के संबंध में सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना नखासा जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि श्रीमती रेशमा पत्नी राजपाल निवासी ग्राम महराना थाना नखासा जिला संभल विगत दिनांक 16 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 35 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गेहुआ, पहनावा सूट सलवार चुन्नी लाल कुर्ती पहने हुए हैं, पैरों में चप्पल हैं। इनके बाल काले हैं, शरीर की बनावट सामान्य और विकृति है, इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और इनके बाएं हाथ की बाह पर जले का निशान है। यदि किसी को इनके बारे में पता चले अथवा ज्ञात हो तो हमें इस पते पर सूचित करें। प्रभारी निरीक्षक थाना नखासा जनपद संभल, मोबाइल संख्या है 9012176188। लापता व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
1: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
2: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
0: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। फरमाइश की है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया, रोशनी, शायना, काजल, असद भाई, फिरोज़ा, मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से हैं तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हैं भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दुवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष। गन्नौर से हैं आदिल कंवर तस्दीक, अली मुजफ्फर अली और इन्हीं के साथ ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। ग्रामा पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहांत से हैं रमेश्वर कठहरिया, उमाकांति कठहरिया, कमलेश कठहरिया, पुत्र वधु निशा कठहरिया, प्रज्ञा कठहरिया, प्रतिमा कठहरिया, वेद बाबू कठहरिया, समस्त कठहरिया परिवार और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। मूंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, शुक्रिया के साथ ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। और नमस्कार के साथ ये मैसेज हमें भेजा है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ा काछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, इनके पिताजी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भावी सिक्का। फरमाइश की है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमर निशा शाविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। कर्नाटक स्टेट चिन्ना तिरुपति से प्रकाश श्यामला। फरमाइश की है प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। तो आप सभी के लिए गीत, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम, अपने रेडियो साथी अनुराग सिंह राजपूत के साथ। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमारे पास आई है। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदीहा खान, सुबहान खान, फिरोज खान। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन। और इन्होंने सुनना चाहा है जनता हवलदार फिल्म का ये गीत। और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी रॉय, हिमाक्ष। हर्ष रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर, रामेकर परिवार, रहाट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली। गंज डुंडवारा कासगंज से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिर बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही। फरमाइश की है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। मनाली हिमाचल से हैं हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। तो आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

अभी आपने सुना जनता हवलदार फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमारे पास आई है। ग्राम पंचायत कालेगांव से श्री सुधाकर राधे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राधे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और समस्त राजे जाधव देशमुख वायल परिवार। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। कटोरा तालाब बक्सर से हैं रेशमा नारंग, वली राम नारंग, सुल्तान नारंग। सहारनपुर से हैं सोनाली नारंग, आशा नारंग, सुरेश नारंग। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। अदीबा कौर रेशमा चौहान, वली भाई डोकर सहारनपुर से। पंजूसराय संभल से हैं छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीद रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और डॉक्टर दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धा नंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। बुलडाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। आदरणीय

प्रणाम के साथ ये हमें मैसेज प्राप्त हुआ है। जिला समस्तीपुर बिहार से विनय कुमार मिश्रा, विनीता मिश्रा, अमन परासर, आराध्य, मीरा सिंह और ललन मिश्रा, यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, रायदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। जमानिया गाजीपुर यूपी से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, कमहरिया। जमशेदपुर से हैं विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार, यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। धनौरी तैलीवाला से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी, आलिया, आयान बाबू। आपने सुनना चाहा है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत।

जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ आ आ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम अपने रेडियो साथी अनुराग सिंह राजपूत के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। राजदौरा रोड मीठा कुमार रामपुर से हैं आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभेरिया, आरुष और फिरासत। राजद्वारा रोड मीठा कुमार रामपुर से हैं आकाश रस्तोगी, और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। जवाहरनगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। ततरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। रहाट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका रामिकर, यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। अमन आफरीदी, दानिश शेख, नवाज शेख, बेगम इमराना नाज, मास्टर खिल्लू परवेज, गंजडवारा उत्तर प्रदेश से, और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं राधा नामदेव। बेबी मुस्कान, गुल फराज शेख, सरफराज शेख, साइना फारूक, शमा परवीन, एम फारूक, गणेशपुर, गंजडवारा, एटा, उत्तर प्रदेश से। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन। और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। डोंडी लोहारा बलौद से हैं हरिशंकर डोम, आरती और अनीता डोमिन। और जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमशुल हक, राज अंसारी और फातिमा राज अजनबी। श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी यूपी से हैं आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीत, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और प्यारी प्यारी कोको रानी। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी, लावली, आरती, अरोड़ा। गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, और सहारनपुर से उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव। ये हमें दोबारा से मैसेज प्राप्त हो गया है, ऐसा ना कीजिए। कार्यक्रम के इस गीत की फरमाइश की है बेताब रेडियो लिसनर क्लब पटना बिहार से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम, आकाशवाणी का यह रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाला है। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड

0: स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाद श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागृति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागृति टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से।
1: शादाब, आप से थोड़ी देर यानी 1:15 पर आप सुनिएगा कलाकार नैना देवी श्रीवास्तव के कुछ लोकगीत। और दोपहर के 1:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम आंचल। परिचर्चा होगी महिलाएं निभाती दोहरी जिम्मेदारी, श्रीमती रीना और एक लोकगीत भी आपको सुनवाया जाएगा। साथ ही चर्चा होगी स्वस्थ जीवन, खुशहाली खुशहाल जिंदगी। श्रोताओं, 2:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम सुनहरा दौर। इसमें हम आपको सुनवाएंगे 90 के दशक के कुछ फिल्मी नगमे।

हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होगी शाम के ठीक 4 बजे। विशेष कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। नाम होगा संदेश टू सोल्जर्स और 5:15 पर आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। इसमें आज का आकर्षण होगा फेसबुक लाइव और इससे ठीक पहले यानी 5 बजे आप सुनेंगे कंप्लीट कार्यक्रम आज शाम। शाम के 6:10 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत और शाम के 6:20 पर किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति होगी अनिल किशोर और पंकज बाबू की। चर्चा सुनिएगा खेती में खरपतवार नियंत्रण जरूरी, साथ ही एक लोकगीत भी आपको सुनवाया जाएगा। और शाम के 7 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम काव्य प्रवाह में काव्य पाठ। प्रस्तुति होगी ब्रजेंद्र।

तिवारी जी की, और शाम के 7:31 पर सुनेगा कलाकार सोनाली व रूप कुमार राठौर के कुछ लोकगीत। कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। कार्यक्रम रात्रि 8 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। गीत गाता चल व्हाट्सएप फरमाइशी कार्यक्रम, और यही कार्यक्रम आप दोबारा सुन पाएंगे रात्रि 8:30 पर। समय याद रखिएगा रात्रि 8 बजे और 8:30 पर कार्यक्रम गीत गाता चल। 9:30 पर आप सुनिएगा सबरस नात और भजन, साथ ही 4 वेद भी आपको इसमें सुनवाए जाएंगे। कलाकार होंगे जाफर हुसैन, रीता शर्मा और आरजू साहबजादा। श्रोताओं, यह थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 होने वाले हैं। अब इलाकाई खबरें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी।

0: अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ मुनक्कदा तब्दीली हिंद के नवे साल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे पास 7 मेट्रो शहर है। हिंदुस्तान की पहली रैपिड ट्रेन दिल्ली और मेरठ के दरमियान चली। अमनो अमान के हवाले से उत्तर प्रदेश के मुकर्रर करदा अहदाफ सबके सामने हैं। वजीर आला ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में जहां भी जाएं आपको तरक्की, सलामती, रोजगार और जरई तरक्की का एक नया मॉडल नजर आएगा। तमाम 75 अजला में बैक वक्त तरक्की हो रही है।
1: भारत का पहला एमआरओ वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे कर जा सकती। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का चलन हो। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ का है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी ये अब।
0: गाजियाबाद में मुनाकदा प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज एनडीआरएफ की खिदमत के लिए जो अलामत दी गई है वो एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ, पंचायत से लेकर रियासत तक पूरी रियासती मशीनरी, एनसीसी, एनएसएस और हजारों की तादाद में खिदमात में लगे हुए लोगों को दी गई है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के जवानों को देखकर लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। मरकजी काबिना ने 2026-27 के लिए मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ की 14 फसलों के लिए कम अज कम सहारा कीमत में इजाफे को मंजूरी दे दी है। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबिना की मीटिंग के बाद कहा कि हुकूमत ने किसानों के लिए मुनाफा बख्श कीमतों को यकीनी बनाने के लिए खरीफ की फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कम अज कम सहारा कीमत में इजाफा करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि फैसले से न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और जरई तनु की हौसला अफजाई होगी बल्कि खुशहाल किसान, मजबूत हिंदुस्तान के अज़्म को भी तकवीयत मिलेगी। रियासत भर के किसानों ने खरीफ के फसलों के लिए एमएसपी में इजाफे पर खुशी का इजहार किया है। मगरबी एशियाई तनाजा से पैदा होने वाले तनाई के आलमी बुहरान के तनाजुर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मरकजी और रियासती हुकूमत ने ईंधन की बचत के इकदाम को तेज कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईंधन के अलामती कीमतों में इजाफे की वजह से हालिया घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले के साइज में नुमाया कमी की। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अपने काफिले के साइज निस्फ से कम कर दिया है। इस तनाजुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों से वजीर आजम की कॉल में शामिल होने की अपील की। वजीर आला ने उन पर जोर दिया कि वो ईंधन की खपत को कम करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक आला सतही मीटिंग में हिदायत दी कि वजीर आला और वुजरा वगैरह के बेड़े में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। दरियस्त असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने असेंबली की पार्लिमानी कमेटियों के पहले से तयशुदा तमाम मुतालती दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकाम तक मुलतवी कर दिया।

0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपनी तौसीशुदा काबीना की पहली मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने किफायत शारी तवानाई के तहफ्फुज़ और जिम्मेदाराना वर्क कल्चर को फरोग देने के लिए अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नजर ईंधन की बचत न सिर्फ एक मुआशी जरूरत है बल्कि कौमी जिम्मेदारी भी है। वजीर आला ने हिदायत दी कि सेक्रेटरेट और डायरेक्टरेट में एयर कंडीशनर के दर्जे हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बरकरार रखा जाए, कुदरती रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और बिजली का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक किया जाए। डेयरी कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर के इजाफे का ऐलान किया। तरमीम शुदा कीमतें आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में गुजशत 24 घंटों में बारिश आंधी और बिजली गिरने के हादसात में तकरीबन 89 अफराद हलाक हो गए। बाकी तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कल 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नतायज का ऐलान किया। तलबा सरकारी वेबसाइट डीजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर दर्ज करके अपने नतायज दे सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से लाकर खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब सुनिए कुछ लोकगीत और कलाकार हैं नैना देवी श्रीवास्तव।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ, 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और?
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: पुलिस?
8: मिस सीमा
7: जी,
8: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
7: क्यों? लेकिन मैं
8: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
7: डिजिटल अरेस्ट?
8: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
7: इतने पैसे?
8: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
7: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
9: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: 10,00,000 की लॉटरी मुझे?
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
6: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: 10,00,000 की लॉटरी मुझे?
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
6: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ, 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और?

0: पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
0: जाओ भाई।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है, मैं कलाकार नैना देवी श्रीवास्तव के कुछ लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती गाती है में कलाकार नैना देवी श्रीवास्तव के कुछ लोकगीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम आंचल।

आंचल कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को गुंजन की राम राम। कैसी हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगी और आपके जो परिवार वाले हैं वे भी सब ठीक ठाक होंगे। बहनों, आज हम बात करेंगे वाह बारे में जिसको होनो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हमारी अच्छी सेहत। यानी कि हमारो स्वस्थ जो जीवन है ना, वो होनो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम स्वस्थ ना होंगे तब तक हमारी जो खुशहाल ज़िंदगी है वो ना होगी। और स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं तीन बातें। एक तो हमारी दिनचर्या या को ठीक होनो, दूसरों हमारो संतुलित आहार, और तीसरों है नियमित योगा या व्यायाम करनो। बहनों, कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करते हैं, और असली जो धन है वो भी हमारी जो वो है हमारो सेहतमंद जिंदगी जो है वो हमारो असली धन है। स्वस्थ शरीर ही हमारो असली धन है। जब तक हम अपनी सेहत को ध्यान ना रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हमने बताओ कि हमारी जो दिनचर्या है, ऐसा ना है कि खाना खाने को कोई टाइम ही ना है, कब सुबह का उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं, का है कोई दिनचर्या ही ना है कि हमें कब का करने हैं का ना करने हैं, रोटी खाने को का टाइम है, किस टाइम हमें दोपहर को खाना खाने है, किस टाइम हमें रात को खाना खाने है, कोई दिनचर्या ही ना है, ना वहाँ हमें टहलने जाने हैं या हमें कोई व्यायाम करने हैं, कोई निश्चित दिनचर्या ही ना है हमारी, कि तो सबसे ज़्यादा जो असर हमारी सेहत पर पड़ता है वो पड़ता है दिनचर्या को। अगर हमारी दिनचर्या नियमित होगी तो हम जो है वो सेहतमंद रहेंगे। साथ ही साथ हमारे खान पान को जो सीधा असर है वो हमारी सेहत पर पड़ता है। अगर हमारा खान पान संतुलित है तो हमारी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। और कहते हैं कि संतुलित आहार में जैसे हमारे जो मोटे अनाज हैं हम उनको भी शामिल करना चाहेंगे, हरी सब्जियाँ हैं। और जा टाइम मौसम की तो कोई पता ही ना चल रही किस टाइम कैसा मौसम ही रहो। आजकल आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बरसात भी ही रही है, और तेज हवाएं वो चल रही हैं, तो मौसम को कुछ समझ में ना आ रहा हो कि किस तरीका को मौसम चल रहा हो। और ऐसे में बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है अपने सेहत की, हम अपनी सेहत को किस तरीका से ध्यान रखें। तो ज़रूरी यही है कि हमारा खान पान संतुलित हो तो जो है मौसम चाहे कोई सो हो बाको हमारा असर जो है हमारी सेहत पर ना पड़ेगा। मैंने अब इस टाइम जो हमें अपने भरपूर मात्रा में पानी पीने हैं, पेय पदार्थ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेनो। साथ ही साथ मौसमी फल हैं, जा टाइम खरबूजा है, तरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, अब तो आम भी बाज़ार में आए गए हैं। तो जो मौसमी फल हैं उनको अपने खाने में ज़रूर शामिल कर लें। साथ ही साथ जो मौसमी सब्जियां हैं उनको ज़रूर अपने भोजन में शामिल करें। कहते हैं कि मौसमी फल और सब्जियां हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद होती हैं हमारे लिए, और उनको बहुत ज़्यादा दुगना लाभ होता है। अब बेमौसमी आप सब्जियां खाएंगे तो देखो, एक तो उनमें स्वाद ना हो तो दूसरी दूध हमारे सेहत के लिए भी हमारे भी लाभकारी ना होता, क्योंकि उनमें भी लोग जो है रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं और भी दवाइयाँ

या जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह ही जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनो जो खान पान है वो अच्छो रख कर का खाने हैं का ना खाने हैं, और सस्ते के चक्कर में जो ख़राब सब्जियां हैं बेल का नहीं आवे, और कि सस्ती मिल रही है तो चलो कोई बात ना, आधी ख़राब है आधी काट के निकाल लेंगे। तो ऐसे जो हमारी बहनें ना करें, बहुत सी बहनें ऐसा काम करती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें, सब्जियाँ ताज़ी हों, घर लाएँ उन्हें साफ करें, पानी से अच्छे से धो लें, और वैसे भी साफ़ सफाई को ध्यान रखें, क्योंकि साफ़ सफाई को भी हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। घर साफ़ सुथरा होएगो तो मक्खी मच्छर ना होंगे, मक्खी मच्छर ना होएगो तो देखो मलेरिया ना होएगो। आसपास में पानी जो है हमारे घर के आसपास भरो हुए तो बा को भी साफ़ कर दें, नाली हैं उनको भी नियमित साफ़ कराते रहें, कूड़ा है कूड़े की जगह पर डालें, हमारे जो डस्टबिन होता है उनमें कूड़ा डालें जो बनी हुई है निश्चित जगह। तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत जो है इन चीज़ों से सुधर सकती है, अगर हमारा खान पान हमारी दिनचर्या अच्छी है। बात आती है योगा और व्यायाम की, तो रोजाना आधो घंटा 15 मिनट जितनों भी आपके पास टाइम है आप जाके लिए जरूर निकालें, चाहे सुबह को निकालें चाहे शाम को निकालें। सुबह ही सके तो थोड़ा तो टहलन के लिए चले जाए, कहें तो पैदल चल लो, हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप रोज़ाना पैदल भी चल लेते हैं ना तो वो बाकू असर हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। आजकल देख लो कैसी कैसी बीमारियाँ जो है लोगों को ही रही है, तो वो सब कारण वह है कि हमारी दिनचर्या हमारा खान पान, हम योगा ना करते हैं व्यायाम ना करते हैं तो बाको सीधो असर हमारी सेहत पर पड़ जाता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं स्वस्थ जीवन खुशहाल जिंदगी तो हमें रहने पड़ेगा सेहतमंद, अपने खान पान को अच्छे से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहते हैं कि तंदुरुस्ती वो अनमोल तोहफा है जो मेहनत से मिलता है। सेहतमंद इंसान को चेहरा हर मौसम में खिलता है, न दौलत काम आती है और ना ही शोहरत साथ देती है, अगर काया स्वस्थ है तो ही जिंदगी साथ देती है। तो बहनों सेहत को निवेश सबसे सुरक्षित निवेश है, अपनों ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। और सुन लेते हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

0: मैनू अभी आपने सुनो शालू शक्सेना की आवाज़ में गाओ जय लोकगीत। तो जय लोकगीत के बाद अब ले चलते हैं आपको हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परिचर्चा। विषय है महिलाएं निभाती दोहरी जिम्मेदारी। प्रतिभागी हैं श्रीमती रीना, श्रीमती सुषमा और संचालन करुए हमारी दीपा बहन ने। तो आइए सुनते हैं जो परिचर्चा।
1: हम अपने कार्यक्रम में बात करते हैं घर परिवार समाज और जीवन से जुड़े अहम विषयों पर। आज की हमारी परिचर्चा को विषय है महिलाएं निभाती दोहरी जिम्मेदारी। हमारे गांव और परिवार की महिलाएं सुबह से रात तक घर की देखभाल के साथ साथ खेत पशुपालन कई जरूरी कामों में बराबर की भागीदारी निभाती हैं। वे बिना थके परिवार की नींव को मजबूत रखती हैं। उनकी मेहनत, समझदारी और संतुलन ही घर की और खेती दोनों को आगे बढ़ाता है। इन्हीं अनुभवों को करीब से समझने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रीना जी और सुषमा जी, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस दोहरी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में हमारे स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सुषमा जी, घर और खेत दोनों काम आप साथ साथ कैसे कर पाती हैं?
3: सुबह को उठते हैं, फिर बच्चों को खाना बनाते हैं।
1: अच्छा।
3: हाँ, खाना उन बना के फिर अपने जानवर हैं। हाँ, फिर सबको तैयार करके भेज के फिर उसके बाद अपने जानवरों के काम करते हैं।
1: अच्छा, कितने जानवर हैं आपके पास?
3: 5 भैंस हैं।
1: 5 भैंस हैं। हाँ। अच्छा, तब तो आपके काफी अच्छे पशु पाल रही हैं आप।
3: हाँ, 5 भैंस हैं, 2 लवारिस, एक कटिया, एक पड्डा।
1: अच्छा, रीना जी आप अपने अनुभव बताइए, आप क्या करती हैं और अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करती हैं?
2: हम भी घर का ही काम करते हैं सब।
1: अच्छा, आप हाँ, आप भी घर के ही सारे काम?
2: घर के सारे काम परिवार में।
1: अच्छा,
2: वही सुबह उठना, काम करना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना उन्हें। फिर जैसे घर में हमारे पास भी 2-4 जानवर हैं।
1: अच्छा,
2: उनका करना।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ,
1: तो और घर परिवार में कितने लोग हैं आपके परिवार में?
2: हमारे परिवार में जेठानी है, देवरानी है, सास ससुर हैं।
1: अच्छा।
2: उनके 2-2 बच्चे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं।
1: तब तो आपका काफी बड़ा। हाँ, परिवार है। अच्छा, तो

0: लोग एक साथ रहते हैं या सब लोग अलग अलग रहते
1: ना,
0: हैं?
1: एक ही साथ रहते हैं सब लोग।
0: अच्छा, एक ही साथ रहते
1: हाँ
0: हैं। तब तो बड़ी दिक्कतें आती होंगी, क्योंकि बड़ो परिवार होते हैं तो फिर
1: हाँ
0: जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं।
1: जिम्मेदारियां तो हैं, फिर सब लोग मिलजुल कर लेते हैं, किसी ने
0: अच्छा
1: कोई काम में हाथ बटाया, किसी ने कोई काम में अपने, इसी तरह।
0: अच्छा तो सबसे पहले आप कौन सा काम स्टार्ट करती हैं जब सुबह को उठती हैं? तो कौन सा काम देखती हैं सबसे पहले?
1: सुबह उठकर सबसे पहले तो झाड़ू लगानो, फिर देखो बच्चन को टाइम से स्कूल भेजनो,
0: हाँ
1: सबसे पहले बच्चन को काम देखो जाता है, क्योंकि
0: जी।
1: स्कूल अपना काम तो थोड़ी देर से कर लो, लेकिन स्कूल का तो टाइम है, बच्चों को भेजो, फिर जानवरों का काम है,
0: हाँ
1: उनका
0: हाँ
1: दूध निकालो और काम
0: तो दूध घर में ही उपयोग के लिए होता है या बेचती हो?
1: ना। हमारा तो इतना बड़ा परिवार है तो घर में ही उपयोग कर लेते हैं।
0: अच्छा, तो सुषमा जी आप अपने काम को किस तरह से बांटती हैं? मतलब आप बता रही हैं कि आपके जानवर हुए और परिवार भी हुए पूरो।
1: हाँ दो तीन लड़की हैं, एक लड़का है।
0: अच्छा, तो फिर कैसे सारे
1: वो
0: काम
1: सब
0: अपने?
1: चले जाते हैं घर घर से, स्कूल को चले गए, उसके बाद फिर काम करते हैं।
0: अच्छा, क्या क्या काम
1: हाँ
0: है आपके?
1: क्योंकि जानवर को पहले तो साफ सफाई करते हैं, फिर उन्हें
0: हाँ
1: चारा डालते हैं। हाँ फिर उनका दूध दूहते हैं, दूधिया को दूध डालते हैं, फिर
0: अच्छा, आप दूध
1: हाँ
0: बेचते होंगे है
1: दूध
0: ना?
1: बेचते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ शाम को दूध खाते हैं, सुबह को बेचते हैं।
0: अच्छा शाम का
1: हाँ
0: दूध आप अपने पास
1: हाँ
0: घर के
1: शाम
0: खर्चा के लिए
1: घर
0: रोक
1: के
0: लेती
1: खर्चे
0: हैं?
1: के लिए रोकते हैं
0: जी।
1: और सुबह का बेच देते हैं।
0: अच्छा, तो इसके
1: हाँ
0: अलावा पशुपालन के अलावा और भी कोई काम?
1: फिर चक्की है।
0: अच्छा,
1: हाँ फिर चक्की का भी,
0: तो चक्की आप चलाती हैं?
1: हाँ हम ही चलाते हैं चक्की।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: आपके पति,
1: वो खेती का काम
0: अच्छा
1: करते
0: वो
1: हैं।
0: खेती देखते हैं, आप घर संभालती हैं।
1: हाँ
0: अच्छा।
1: फिर
0: और रीना जी आप अपने अनुभव बताइए। आप कह रही हैं कि हमारे परिवार में जेठ हैं, जेठानी हैं, सास ससुर हैं, तो उनकी देखभाल किस तरह से, कैसे अपने परिवार को, मतलब हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो, परिवार में प्यार बना रहे, जाके लिए आप क्या करती हैं?
1: इसके लिए प्यार बनाए कर रखता है दिल में, किसी ने कोई बात कही उसे नजरअंदाज कर दी,
0: हाँ
1: इसी तरह का से प्यार बनो रहता है। सास ससुर हैं कमजोर हैं, उनकी सेवा करनो,
0: जी जी
1: उनकी
0: बिल्कुल
1: तरफ ज्यादा ध्यान रखनो, बस इसी वजह से। देवरानी है, उनने कुछ कह दी तो नाराज ना होनो, छोटी बहन के तरह समझनो,
0: सही बात है, बिल्कुल
1: जिठानी है तो बड़ी बहन के तरह समझनो, इसी तरीका से फिर
0: परिवार
1: देखो।
0: में तभी
1: हाँ
0: परिवार चलता है, तभी सब
1: चलता
0: लोग
1: है,
0: एक साथ रह
1: जया
0: सकते हैं।
1: बच्चा है, किसी के बच्चा ने कुछ कह दे, किसी के बच्चा ने किसी को मार दो, तो उस पर लड़ाई ना करनो,
0: नहीं, सही बात है, ये
1: इसी
0: तो
1: तरीके
0: है।
1: से घर संभलता है।
0: अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे घर परिवार में हम रहते हैं तो हमें कितनी बातें हमारे मन को छू जाती हैं जो हमें बुरी लगती हैं,
1: हाँ
0: तो उस तब आपको क्या महसूस होती है? परिवार में अकेलो परिवार सही रहता है या सब लोग साथ होते हैं तब सही रहता
1: नहीं सब लोग साथ होते हैं तभी सही रहता है, उस समय कुछ समय के लिए लगती है, लेकिन उसे फिर भुला दो बात को,
0: है? हाँ
1: फिर
0: सही
1: जे लगती है तो सब परिवार में, अब हमें कोई दिक्कत है तो
0: जी।
1: देवरानी है जिठानी है वो साथ देंगी, उन्हें कोई दिक्कत है तो हम देंगे,
0: हाँ
1: कुछ समय
0: बिल्कुल
1: के लिए तो लगती है, लेकिन जब अलग हो जाएंगे तो हमेशा के लिए अलग ही जाएंगे,
0: सही बात है, बिल्कुल
1: कोई
0: बात सही है
1: सहयोग ना दे फिर।
0: जी, बिल्कुल सही बात है। सुषमा जी आप बताइए, और जैसे घर के काम के साथ खेतीबाड़ी देखती हैं काम?
1: हाँ खेती बाड़ी भी देखते हैं,
0: अच्छा, तो क्या क्या फसल आपके खेत में?
1: पास में हमारे खेत है घर के ही सामने,
0: अच्छा,
1: फिर उसमें हम घर की साग सब्जियों के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता है,
0: अच्छा सब्जियां घर पे ही करती
1: हाँ
0: हैं।
1: हम वो उसी खेत में धनिया है, साग है, बैगन है, प्याज
0: अच्छा
1: है,
0: अच्छा
1: हाँ लहसुन है, ये सब चीज़ हम अपने घर पे ही करते हैं।
0: अच्छा सारी मतलब साग
1: हाँ
0: सब्जियां आप अपने घर पे ही,
1: हाँ
0: मतलब
1: जी
0: पास में
1: सब,
0: खेत है उसमें ही
1: हाँ
0: उगा लेती हैं?
1: ये उसी में उगा
0: तो किस
1: लेते हैं,
0: तरह से सब्जियों का मतलब सारा देखरेख आप रखती हैं या आपके पति रखते हैं?
1: हम ही ज्यादा रखते हैं,
0: अच्छा,
1: वो
0: तो
1: तो घर
0: कैसे?
1: सामने ही है, मोटर घर पे लगी हुई है, अपने बह दिया फिर पानी लगाते रहते हैं।
0: अच्छा, तो खेती
1: हाँ
0: मतलब किस तरह से आपने सब्जी की तैयारी करी?
1: ऐसा पहले तो उसको जुतवाया था, फिर
0: अच्छा
1: उसमें महीन महीन मिट्टी करके फिर उसमें धनिया बोया था,
0: अच्छा
1: इसी तरीका से सारी सब्जियां
0: हाँ,
1: बनी
0: तो
1: थी।
0: देख रहे कैसे, खाद पानी की जरूरत क्या?
1: खाद जो अपने जो घर में जानवर पलते हैं उसकी खाद खेतों में इकट्ठी करके फिर उसे वही खाद डालते हैं। हाँ
0: अच्छा, मतलब जो
1: अगर
0: घर में जानवर पाल रही उन्हीं की गोबर को
1: हाँ
0: इकट्ठा
1: उन्हीं
0: करके
1: का
0: उन
1: वही
0: देसी
1: खाद,
0: खाद
1: देसी
0: तैयार?
1: खाद तैयार करते हैं,
0: अच्छा
1: अगर जरूरत पड़ती है तो यूरिया वगैरह है या डाया वगैरह ये डलवा देते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो रीना जी आप जब बताओ घर वाले हो आपको सहयोग देते होंगे, आपको किस तरह से काम में साथ देते हैं आपके घर वाले?
1: हाँ घर वाले भी बहुत सहयोग देते हैं, जैसे अब हमने कोई काम करो सुबह उठकर, तो जो छोटी हैं उनने जल्दी से खाना बना लो, बड़ी
0: हाँ
1: वाली हैं उनने जानवरन को काम

0: कर लो,
1: अच्छा
0: हमने और जैसे झाड़ू है, झाड़ू पोछा है वो कर लो, बच्चन को तैयार कर दो, फिर सास
1: हाँ
0: ससुर को देख लो, इतना जय
1: नहीं
0: ऐसी
1: सही बात
0: सहयोग
1: है। और
0: मिलता।
1: बताएं, जब सब लोग होते हैं तो काम भी
0: हाँ,
1: जल्दी होता है
0: और काम भी
1: और
0: जल्दी और अच्छा भी लगता है,
1: अच्छा भी
0: फिर अपने
1: लगता है।
0: सामने बैठ कर सब लोग आराम से
1: हाँ
0: बातचीत कर लो।
1: नहीं नहीं सही बात है। तो सुषमा जी, आपको सबसे ज्यादा अच्छा काम खेती बाड़ी करा, जो आप कह रही हैं सब्जी करते हैं हम, ज्यादा अच्छा काम कौन सा लगता है, घर को काम करना या खेती बाड़ी
0: हमें
1: करना?
0: तो दोनों ही काम अच्छे लगते हैं,
1: अच्छा
0: क्योंकि अपना घर चलाना है, बचत तो जब नहीं करेंगे तो बचत नहीं हो पाएगी।
1: हाँ नहीं सही बात
0: हाँ
1: है, ये तो है।
0: जी है, अब उसे सब्जी है बाजार से लाएंगे तो उसमें पैसे पड़ेंगे, अब घेत की है अपने जब मर्जी चाहे तब काट लो ताजा ताजा, नहीं उसमें दवा पड़ रही है, और वो
1: हाँ
0: अपने घर की सब्जी
1: और
0: सोच
1: वो
0: रहे।
1: हमारी सेहत के लिए अच्छी है, आजकल
0: हाँ
1: दवाइयों की सब्जी।
0: बहुत दवाइयों की कितनी समस्या चल रही है आजकल,
1: हाँ
0: कितने हर चीज में दवा है, और घर की है सब्जी स्वाद भी लगती है वो, और
1: सही
0: लाभकारी भी है।
1: जी जी बिल्कुल। तो सुषमा जी, काम ज्यादा हो जाए तो आप क्या करती हैं बाद में?
0: काम ज्यादा हो जाए तो भाई पति से कहते हैं अपने से थोड़ा
1: अच्छा
0: हाथ बटा दो।
1: आप कह रही हैं हमारे बेटियां भी हैं, वो भी आपका
0: हाँ
1: सहयोग तो करती
0: हाँ
1: होंगी।
0: वो पढ़ लेने के बाद अपने सहयोग वो भी करती हैं
1: हाँ
0: काम में।
1: बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो
0: हाँ
1: हमारा सहयोग ज्यादा ना
0: अब
1: कर
0: वो
1: पाते।
0: आके फिर लग जाती हैं काम में, जुट जाती हैं कि लाओ मम्मी ने दिन भर कर लिया, लाओ थोड़ा थोड़ा हम बटा दें, इसी
1: हाँ
0: तरीका से काम सारा दिन का निकल जाता
1: हाँ ये तो है।
0: है।
1: अच्छा जी बताओ, पूरे दिन काम करने के बाद जब आपको जा तो लगत हुई कि आज हम थक गए, तो आप अपनी वह थकान को कैसे दूर करती हैं?
0: शाम को तो फिर यही रखती है, बस सो गए, फिर सुबह को आँख खुलती है, दिन भर तो कतई लेट नहीं पाते।
1: रीना जी आप बताइए अपने अनुभव कि दिन भर के काम की थकान के बाद कैसे महसूस होता है कि हम अपनी थकान को आज आज हमने ज्यादा काम करो, तो आप क्या महसूस करती हैं?
0: थकान के बाद जैसे थोड़ा अपने आराम कर लो बीच में, और ये नहीं है कि थकान ये नहीं है रोज हो रही है, वो तो रोज के फिर आदत में है,
1: हाँ
0: इतना
1: हाँ
0: काम कर रहे हैं,
1: सही
0: कभी
1: बात
0: कभी
1: है।
0: हो जाता है तो ये लगती है अगले दिन को थोड़ा हल्का काम करेंगे तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, अगले दिन उससे फिर ज्यादा काम कर लो,
1: हाँ क्योंकि
0: इसी
1: काम
0: तरीका
1: काज
0: से।
1: के साथ साथ हमें अपनी
0: हाँ
1: सेहत को
0: सेहत
1: ध्यान
0: को भी
1: रखने
0: ध्यान है,
1: हैं,
0: खान पान को
1: तो
0: छोड़ो,
1: जैसे सेहत को ध्यान रखने के लिए कैसे क्या करती हैं आप?
0: सेहत के लिए अपने दूध पीते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं, उससे एनर्जी बनी रहती है शरीर में, या कभी जैसे फल खा लिए, मंगा लिए तो फल खा ले तो उससे थोड़ी एनर्जी रहती है शरीर में, थकान
1: नहीं
0: थोड़ी कम लगती है,
1: और खान पान अच्छे होए
0: तो
1: तो
0: वैसे ही शरीर में फुर्ती रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बता रही हैं कि हमारे घर हमारे सास ससुर भी हैं, तो उनकी देखरेख आप कैसे करती हैं?
0: उनकी देख रहे हैं, हमारी सास तो शुगर की पेशेंट है।
1: अच्छा
0: हाँ और ससुर को सांस की मर्जी है,
1: तो
0: तो
1: आपको
0: उनको तो
1: ज्यादा ध्यान रखना
0: खास
1: पड़ता।
0: ध्यान रखने पड़ता है, उनके
1: हाँ
0: लिए ठंडी चीज़ से बचा कर रखने हैं,
1: सही बात
0: और
1: है।
0: उनके लिए जैसे आलू वगैरह जिन चीज़ों से बचा कर रखने हैं उनके लिए अलग खाना बनाने के देने हैं, बिना आलू उनको कम तलो वो।
1: हाँ ये तो
0: हाँ
1: है
0: और गर्म पानी पीता हमेशा, तो
1: अच्छा।
0: गर्म पानी करके देनो।
1: हाँ हर छोटी
0: हाँ
1: छोटी
0: हाँ
1: बातों का
0: बार
1: ध्यान
0: उनको
1: रखो, तो
0: ध्यान रखने
1: हमारे बुजुर्ग
0: पड़ता।
1: वैसे ही हमसे
0: हाँ
1: खुश रहेंगे।
0: हाँ बार बार चाय बना कर देनो
1: सही
0: बस।
1: बात है। तो सुषमा जी, जैसे आप एक दोहरी जिंदगी जी रही हैं, घर के वो काम देख रही हैं और खेती बाड़ी देख रही हैं, तो आप कैसे महसूस करती हैं?
0: हमें तो जब करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं लगता है,
1: अच्छा करने में
0: करने
1: मतलब
0: में
1: रोज काम
0: मन,
1: करने की
0: हाँ
1: आदत हो गई है।
0: उसमें आदत हो गई। अब कभी कभी करता है जो लोग, उनको थकान होती है,
1: हाँ
0: हमें बस
1: नहीं
0: थोड़ी
1: ऐसा तो
0: देर,
1: नहीं है, थकान
0: हाँ
1: आपको भी
0: थकान होती
1: होती
0: है
1: है।
0: ऐसे फिर आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर लेट
1: हाँ
0: लें फिर उसके बाद थोड़ा
1: खान
0: सा
1: पान
0: ऐसे।
1: को कैसे ध्यान रखती हैं हमारी?
0: खान

0: भी समस्या रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि हम ना अपने सास ससुर को अकेले छोड़कर कहीं ना जा सकत। अब सब लोग हैं, किसी को भी समस्या ना है, ना उन लोगों को ना हमें।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: जैसे जहाँ आए अपने कि आज काम ज्यादा है तो वो लोग कर लेंगे, हम चले जा रहे हैं, या कल उन्हें कहीं जाना है तो हम कर लेंगे। इसलिए हमें तो साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है।
1: सबके साथ रहो
0: बहुत,
1: तो
0: बहुत अच्छा
1: लाभ भी है और नुकसान भी है।
0: नुकसान कम है, लाभ ज्यादा है।
1: अच्छा, वो तो अपना अपना नजरिया है। आपको लाभ ज्यादा लग रहे हैं, कुछ लोगों को नुकसान ज्यादा लगते हैं।
0: हाँ वो तो है ही।
1: देखो ये
0: अब
1: तो
0: देखो, सब लोग अकेले रहने चाह रहे हैं, वो जैसे रहते हैं वैसी आदत में आ जाती है।
1: बिल्कुल। सुषमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी, घर परिवार को लेकर आपकी क्या राय है?
2: घर परिवार को लेकर हम तो भाई अपने छोटा सा परिवार है, और वही सब लोग करते हैं काम।
1: एक साथ रहते हैं,
2: हाँ
1: खेती बाड़ी, बच्चों को पढ़ाना।
2: हाँ
1: सही। वो बहुत सारी बहनें सुनेंगी, घर परिवार कैसे चलावें, कैसे अपने परिवार को एक साथ रखें, जाके लिए आपका कहना चाहेंगे उनसे?
0: देखो, हमारी तो राय यही है कि हम तो जय कहना चाहेंगे कि मिलजुल कर रहो सब लोग। और वैसे तो देखो, हर किसी की अपनी समझ है, कोई किसी में खुश है, कोई किसी में खुश है,
1: बिल्कुल सही बात है।
0: उसे तो हम ना अलग कर सकत।
1: नहीं,
0: लेकिन
1: सही बात है,
0: हमारी राय तो ये है, देखो परिवार में मिलकर रहो तो उससे ज्यादा लाभ है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। और सुषमा जी, आप बताइए कि आप बहनों से क्या कहना चाहेंगी?
2: बहनों सब भाई अपना काम करें, अपना जैसे कमी नहीं होती है खर्चे पानी की। हम तो ये कहना चाहेंगे कि सब लोग अपने साग सब्जियां जो घर पे होती हैं, खाने से शरीर में लाभ मिलता है, दवाइयां नहीं लगती हैं उसमें, और खा के अपने उनका शरीर में एनर्जी आती है अच्छे से।
1: बिल्कुल। रीना जी, जैसे हर महिला को एक सपना होता है, आप अपनों कोई अपना कोई ऐसा सपना बताइए जो हमारी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बने और आपने उसे सच करने की कोशिश की हो और आपको अच्छा लगा हो वो सोच के।
0: हाँ, मेरा भी एक सपना है कि मैं अपना कोई कारोबार करूं।
1: अच्छा,
0: हाँ, और उससे जैसे मैं अपना मुनाफा कमाऊं, तरक्की करूं,
1: बिल्कुल,
0: जो
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: अच्छी
0: मेरे
1: बात।
0: ऊपर ही डिपेंड हो, बिल्कुल जो कहे कि मैंने ही करा है, जैसे मेरा ही नाम हो उसमें, किसी का ये नहीं है कि और कोई सहयोग कर रहा है तो अपने।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है रीना जी आपने। तो जैसे आपका क्या सपना है,
0: मेरा सपना
1: जैसे अगर आप कोई
0: हाँ
1: कारोबार, आप बता रही हैं कि मैं कोई
0: हाँ
1: कारोबार करूं, तो क्या करेंगी आप? अगर आपके ऊपर कोई, आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आपका क्या सपना है, वो मैं कैसे करके अपने?
0: मेरा सपना है बुटीक खोलने का।
1: अच्छा, बुटीक खोलने का। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और वो आप खोल भी लेंगी आराम से,
0: हाँ,
1: क्योंकि कोई भी काम बड़ा नहीं होता
0: बड़ा
1: है अगर
0: नहीं
1: हम
0: होता,
1: प्रण ले
0: मेहनत
1: लें
0: करो तो कोई काम
1: कोई
0: बड़ा नहीं है।
1: बिल्कुल सही बात है। आप अपने घर परिवार के साथ साथ अपना काम भी अच्छे से
0: हाँ,
1: चला लें,
0: करना
1: क्योंकि
0: चाहूंगी
1: आजकल
0: मैं,
1: महिलाएं बहुत आगे
0: बहुत
1: निकल
0: आगे
1: चुकी
0: बढ़
1: हैं।
0: गई हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो
0: परिवार वाले ये नहीं कहते हैं तुम अपना काम ना करो, करो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: सही बात
0: उसमें
1: है।
0: सहयोग भी देंगे। वो तो जो है अपनी अपनी समझ है, करना चाहिए।
1: तो रीना जी और सुषमा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आईं, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: महिलाएं निभाती जो दोहरी जिम्मेदारी, जाबिसे पर बहनों भी आपने सुनी परिचर्चा, और आप समझ भी गई होंगी कि हम महिलाओं के लिए कोई भी काम जो है वो असंभव ना है, कोई सी जिम्मेदारी है हम वहाँ से पीछे ना हटते, हर जिम्मेदारी को

0: मैं नौजाई लोकगीत के बाद अपनी बहन गुंजन को दो अनुमति। राम राम।
1: बदलो मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम आंचल। प्रस्तुति थी गुंजन गंगवार की। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब मिडडे न्यूज़ और दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन

0: सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूडीएफ ने केरल विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई।

0: नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को यह मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज शी जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं 90 के दशक के फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है डर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर में 90 के दशक के फिल्मी गीत। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाज़ें हैं कुमार सानू और लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम का अगला गीत 1942 अ लव स्टोरी से, आवाज़ें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है मृत्युदंड और आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

मृत्यु दंड। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। आवाज़ थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आईना।

0: कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म का नाम है हम आपके कौन हैं।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट।
0: अभी आप सुन रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। इसमें हम आपको सुनवा रहे थे 90 के दशक के फिल्मी गीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी आज की प्रथम सभा संपन्न होती है। अब से लेकर शाम 4 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर मौजूद रहेंगे। शाम के 4 बजे मीडियम वेव व एफएम दोनों मीटरों पर एक साथ संध्याकालीन दूसरी सभा के कार्यक्रमों को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल, आपको और साथ में हमारी सारी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, तो आज भी वजह बताइए
2: भाई। एक बार जब भी आते हैं ना, तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना।
1: हाँ,
2: सेहत का ख्याल है या नहीं।
1: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना, वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी।
2: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
1: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही हैं।
2: जी बिल्कुल,
1: वो हमसे साझा कर सकती हैं। लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
2: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना, इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है, तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
1: हाँ,
2: है ना।
1: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े, या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो

0: सकते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो
1: वो
0: उपयोगी टिप्स
1: बताएंगे।
0: लेकर
1: जी
0: बताएंगे।
1: बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
0: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
1: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किस्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें,
0: देखो
1: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला, हाँ, साधारण नहीं।
0: क्या होता है ना, आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है, उसे हम कुछ 2-4 हजार, 5-8 हजार देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं।
1: बिल्कुल। तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या
0: जी
1: कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी हैं, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
0: और
1: क्या
0: इसके
1: अनुभव
0: साथ
1: है।
0: जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि
1: हाँ
0: उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है, जो
0: हाँ हाँ
1: जहां पर हम KG 1 KG 2 के जब पढ़ते थे
0: हाँ
1: बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती। तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में
0: जी
1: या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
0: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते
1: अरे
0: हैं। कुछ
1: बिल्कुल।
0: ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं। कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है।
1: जी
0: वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, बस अपने शौक
1: हाँ
0: में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों
1: हाँ
0: से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफर अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो
0: भाई
1: है उनके।
0: जानकारी बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
1: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: बहुत सुंदर गीत था, और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है, और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना, जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल, कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर
0: जी
1: पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें, और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन
1: बिल्कुल।
0: चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है,
0: जी
1: और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या
0: जी
1: 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लास सीखूं, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी मत
0: जी
1: दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास, कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है। उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि
1: जी
0: बच्चे पढ़ लिखकर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा।
0: आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है, तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। तो
1: बिल्कुल
0: आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौर, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे, और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी
1: इस
0: कि उन्हें
1: तरह
0: पढ़ने
1: जी
0: लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो, तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां
1: रंगोली जी
0: अल्पना
1: जी
0: बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी, कभी घोड़ा, और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी। अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, तो पड़ोस के ही गांव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव

0: घरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरीबाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरीबाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
1: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
0: जी, उनके पति चले आए,
1: हाँ,
0: पति के साथ,
1: पति के साथ वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहां के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
0: ये उनको कहा तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
1: भाई, उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई, और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और त्योहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी, जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है, तो वो उनका अंदाज था।
0: भूरीबाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
1: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
0: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
1: और भूरीबाई का ये मानना है कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अभी गाना सुन लें।
0: चलिए।

0: दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सूनी होती। भाई, सखी सहेली के रहते
0: जी।
1: आपकी दोपहर कभी सूनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर, या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं।
1: जी
0: और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा।
0: जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही।
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ, पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ
0: हाँ,
1: करती थी।
0: दिल से जुड़ जाते
1: और
0: थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं
1: बिल्कुल
0: होती।
1: सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं, और दोस्ती यही मांगती भी है। अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो
0: जी
1: तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
1: चलिए।
2: हानि बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई है। प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है। छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान जब दोस्ती होती है तो।

0: ब्रह्मांडों में भारत के जो कह दे वही होगा।
1: ओए जम के एक जमा दूं

का जब तक जोड़ सलामत साथ सलामत छोटी और बड़ी है तो क्या पांचों है तो हाथ सलामत एक एक के है पांच मुकद्दर तकलीफों से घबराना मत साझे जोड़ जवानी बचपन पांच से पांच मिले।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की।
1: दोस्ती की
0: देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं।
0: जी
1: वो तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं। हर रोज 1 घंटा हमें मिलता है। सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब। सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहां बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते, है
1: सही बात है,
0: ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे ये तो श्रोता भाई हैं। ये कहते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपने हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं, सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: मैं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
1: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है,
0: वर्षगांठ
1: तो
0: है।
1: आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा।
1: अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में ढांढस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है, और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरापन सुनन सुना गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं, तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि वहां
0: बिल्कुल
1: पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते
0: मिल ही
1: हैं।
0: सकते हैं। और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथ ही रहा है। एक समय था, एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूलते थे, नहीं भूल पाते थे। पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी
1: जी
0: डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं। आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
1: बिल्कुल, अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे, तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
0: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
1: हाँ, तो वही चलिए सुनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहां हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
1: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
0: चलिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है। क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना इनकी कितना आसान ईएमआईज पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, न किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीजें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं। कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीजों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है, अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
2: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है अब हमें

0: लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए, एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किस्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
1: मैंने फिर वही कहूंगी कि किस्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किस्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना, तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किस्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किस्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किस्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज़ हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे
0: बिल्कुल
1: जो
0: सही
1: हमें
0: कहा।
1: जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, उन चीज़ों से अगर बचना है तो या तो समय पर किस्त देनी है, उतनी आमदनी आपको
0: आमदनी
1: रखनी,
0: होनी
1: या
0: चाहिए
1: तो फिर किस्तों से ही बचना है।
0: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की तो
1: जी
0: किस्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या
1: हाँ
0: कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना,
1: जी
0: जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या
1: हाँ
0: इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई ये 2 या 3 हज़ार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हज़ार तक भी चली
1: और वो
0: जाती है।
1: जो 20,000 की चीज आपको खरीदनी थी, वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30,000 या 35,000 तक की वो पड़ जाए,
0: हाँ बिल्कुल
1: तो इसीलिए आप किस्तों में खरीदने का जो एक कहते हैं ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथ ही लिखते हैं कि किस्तों में खरीदारी अच्छी है, क्योंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किस्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं, तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किस्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की उसमें महंगी पड़ जाती है, और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किस्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं, और पैसा भी डूब
0: बिल्कुल
1: जाता है।
0: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए इन्होंने तो हमें बताया कि किस्तों के फायदे क्या हैं, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किस्तों से खरीदारी के कई नुकसान हैं, जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी
1: जी
0: हो सकती है, जीएसटी कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किस्त तो हमें जानी ही है, फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे ईएमआई चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार कि किस्त
1: जी
0: बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
1: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किस्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किस्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
0: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप ईएमआई के पक्ष में हैं तो 10% का नियम अपनाना चाहिए, वो क्या है कि आप सभी ईएमआई का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा
0: चलिए
1: दें?
0: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं गर्मी बहुत है,
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है, आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं, और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है, हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
0: जी
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते
0: तो
1: हैं।
0: उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर

0: आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना
1: जी
0: पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई हैं कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
1: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें। सफेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है, जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आती है पसीने में, वहाँ रगड़ कर धो लेना है, टमाटर है। इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं, उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबालकर, नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको
1: जी
0: पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप अब नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
1: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
0: चलिए

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई से कार्यक्रम सुन रहे थे। संध्या के 4 बजने को हैं। आकाशवाणी रामपुर से मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर हमारी दूसरी सभा अब आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग 1.5 दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है जी। क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत की आजादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म, वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी जी, मेरे बचपन के तरफ, जहां पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर, दूसरा था इंजीनियर, की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का जी। तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया, बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊँ। हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा।
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी। इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का।
0: हाँ।
1: लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता है, ये बात होती है।
0: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
1: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी। एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की, उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया, एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स SSB देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, SSB के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 days ऑफ SSB। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
0: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
1: जी बिल्कुल।
0: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित।

0: क्या दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया, क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी। और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है, बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है। क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विद पोस्टिंग्स, आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है, तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है।

0: दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें.
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए.
0: जी
1: लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं.
1: जी
0: एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए, आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो
1: बिल्कुल
0: उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इम्पॉर्टेंस होता है. स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा, बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज़ अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है.
0: जी
1: तो इस नज़रिए से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पाठ खुद क्या सीखा है? मतलब आपकी नज़र में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फख्र से सब आपका नाम लेते हैं?
0: जी लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को, अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए, तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल. और तीसरी चीज है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी.
1: दैट्स अमेजिंग. इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहाँ भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं, बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं. आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं. तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
0: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है. फॉर दैट मैटर, इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है
1: जी
0: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अगर मैं आपको मेरे ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है. तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है, तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है. सो एज अ वुमेन, अगर आप मुझे पूछे, तो बहुत जरूरी है कि आप, आपके मेल

0: काउंटरपार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
1: जी बेहतरीन। मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक डे परेड, हाँ जी,
1: उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिजेंट बना था। और मैं उस कंटिजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने। सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सकें। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज़ पे जाना चाहूँगी जहाँ मैंने बोला कि आप सपना छोड़

0: सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है. क्योंकि एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का. लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी. तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी. तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है.
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया. बहुत ही सुंदर. अच्छा प्रतीक्षा जी एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल, और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है. एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल, और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का. पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया.
1: क्या बात है.
0: सो उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है, तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं.
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती हैं?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है. सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है.
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ. और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें. और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है. और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है. और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे. और जब मेरी पहली जंप थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है. तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है. बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है
1: जी,
0: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है. लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था. तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताऊ डर लगा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूँ.
1: ओह माय गॉड.
0: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे. क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो, आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो.
1: इनर स्ट्रेंथ.
0: वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है. दैट इज एक्चुअल फ्रीडम. एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो.
1: Awesome. कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा, जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है. आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव. और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
0: जी.
1: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
0: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता. ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
1: जी.
0: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहां पे फेलियर्स ना हो.
1: हाँ.
0: लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप

0: गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए। ये जिंदगी है।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ, इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है। रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं, वो एक्चुअल लाइफ है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में, जो हर किसी को, जो भी आपके संपर्क में आता है, उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है। अच्छा, आपकी इस, जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो
1: जी,
0: ऐसे तो काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजन्स हैं। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए, गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो किसी भी रीज़न के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे नज़रिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
1: जी।
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है। केसरी फिल्म का गाना, जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफ कैट और सी डी एस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूँगी फौज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया, तो ये एक दिमाग में ज़रूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना ट्वेल्थ पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हैं, एफकैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफकैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्ज़ाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहाँ मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते

0: जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही थी,
0: जी
1: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी
1: कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

0: संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशंस उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकते।

0: फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज़ के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज़, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे,
1: जी
0: और किसी भी चीज़ के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज़ से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूँगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का, धन्यवाद, जय हिंद।
0: जय हिंद।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। दूसरी सभा में सुनिए फिल्म संगीत का कम्पेट प्रोग्राम आज शाम

जी हाँ, शाम होने लगी है और हम और आप एक बार फिर से पास आ गए हैं। और पता नहीं क्यों हर ढलती शाम हमें आपके करीब ले आती है। दिन तो किसी तरह से अपने आप को व्यस्त रखने में गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही आसमान हल्का नारंगी होता है ना, बस ख्याल आपका आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये हवा बस हमें और आपको मिलाना चाहती है। हर ठंडी हवा का झोंका हमें आपसे रूबरू कराता है। आपने कभी गौर किया है कि शाम में दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है और दिल थोड़ा ज़्यादा महसूस करने लगता है? शाम अक्सर इसलिए पसंद की जाती है क्योंकि इसमें हमें किसी एक ख़ास व्यक्ति की कमी महसूस होती है। मैं सोचती हूँ कि अगर वो व्यक्ति पास हो तो कुछ खास ज़रूर होता है, क्योंकि कुछ लोग बातों से नहीं सिर्फ अपने साथ होने से पास रह जाते हैं, और आप और हम उसी का ही तो एक ज़रिया हैं। मोहब्बत शायद यही होती है जब शाम खूबसूरत सूरज की वजह से नहीं किसी एक व्यक्ति की वजह से होती है।

जी हाँ, आप मिले और फिर जीने को क्या ही चाहिए। हम तो बस आपसे हमेशा यही कहेंगे कि आप हमारे पास हमेशा के लिए रह जाइए। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आने से आपकी दुनिया थोड़ी सी खूबसूरत हो गई है, तो आज ही उन्हें ये ज़रूर महसूस कराइए कि वो आपके लिए कितने ख़ास हैं। फिलहाल अब आज शाम से आकांक्षा को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपनों का भी ख्याल रखेंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम स्टूडियो में लेकर हाजिर हैं मोनिका कुमार और हर्ष।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपका रेडियो साथी हर्ष,
1: और मैं हूं आपकी रेडियो साथी मोनिका कुमार।
0: तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और उमंग और उत्साह के साथ सुन रहे होंगे अपने दैनिक कार्यक्रम युववाणी को।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज दिन है गुरुवार, और आज के दिन हमारा स्पेशल सेगमेंट रहता है फेसबुक लाइव, जिसमें आप अपने विचार हमसे साझा करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा फेसबुक लाइव का विषय है मार्क्स वर्सेस टैलेंट, आज के दौर में सफलता के लिए क्या जरूरी है। तो इस विषय पर आप अपने कमेंट्स हमें भेजें और हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे अपने सेगमेंट में।
0: तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट, जिसमें हम पूछते हैं आपसे सवाल। और आज का हमारा सवाल है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है?
1: दोस्तों, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना है आकाशवाणी रामपुर की फेसबुक पेज पर, और आज की अपलोडेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में देना होगा इस सवाल का सही जवाब। सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम हम अनाउंस करेंगे कार्यक्रम के एंड में।
0: मोनिका, भारतीय सिनेमा में कई महान कलाकार निर्देशकों का जन्म हुआ, जिन्होंने फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना बना दिया। ऐसे ही एक महान निर्देशक मृणाल सेन जी थे, जिनकी आज जयंती है।
1: बिल्कुल हर्ष, मृणाल सेन भारतीय समानांतर सिनेमा के सबसे बड़े स्तंभ में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए समाज की सच्चाई, राजनीति, गरीबी, संघर्ष और आम इंसान की जिंदगी को बड़े ही वास्तविक अंदाज में दिखाया।
0: बिल्कुल, निर्देशक मृणाल सेन जी का जन्म 14 मई यानी आज ही के दिन 1923 को वर्तमान बांग्लादेश के फरीदपुर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें साहित्य और कला में गहरी रुचि थी। बाद में वे कलकत्ता आ गए और वहीं से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हो गई।
1: उनकी पहली फिल्म रात भोर थी, लेकिन असली पहचान उन्हें 1977 में मिली। भुवन शोम से मिली इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में कई क्रांति ला दी।
0: बिल्कुल, और यही नहीं, यह फिल्म भारतीय न्यू वेव सिनेमा की शुरुआत भी मानी गई।
1: दोस्तों, उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में एक दिन प्रतिदिन, खंडर, मृग गया और कलकत्ता 71 जैसी फिल्में शामिल हैं।
0: दोस्तों, आपको बता दें कि इन फिल्मों ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब सराहना पाई।
1: बिल्कुल हर्ष, और यही नहीं, उन्हें उनके योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पद्म भूषण और भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला।
0: बिल्कुल दोस्तों, उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर सोच मजबूत हो तो कला के माध्यम से भी समाज में बदलाव लाया जा सकता है।
1: दोस्तों, अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: फंसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ब्रेक के बाद दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर। अब बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
5: कुछ ख्वाबों की बात,
6: कुछ अपनों का साथ,
5: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
6: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
5: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
6: वाकई कुछ खास है आज,
5: कुछ खास है आज।

0: दोस्तों कुछ खास है आज में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास के उस वीर योद्धा की जिनकी बहादुरी, राष्ट्रभक्ति और त्याग आज भी हर भारतीय के दिल में सम्मान जगाते हैं। महान मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज जी की।
1: दोस्तों संभाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे बल्कि साहस, स्वाभिमान और धर्म रक्षा के प्रतीक थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हुआ था। वह महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी साईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही संभाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और निडर थे।
0: दोस्तों कहा जाता है कि छोटी उम्र में ही उन्होंने संस्कृत, मराठी, हिंदी और फारसी जैसी कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे केवल युद्ध कला में ही नहीं बल्कि साहित्य और राजनीति में भी माहिर थे। उन्होंने बुधभूषण नामक ग्रंथ की रचना भी की थी।
1: वाह, यानी शंभाजी महाराज एक योद्धा होने के साथ साथ विद्वान लेखक भी थे, यही बात उन्हें खास बनाती है। दोस्तों जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ तब मराठा साम्राज्य को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी शंभाजी महाराज के कंधों पर आई। उन्होंने मात्र 23 वर्ष में सिंहासन संभाला और अपने शौर्य से मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा।
0: बिल्कुल, उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, लेकिन संभाजी महाराज ने कभी भी अपने स्वाभिमान और धर्म के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े और दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी।
1: दोस्तों इतिहास गवाह है कि संभाजी महाराज ने लगभग 9 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया और मुगलों को कभी चैन से बैठने नहीं दिया। उनकी वीरता से औरंगजेब भी भयभीत रहता था।
0: लेकिन दोस्तों इतिहास का एक दुखद अध्याय भी है। वर्ष 1689 संभाजी महाराज के विश्वासघात के कारण मुगलों ने उन्हें बंदी बना दिया। उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, परंतु संभाजी महाराज ने अपने धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उन्होंने हर पीड़ा सह ली लेकिन झुके नहीं। अंततः उन्होंने वीरगति प्राप्त की लेकिन अपनी बहादुरी और राष्ट्रभक्ति की अमर मिसाल छोड़ गए।
1: दोस्तों आज उनकी जयंती पर पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें याद किया जाता है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में विभिन्न कार्यक्रम, रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांत और सम्मान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
0: दोस्तों ये था हमारा सेगमेंट कुछ खास है आज।
2: कुछ ख्वाबों की बात,
3: कुछ अपनों का साथ,
2: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
3: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
2: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
3: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंग की घड़ी की तुंग हार दो।

जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

0: दोस्तों अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स की।
1: दोस्तों यूथ एंड स्पोर्ट्स में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे खेल की जो ताकत, संतुलन, साहस और दिमाग चारों चीजों का बेहतरीन मेल है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है नॉर्डिक कंबाइंड गेम।
2: दोस्तों जब भी विंटर स्पोर्ट्स की बात होती है तो लोग स्कीइंग, आइस हॉकी, स्नोबोर्डिंग का नाम लेते हैं, लेकिन नॉर्डिक कंबाइंड एक ऐसा खेल है जो दो अलग अलग खेलों को जोड़कर बनाया गया है।
1: बिल्कुल हर्ष, इस खेल में खिलाड़ियों को दो कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पहले की स्कीइंग जंपिंग, दूसरी क्रॉस कंट्री स्कीइंग।
2: यानी पहले खिलाड़ी ऊंची पहाड़ी से लंबी छलांग लगाते हैं और फिर कई किलोमीटर तक बर्फ पर स्कीइंग करते हुए दौड़ लगाते हैं। सोचिए कितनी जबरदस्त फिटनेस और आत्मविश्वास चाहिए होता होगा।
1: दोस्तों इस खेल की शुरुआत 19वीं सदी में यूरोप के नॉर्डिक देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में हुई थी। इन्हीं देशों के नाम पर इसका नाम नॉर्डिक कंबाइंड रखा गया।
2: और दोस्तों खास बात यह है कि यह खेल शुरुआती विंटर ओलंपिक से ही जुड़ा हुआ है। साल 1924 में जब पहला विंटर ओलंपिक हुआ तब से यह खेल उसका हिस्सा बना हुआ है।
1: दोस्तों सबसे पहले खिलाड़ी स्कीइंग जंपिंग करते हैं। इसमें उन्हें ऊंची रैंप से छलांग लगानी होती है। उनकी दूरी और स्टाइल के आधार पर अंक दिए जाते हैं।
2: इसके बाद शुरू होती है क्रॉस कंट्री स्की रेस। यहाँ खिलाड़ियों को लंबी दूरी तय करनी होती है। स्की जंपिंग में जिसने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए होते हैं उसे रेस में पहले शुरुआत करने का फायदा मिलता है
1: और जो खिलाड़ी सबसे पहले फिनिश लाइन पार करता है वही विजेता बनता है।
2: दोस्तों नॉर्डिक कंबाइंड सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, इसमें खिलाड़ी को मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होना पड़ता है।
1: सही कहा हर्ष, स्कीइंग जंपिंग में डर पर काबू पाना पड़ता है जबकि क्रॉस कंट्री स्कीइंग में धैर्य और स्टैमिना की जरूरत होती है।
2: यानी एक खेल में उड़ान भरने का साहस भी होना चाहिए और लंबी दौड़ जीतने की क्षमता भी।
1: दोस्तों हर खेल हमें कुछ न कुछ सिखाता है।

0: ता है और नॉर्डिंग कंबाइन हमें सिखाता है डर का सामना करना, लगातार आगे बढ़ते रहना।
1: जी हाँ दोस्तों, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, कभी ऊंची छलांग लगानी पड़ती है और कभी लंबी दौड़ में धैर्य बनाए रखना पड़ता है।
0: अगर आत्मविश्वास और मेहनत साथ हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं लगती। दोस्तों अभी सुन रहे थे सेगमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स, आइए आपको सुनवाते एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों अब सेगमेंट शुरू करते हैं अपना आज का स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स यूथ एंड स्पोर्ट्स
1: के एंडिंग कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं फेसबुक लाइव जिसमें हम पढ़ते हैं आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स। पहली कमेंट्स हमें भेजी है अक्ष सक्सेना ने और वह कहते हैं आज के इस नए समय में सफलता केवल परीक्षा के मार्क्स पर निर्भर नहीं करती। मार्क्स आपको नौकरी का पहला अवसर या अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिला सकते हैं लेकिन ये आपकी असली क्षमता तय नहीं करते। दूसरी ओर टैलेंट यानी आपका हुनर आपको भीड़ से अलग पहचान देता है। अगर आपके पास कोई विशेष कौशल या रचनात्मक सोच है तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। डिग्री आपको एक शुरुआत जरूर देती है पर लंबी रेस में आपका टैलेंट ही काम आता है। इसने सिर्फ नंबरों के पीछे भागने के बजाय हुनर निखारना ज्यादा जरूरी है।
0: दोस्तों इसी क्रम में अगला कमेंट हमें भेजा है बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीषा यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान। ये लिखते हैं आज का विशेष विषय मार्क्स वर्सेस टैलेंट। बाकी बहुत ही अच्छा और प्रासंगिक है मेरी नजर में। जहां मार्क्स सफलता के दरवाजे खोलने में मदद करते हैं वहीं टैलेंट और सीखने का जज्बा आपको उस सफलता के शिखर पर बनाए रखता है। वर्तमान समय में केवल किताबी ज्ञान की वजह व्यवहारिक हुनर और निरंतर नए सीखने की क्षमता ही सबसे बड़ी जीत है।
1: इसी क्रम में अगली कमेंट हमें भेजी है शहर रामपुर से नमिता अग्रवाल जी ने। कहती है कि आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। अंकों और प्रतिभा की तुलना में दोनों का अपना अपना महत्व है। अंक हमारी पढ़ाई और मेहनत का एक मापदंड देते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हमने किसी विषय को कितना समझा है। वही प्रतिभा यानी टैलेंट वह विषय विशेष क्षमता है जो हर व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। कोई संगीत में निपुण है और कोई खेल में तो कोई कला में। कई बार अच्छे अंक सफलता की राह आसान बनाते हैं लेकिन केवल अंक ही जीवन की सफलता तय नहीं करते। इतिहास गवाह है कि अनेक महान व्यक्तियों ने अपने प्रतिभा और जुनून के बल पर दुनिया में पहचान बनाई है। इसलिए अंक को महत्व देना चाहिए लेकिन अपनी प्रतिभा को पहचानना और उसे निखारना भी उतना ही आवश्यक है क्योंकि असली सफलता तब मिलती है जब मेहनत, ज्ञान और प्रतिभा तीनों साथ चलते हैं।
0: दोस्तों अगला कमेंट हमें भेजा है दौलत बाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन और समीर। ये लिखते हैं कार्यक्रम प्रस्तुत हर्ष और मोनिका जी को मेरा सादर आदाब। युवाणी केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के सपने, उनकी ऊर्जा और उनकी आवाज़ का एक सशक्त मंच है। हर्ष जी और मोनिका जी की शानदार प्रस्तुति इस कार्यक्रम में नए रंग भर देती है। चाहे वो फिल्म संगीत की सुरीली दुनिया, मार्क्स वर्सेस जैसे टैलेंट चर्चा, युवाणी हर पीढ़ी को जोड़ने के कुछ नया सिखाती है।
1: इसी क्रम में अगली कमेंट हमें भेजी है प्रवीण चौहान ने। वे कहते हैं कि सफलता के लिए टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। अच्छे मार्क्स करियर में आगे बढ़ने के लिए जरूर सहायक होते हैं लेकिन सफलता टैलेंट से ही सुनिश्चित होती है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश लेना हो या सरकारी नौकरी करना हो, प्रतियोगी परीक्षा में कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स तो होने ही चाहिए। खेल, निजी व्यवसाय, अभिनय, आईटी सेक्टर या कोई भी क्षेत्र आपके टैलेंट पे ही काम करता है। दोस्तों कमेंट पढ़ने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चलिए सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों फेसबुक लाइव का अगला कमेंट हमें भेजा है हाजी गफ्फार खान ने गांधी समाधि रोड रामपुर से। रजिया खान, सिमरन खान आज के डिजिटल और तेजी से बदलते दौर में सफलता का पैमाना बदल चुका है। अब सफलता केवल किसी एक चीज पर निर्भर नहीं बल्कि मार्क्स और टैलेंट के सही संतुलन से मिलती है। अच्छे मार्क्स आपको बेहतरीन कॉलेज में दाखिला और बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू का पहला मौका दिलाते हैं। मार्क्स आपको इंटरव्यू तक पहुँचा सकते हैं लेकिन नौकरी बचाए रखने और प्रमोशन के लिए प्रैक्टिकल टैलेंट जरूरी है। आज के समय में केवल मार्क्स या केवल टैलेंट काफी नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है न्यू एज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग। मार्क्स आपके लिए

0: ये गेट खोलते हैं, लेकिन उस मैदान में लंबी रेस जीतने के लिए टैलेंट और स्किल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।
1: इसी क्रम में अगली कमेंट हमें भेजी है चौधरी राजवीर सिंह जी ने। वे कहते हैं कि मार्क्स और टैलेंट ये दो अलग चीज हैं। मार्क्स टैलेंट की कोई बुनियाद नहीं है, मार्क्स अलग अहमियत रखते हैं, लेकिन एक टैलेंटेड व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में। इसलिए हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान जिंदगी भर सीखता रहता है। मार्क्स ज़्यादा आने टैलेंटेड व्यक्ति की पहचान नहीं है।
0: दोस्तों अगला कमेंट हमें भेजा है परवीन चौहान जी ने। ये लिखते हैं, सफलता के लिए टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे मार्क्स करियर में आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी सहायक हो सकते हैं, लेकिन सफलता टैलेंट से ही सुनिश्चित होती है। देश की प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश लेना हो या सरकारी नौकरी करना हो, प्रतियोगिता परीक्षा में कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हो तो होना ही चाहिए, लेकिन निजी व्यवसाय, अभिनय, IT सेक्टर या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें टैलेंट ही काम आता है।
1: अगली कमेंट हमें भेजी है मोहम्मद दानिश सिद्दीकी जी ने। वे कहते हैं, युववाणी पेश करने वालों को प्यार भरा आदाब। आज के दौर में हम सबसे पहले अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें किसी भी कार्य को घबराकर नहीं करना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। आप बराबर प्रयास करते रहेंगे, एक दिन आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, लेकिन ईमानदारी के साथ, अपने परिवार के साथ और समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार जरूर बनाए रखें, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले दुआ का होना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी चांद तारों तक की तरह चमक जाती है।
0: दोस्तों अगला कमेंट हमें भेजा है लाल मोहम्मद अंसारी जी ने। ये लिखते हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाई के समय मेहनत करते हैं तो अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, जिसके चलते आने वाला समय हमारे लिए बेहतर हो सकता है, जो हमारे करियर के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी जी।
1: दोस्तों कमेंट का सिलसिला जारी रहेगा, चलिए सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों अगली कमेंट हमें भेजिए भाई रफत साहब ने और नगमा राज मंसूरी जी ने, कहते हैं कि दोस्तों ये बात सही है कि सफलता उसी इंसान को मिलती है जो जमकर मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत रंग लाती है। चाहे वो कोई भी काम करें, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम को करने के लिए मेहनत जरूरी है। चाहे काम मालिक बनकर किया जाए या कैसे भी किया जाए, काम अच्छे काम करने पर हमें अवार्ड और पुरस्कार भी मिलता है। बहुत से लोग तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाएगी।
1: दोस्तों तो ये था हमारा आज का सेगमेंट फेसबुक लाइव, और अब जान लेते हैं आपसे स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल और उसका सही जवाब। तो हर्ष, हमने स्टार्टिंग में कौन सा सवाल पूछा था अपने श्रोता साथियों से?
0: तो दोस्तों हमने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है, और इसका सही जवाब है समाज कल्याण विभाग।
1: और सही जवाब देने वाले श्रोता साथी हैं आप सभी जॉन डिकेस्ट्रो, नंद कुमार ठाकुर, आकाश रस्तोगी, जगदीश धाकड़, धर्मेंद्र छिपा, मोहम्मद सिद्दीकी, सुदर्शन शाह, लाल बाबू दीवाना, मोहम्मद सईद अब्बासी, मोहम्मद रफीक पवार, हेमंत भाई रफत साहब, दिनेश वर्मा, नानक चौधरी राजवीर सिंह, नानक खन्ना, चंचल खन्ना, हीरामणि, ताज अंसारी, नवीन हसन अब्बासी, मसरूर हसन, शेख अलाबख्श, दिग्दर्शन गोड़े, भेरूलाल वक्तारिया, रवि कुमार राहुल, देवशंकर तामूरिया, अजन वंदना सिंह, गजानन येले दरियापुर, गंगा सिंह रावत, संजय ढींगिया, परवीन सोनी, विनोद मूड़े, सुनीत पाठक, लाल गिरी गोस्वामी, मिसवा शमशी, इरशाद अहमद अंसारी, बलवंत कुमार, अल्ताफ हुजारे, राष्ट्रपाल गजभिये, उत्तम कुमार भगत, सिद्धार्थ गोंडाने, तुलसीदास, सुरेश जायसवाल, सुरेश गगनेजा, राधेश्याम पांडे, महेंद्र मोदी, राजवीर सिंह यादव, मोहम्मद आमिर अंसारी, दीप वर्मा, शाहजी भोड़के, जाकिर मसरूर, दिलीप भावर, विठल सुरेशे, दुर्गा राम साहू, मुकेश कश्यप, गुरमीत सिंह मीत, गुलाम शेख, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, शकील अहमद, दुर्गा राम, उत्तम सिंह भगत, राम कुमार रेवा, फागू राम यादव, रवि अरविंद कुमार, वी कमल, राजू मिगलानी, परवीन चौहान, आमिर हुसैन, एम खिलेशी, लाल मोहम्मद अंसारी, अजीत कसाना, धीरज भाई रबारी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, हाजी गफ्फार खां, अभिजीत निसार सलमानी, शाहरुनूर अंसारी, मोहम्मद यासीन अंजन, रफत साहब, भाई रफत साहब, भगवान भागवत चौबे, लाडला जी।

0: तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर। पिन संख्या है 244901। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876 और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए उमंग नए विषय और नए आवाज के साथ। तब तक के लिए आपके रेडियो साथी हर्ष
1: और मोनिका कुमार को कार्यक्रम ही संपन्न करने की दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे थे हर्ष और मोनिका कुमार। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं

FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत हैं जरूरी संदेश।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: AIR at 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब सुनवाते हैं आपको चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में सुनिए दोस्ताना इस फिल्म का गीत। आवाज होगी शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी की। शब्द लिखे हैं कुमार ने और संगीत है विशाल शेखर का।

दोस्ताना इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं कल हो ना हो, इस फिल्म का गीत शंकर महादेवन और रवि की आवाज में। शब्द लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

20 मिनट हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। कार्यक्रम स्टूडियो में लेकर हाजिर हैं प्रवीण कुमार और पंकज बाबू सक्सेना।

0: कार्यक्रम सुनन बारे सभी किसान साथियों को आपके भैया प्रवीण
1: और भैया पंकज की
0: राम राम, राम। पंकज भैया।
1: हाँ भैया।
0: और सुनाओ, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं?
1: हाँ भैया, सब बढ़िया है भैया, और हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान साथी भी बढ़िया होंगे।
0: और देखो भैया, जब हमारे किसान साथी खूब अच्छी तरीके से होंगे तभी अपनी खेती बाड़ी बढ़िया तरीके से कर सकेंगे।
1: जी भैया।
0: और खेती बाड़ी में आपने देखी होगी ना
1: जी,
0: विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे किसान भाइयों के सामने लगी रहती हैं।
1: जी भैया।
0: और उनमें से एक समस्या है खरपतवार की।
1: जी भैया,
0: और
1: जो समस्या भैया बहुत बड़ी है।
0: और समय रहते इनकी रोकथाम करना बहुत ही जरूरी होती है। और जैसे आप देख रहे हो ना, इस समय खेत खाली हैं काफ़ी।
1: जी हाँ, खाद खाली
0: तो
1: है।
0: इस समय भी कुछ काम करे जा सकते हैं जो कि खरपतवारों की रोकथाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
1: हाँ भैया,
0: देखो फसलों में जो खरपतवार होते हैं
1: जी,
0: वे हमारी फसलों को बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं, और जिसकी वजह से वे जो हमारे पोषक तत्व थे ना
1: जी भैया,
0: उनसे उनकी प्रतिस्पर्धा करते हैं और वे जो हैं हमारी फसलों के मुकाबले ज़्यादा उर्वरक ग्रहण कर लेते हैं।
1: जी भैया।
0: और इसके साथ साथ जो हवा है, प्रकाश है, उन सबको जो है ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करता है, जबकि हमारी फसल जो है इतनी ग्रहण ना कर पाती है। इसकी वजह से हमारी फसल जो है वो कमज़ोर रह जाती है।
1: जी भैया। और भैया ना, अभी फसल को तेज़ी से बढ़कर ना जो फसल को ढक लेते हैं, और जिससे पौधों को ना पर्याप्त धूप मिल पाती है और ना उनको पोषक तत्व मिल पाते हैं।
0: तो इसलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि इस समय आप देख रहे हो कि गर्मी की जुताई अगर हमारे किसान साथी कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो है खरपतवारों की समस्या कमी जाती है। लेकिन इस बार आप देख रहे हो कि एक दो दिन ना हो तो वाला बारिश पड़ जाती है।
1: आंधी आ रही है भैया।
0: तो इससे होता है कि जो ताप, हम कहते हैं ना जैसे
1: जी,
0: गर्मी
1: जी,
0: जो हमारे खेतन पर पड़ती है उससे जो खरपतवारों के बीज होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरे जो फसल होती है हम जोत देते हैं, खरपतवार जो होते हैं ऊपर सूख जाते हैं, तो इससे खरपतवार कम होते हैं। लेकिन इस बार ऐसे ना ही पा रहे हुए, लेकिन अभी समय काफ़ी है और जून में बारिश शुरू होती है, लेकिन बाद से पहले ही समय समय पर बारिश हो रही है। लेकिन अगले आने वाले समय में उम्मीद है कि धूप जब तेज निकलेगी तो ये समस्या काफ़ी कम ही जाएगी लेकिन इसके साथ साथ देखो भैया, हमें जो है खरपतवारों को रोकना बहुत ही जरूरी है। जाके कुछ उपाय हमें ऐसे हैं जिनको कारण से हम जो है खरपतवारों की रोकथाम कर सकते हैं।
1: हाँ, बात करें भैया यांत्रिक और भौतिक तरीका में ना, तो प्रवीण भैया उसे हम हाथ से हमें निराई कर देना चाहिए, खुरपी या खुरपी सहायता से चलाकर सबसे प्रचलित सुरक्षित तरीका जय है। और इसके बाद फसल बोने के 3-4 सप्ताह बाद इसको प्रयोग कर देना चाहिए
0: भैया। इसके अलावा हमारे किसान भैया रासायनिक दवाओं का प्रयोग तो करते ही हैं। रासायनिक दवाओं में चाहे हम धान की फसल की बात करें, सोयाबीन की बात करें, मक्का की बात करें, तो इन सभी के लिए खरपतवार नाशी आई गए हैं, उनके रोकथाम करती हैं। इसके अलावा हम किसान भाइयों से ये भी कहते हैं कि जब खरपतवार नाशी लगावें
1: जी
0: तो भैया संतुलित की गई मात्रा को ही प्रयोग करें, ज़्यादा मात्रा में दवा ना डालें। अगर ज़्यादा मात्रा में दवा डालते हैं तो वो अगली बार को और ज़्यादा डालनी पड़ती है, उसका दुष्प्रभाव भी हमारी फसलों पर पड़ता है
1: जी।
0: तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: और एक चीज़ और है प्रवीण भैया, अगर हम बात करें सांस्कृतिक तरीका में ना, तो सबसे पहले हम फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए और सही समय पर बुवाई करनी चाहिए, है ना।
0: हाँ।
1: और संकर और उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं उनको चयन करना चाहिए, जिससे होगा खरपतवार जो है वे कम होंगे।
0: इसके साथ साथ तो जब हम बीज ले रहे हैं
1: जी,
0: तब हम उसमें भी देख लें कि ऐसा तो नहीं है कि बीज में खरपतवार हो। तो खरपतवारों के बीज अगर होते हैं तो भी हमारे जो है फसल में खरपतवार हो जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ कई विधियां और भी हैं, जैसे हम मिट्टी में नमी बनाए रखने के साथ धूप न मिलने के कारण खरपतवारों की रोकथाम प्लास्टिक या प्राकृतिक अवशेषों से भी उसकी रोकथाम कर सकते हैं
1: जी।
0: ये तरीका है। इसके अलावा भैया कुछ मोटी मोटी बातें हैं, अगर हम उनको ध्यान रखें खरपतवारों को फूल आने से पहले नष्ट कर दें, अंदर बीज छोड़ देते हैं
1: जी, और खेत में बार बार गहरी जुताई ना करें, इससे खरपतवार के जो बीज होते हैं वे ऊपर आ जाते हैं।
0: और खरपतवार रसायनों का प्रयोग करने के बाद कम से कम 7-14 दिन तक आराम से धैर्य बनाए रखें।

0: और उसके बाद ही देखें कि खरपतवार रुके हैं ना, क्योंकि
1: हाँ,
0: दवा जो है वो धीरे धीरे
1: असर करती है भैया। हाँ
0: तो इस बात का हमारे किसान साथी ध्यान रखें, तो इस तरीके से खरपतवारों की रोकथाम वो कर सकते हैं।
1: जी
0: और भैया देखो, देख रहे हो कि आज दिन का है
1: जी भैया।
0: भैया देखो आज दिन है
1: हाँ
0: गुरुवार को।
1: गुरुवार।
0: और आज के दिन हम अपने किसान साथी इनको सुनवाते हैं कृषि पत्रिका खेत
1: खेत
0: खलियान
1: खलियान
0: कार्यक्रम। तो अब
1: जी
0: शुरू करते हैं कृषि पत्रिका खेत खलियान।

0: भैया देखो, कृषि पत्रिका खेत खलियान में हम सबसे पहले किसान भाइयों को सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता,
1: जी
0: जिसको विषय है वर्मी कंपोस्ट नए जमाने की खाद। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रणबीर सिंह, और आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया डॉक्टर विनय वर्मा। और जा बातचीत हम आपको पुनः सुनवा रहे हैं, तो आओ सुनते हैं जा जानकारी।
2: अध्यक्ष साहब, स्वागत है आप कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अध्यक्ष साहब, वर्मी कंपोस्ट सभी किसान परिचित हो चुके हैं, लेकिन अभी इसका पूरी तरह से उपयोग हमारे किसान नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है और इससे क्या फायदे हैं?
3: देखिए, हरित क्रांति के बाद हमारे देश में किसानों ने रासायनिक खादों का प्रयोग अंधाधुंध तरीके से करना शुरू कर दिया था।
2: जी
3: उसमें अधिकांश रूप से किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का ही प्रयोग करते थे, लेकिन पौधों को पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसमें से 14-15 पोषक तत्वों की आवश्यकता है। किसान केवल 3 ही पोषक तत्व लगाता है, जबकि प्रत्येक पोषक तत्व का उतना ही महत्व है जितना के सूक्ष्म वाले पोषक तत्वों का है। इस वजह से किसान भाइयों को जो उनके पशुशाला पे, उनके खेतों में जो फसलों के अवशेष हैं, जो भी जैविक कचरा उनके पास स्वयं फार्म पर पैदा होता है, उसका उनको जैविक खाद बनाना अत्यंत आवश्यक है।
2: जी
3: क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो हजारों वर्षों में जो जमीन की उर्वरा थी, वो धीरे धीरे बार बार फसल लेने से किसान मात्र जो है 3 ही खादों का प्रयोग कर रहा है, रासायनिक खादों से जो देता है
2: जी
3: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश।
2: जी
3: धीरे धीरे आप देख रहे होंगे पशुओं की संख्या भी बहुत तेजी से हमारी कम हो रही है। तो यहां पर किसान भाइयों को देखना होगा कि हमारे पास ऐसा हम लोग जैविक खाद बनाएं जो कम अवधि में बन जाए, उसकी पोषक तत्व की वैल्यू है वो दूसरे जो पारंपरिक तरीके से जो जैविक खाद बनाते थे उससे अधिक हो। तो ऐसा ही एक हमारा जो तरीका है जो जैविक खाद बनाने का, वो वर्मी कंपोस्ट है। इसमें एक तो मात्र 60 दिन के अंदर जैविक कचरे से जैविक खाद बन जाता है, और आप परंपरागत तरीके से खाद बनाएंगे जैविक कचरे से, उसमें 8 से 10 महीने लगते हैं। आप किसी भी गांव में जाएंगे, आसपास देखेंगे कि जैविक कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो वो एक परंपरागत तरीके से खाद बनाने का तरीका है। उसके बहुत ही बड़े लेवल पर उसका किसानों को भी नुकसान है और वातावरण की सुरक्षा के लिए भी नुकसान है। उससे कई तरह की बीमारियां भी वहां के पशुओं में और वहां की मनुष्यों में फैलती हैं, और इसका सबसे अच्छा निराकरण है कि हमको जो भी जैविक कचरा है उसका तुरंत हम लोग जैविक केंचुआ खाद बनाएं।
2: जैसा साहब, पहले गोबर की खाद बनती थी, आज वर्मी कंपोस्ट बनाने की बात चल रही है। दोनों में क्या अंतर है? क्या वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है या सही तरीके से उसका उपयोग होता है, जिस वजह से गोबर की खाद की अपेक्षा ये ज्यादा फायदेमंद है?
3: देखिए, जो वर्मी कंपोस्ट है, इसको बनाने के लिए वो जो मुख्य है केंचुआ की प्रजाति, हमारे संस्थान ने जयगोपाल केंचुआ प्रजाति का लंबे समय तक शोध करने के बाद में यह भारतीय केंचुआ की प्रजाति विकसित की है। तो सबसे पहले तो आज देखते हैं आज के समय में कितनी तेजी से वातावरण का तापक्रम बढ़ रहा है। ये जो केंचुआ हमने विकसित किया, इसकी विशेषता है कि अधिक से अधिक तापक्रम पर ये सर्वाइव करता है, और वहां पर जैविक कचरे से बहुत अच्छा

0: खाद बनाता है। बुंदेलखंड में इसका बहुत ही प्रचार प्रसार है और रोहेलखंड में भी हमारी जो तकनीकी है, जो हमारे संस्थान ने जयगोपाल वर्मी कल्चर तकनीक बनाई है, उसका प्रचार प्रसार हुआ है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है केंचुआ जैविक खाद की और परंपरागत तरीके से जो खादों का अंतर बताते हैं। एक तो देखिए, जो गोबर की खाद है उसमें नाइट्रोजन 10.5% होता है, उसमें फास्फोरस 10.5% होता है, उसमें पोटास भी 10.5% होता है, और उसमें जो है जो लाभदायक जो सूक्ष्म जीवी हैं जो हमारी भूमि के लिए जरूरत पड़ती है उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, तो वो भी उपस्थित नहीं होते हैं। जबकि वर्मी कंपोस्ट में एक तो सूक्ष्म जीवियों का जो केंचुआ है जयगोपाल जो है उसके घट में जितने भी सूक्ष्म जीवी हमारे भूमि के लिए उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जो होते हैं उसकी गट से बढ़ते हैं, वर्मी कास्ट में जाते हैं। दूसरा, इसका जो नाइट्रोजन है जो गोबर की खाद से 3 से 4 गुना ज्यादा होती है, फास्फोरस हमारी 2 से 2.5 गुना ज्यादा होती है, पोटास भी हमारी 2 से 1.5 गुना ज्यादा होती है, और अन्य जैसे हमारे पोषक तत्व हैं, कैल्शियम है, हमारा जो है मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, जस्ता है, और ये हमारा मोल्डबिडिनम है, सल्फर है, और ये जितने भी पोषक तत्व हैं वो भी हमारे उसमें अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, पौधे जो है उसको तुरंत अवशोषित कर सकते हैं
1: जी।
0: उस तरह से केंचुआ का ये खाद है, ऑर्गेनिक मैटर भी रहता है। तो इस तरह से किसान भाइयों को एक मात्र 60 दिन में बन जाता है इसकी गोबर खाद से, और इसमें ये है उसको जो है 8-10 महीने
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल लगते हैं,
1: उसमें तो समय लगता है। साहब, यदि कोई किसान इसकी शुरुआत करना चाहे कि अब हम वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू करेंगे, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना समय लगेगा, कितनी जगह होनी चाहिए, कितना गोबर होना चाहिए, और कितना गोबर के साथ ही साथ आपने बताया जो और वेस्ट मटेरियल होता है वो किस प्रकार से शुरुआत करें?
0: देखिए, मैं तो सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आज के समय में अगली पीढ़ी के लिए खाद्य समस्या की समाधान के लिए और अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए, टिकाऊ खेती के लिए, सभी को जैविक कचरे से जैविक खाद बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को इसके खाद बनाने के लिए कोई सामान खरीद के बाहर से तो लाना ही नहीं पड़ता है। हमारे देश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक किसान के यहाँ पे गोबर की उपलब्धता है, जैविक कचरे की उपलब्धता है, फसलों के अवशेष हैं, तो उनको ऐसे जगह पर हम लोगों को जैविक कचरे को एकत्रित करना चाहिए जहां पर पानी नहीं भरता हो, जो पशुशाला के पास में हो, जहां पर पानी का साधन हो, जो जहां पर जैविक कचरा ले जाने के लिए रास्ता सही हो, और जो अपने रहने के आवास से दूर हो, और इस तरह से वहां पर बायोगैस भी लगाई जा सकती है, कंपोस्ट भी बना सकते हैं हम, जो बायोगैस से भी जो सैलरी निकलती है उससे भी हम केंचुआ जैविक खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बताऊं, जब ये केंचुआ जैविक खाद पूरे खेत में छिड़कते हैं तो उस समय मिट्टी खाने वाले जो केंचुआ है जो जमीन के नीचे चले गए हैं रासायनिक खादों की वजह से, कीटनाशकों को ज्यादा छिड़काव की वजह से, उनको जब ऊपर ये सुगंध आती है, उनके अंदर सेंसर हैं, उनको पता लग जाता है ऊपर कुछ खाने के लिए चीज है, तो नीचे जो पड़े हुए ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखेंगे वर्षा के दिनों में केंचुआ नीचे से निकल के ऊपर आएगा, एक कैपिलरी सिस्टम बना लेगा और नीचे की मिट्टी को ऊपर लाएगा और ऊपर के ह्यूमस को नीचे ले जाएगा। इस तरह से उर्वरा शक्ति खेत की बढ़ती है और जैसी वर्षा होती है तो वो पूरा का पूरा खेत का पानी हर खेत में रह जाता है। हार्वेस्टिंग का भी, पानी को संचयन करने का भी केंचुआ का बहुत बड़ा महत्व है। गाय और केंचुआ को हमारी जो वर्तमान कृषि है या भविष्य की भी कृषि है, इससे अलग करना बहुत मुश्किल है। सबसे अधिक तो कह सकते हैं, डार्विन ने भी कहा है कि सबसे अधिक यदि किसी का इस खंड में सबसे बड़ा योगदान है तो वह केंचुआ का है, जिसने इतनी अच्छी भूमि बनाई है और जो इतना सारा जैविक कचरा है उसको, दो तरह के केंचुआ होते हैं, एक तो मिट्टी खाने वाला है, एक जो है जैविक कचरा खाने वाला है। तो हमारे संस्थान ने जैविक कचरा खाने वाला बनाया है और इसको हम लोगों को 10-12 वर्ष लग गए थे। तो किसान भाइयों को चाहिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एक जो संस्थान ने हमारे डिजाइन बनाई है उसका बहुत ज़रा ध्यान रखें कि मात्र एक सबसे पहले पट्ट ईंटों का फर्श बना लें और एक तरफ उसके निकास पानी का, मतलब जो ऐसा ढलान दें कि पानी एक जगह एक कोने में एकत्रित हो, और दूसरा जो है वर्मी टैंक बनाएं

0: टैंक का डिजाइन 1 फीट ऊंचा, 4 रद्दे ईंट के, ईंट जो है एक नंबर क्वालिटी की होनी चाहिए, और एक दीवार आधी ईंट का बनाएं, आधी ईंट का एक दीवार से दूसरी दीवार तक की जो चौड़ाई है वो 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 फीट होनी चाहिए, और लंबाई जो है बर्मी टैंक की आवश्यकता के अनुसार किसान भाई अपना रख सकते हैं। इस बात का किसानों को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये केंचुआ का खाद बनाना एक एरोबिक टेक्नोलॉजी है, इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो मुख्य जो कारक हैं जो खाद बनाने में, देखिए सबसे महत्व है आपने केंचुआ की प्रजाति का चयन, उसमें किसान भाइयों को भारतीय केंचुआ की प्रजाति जो अधिक तापक्रम पर जो अधिक बच्चे देती हो, जिसका खाद सर्वश्रेष्ठ हो, जो विदेशी जो हमारे केंचुआ की प्रजाति हैं आइसिना फेटिडा इडुलस यूजिनी, इनके जो केंचुआ का खाद बनता उनसे सर्वश्रेष्ठ है जयगोपाल केंचुआ की प्रजाति का है। ये हमारे संस्थान से किसान भाई पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हमारे जयत्रगढ़ बरेली में, वहाँ से ये प्राप्त कर सकते हैं, तकनीकी भी ले सकते हैं उद्यम लगाने के लिए, और वर्मी कल्चर भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, यदि कोई किसान या फिर युवा जो गांव में रहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट से बनाने के लिए क्या कोई प्रशिक्षण भी आपके यहाँ दिया जाता है, ताकि वो सही तरीके से सीख सके और किस तरीके से उसकी बेड बनानी है, कितना समय लगेगा, ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं संस्थान
0: जी
1: में?
0: जी हम लोग किसान भाइयों को, ऐसे युवाओं को जो उद्यम लगाना चाहते हैं, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जयगोपाल वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी, मतलब स्वयं अपने हाथ से केंचुआ का खाद कैसे बनाएं, स्वयं प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके वो कैसे बनाएं, इसका हम जो है प्रशिक्षण देते हैं। उनको थ्योरी की क्लासेस भी देते हैं और उनको हम लोग प्रयोग करा के ये खाद का पूरा प्रदर्शन देते हैं, कैसे बनाएंगे, किस तरह की केंचुआ की प्रजातियां होती हैं, किस तरह का बर्मी टैंक का डिजाइन बनाएं, किस तरह से उसमें पानी लगाएं, कैसे हार्वेस्ट करें, और किस तरह की जैविक कचराओं का खाद बना सकते हैं, उसकी क्या-क्या स्टेप हैं। जैसे मतलब जो है सबसे पहले जैविक कचरा एकत्र करेंगे, फिर उसके छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे, उसमें से जो भी पहले है उसमें से जैसे कचरा दूसरा है, प्लास्टिक है, कंकड़ है, पत्थर है, इन सब चीज को हम बाहर अलग कर देंगे। फिर उसके बाद उसमें हम लोग पानी जो कद कम है उसमें तो मॉइस्चर मिला का पानी का छिड़काव करेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसोर्टियम है जो जयगोपाल वर्मी कल्चर से मिलता है, जो जयगोपाल केंचुआ की गट में होता है, उसकी पेशड़ी में होता है, तो वहां से उसको बनाकर उसका छिड़काव करते हैं। तो इस तरह से इसकी पद्धति है, जाड़ों के मौसम में अलग तरीके से बने रहने का तरीका है, गर्मी के मौसम में अलग तरीका है। जैसे ही नवंबर आता है तो तापक्रम कम होना शुरू हो जाता है, उस समय क्या है बर्मी बेड का जो उपयुक्त तापक्रम है वो जैसे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम है, यदि इससे कम होता है तो केंचुआ का खाद का उत्पादन कम हो जाता है और केंचुओं की जो प्रजनन है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों को जो किसान भाई हैं या जो इस क्षेत्र में उद्यम लगाना चाहते हैं, एक एक पहलू का बताते हैं और उनको स्वयं जो है अपने हाथ से करके दिखाते हैं, जिससे क्या है कि उनका ये जो उद्यम है सफल हो और वो रोजगार ले सकें। आज इसकी आवश्यकता है, देखिए इसमें एक तो बिजली की जरूरत नहीं होती, कोई बिजली की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, खाली उस समय पानी यदि सबमर्सिबल पंप है उसको पानी नीचे से निकालने के लिए जरूरत होती है, बाकी इसमें कोई ऐसी मशीनरी नहीं होती है। जयगोपाल केंचुआ का जो खाद बनाता है उसको तो छानने की भी जरूरत नहीं होती, उसका इतना छोटे छोटे जो बर्मी कास्ट होता है, दूसरे आइसिना फैटिडा और दूसरे जो विदेशी केंचुआ है हमारा यूटिलस यूजनी, उसमें छानने की जरूरत पड़ती है, इसमें नहीं जरूरत पड़ती है। अच्छा, दूसरा है, हम लोगों ने अपने संस्थान में एक बहुत अच्छा, एक किसानों के लिए उद्यम के लिए एक बहुत अच्छा एक प्रदर्शन किया है, उसमें जैविक कचरे से केंचुआ पालन करते हैं। अब केंचुआ को जो हमारे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ने जो मुर्गी बनाई है, मुर्गियों की प्रजाति जो जैसे एक कैरी निर्भीक बनाई है, कैरी श्यामा बनाई है, कड़कनाथ है, असील है, इनको भी एक हमने 4,000 वर्ग मीटर का मॉडल बनाया है, तो उसमें जो है हम 2,000 वर्ग मीटर में उन मुर्गियों के लिए बरसीम सहजन है और चारे की फसलें उगाते हैं, और 2,000 में हम लोग करीब 4,000 मुर्गियां रखते हैं, फिर वहाँ केंचुआ पालन करते हैं, जैविक कचरे से केंचुआ पालन, केंचुआओं को मुर्गी को खिलाते हैं, मुर्गी को खिलाने से वो जैविक हमारा मांस हो जाता है मुर्गियों का, और जैविक अंडा होता है, था वो बाजार में जैसे 12 रुपये का बिक रहा है।

0: अंडा वो आपका 20-25 रुपए का बिकेगा। तो इस तरह से देखिए, कहते हैं ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कचरे से कंचन बनाओ। तो कचरे से कंचन बनाने का ये अपने यहां पर ही कोई बिजली की जरूरत नहीं हो, बस एक प्रशिक्षण की जरूरत है।
1: जी जी
0: और इसके लिए हमारा जो है जयगोपाल केंचुआ की प्रजाति लें, और हमारे जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की जो ये हमारी
1: मॉडल
0: मुर्गी की प्रजातियां हैं इनको लें, तो उसको अपने घर बैठे मतलब जो उसका अपना रोजगार मिल जाएगा, उद्यम मिल जाएगा, और हमारे समाज के लिए इतना अच्छा जैविक उत्पाद मिलेगा।
1: बहुत अच्छी और विस्तार से जानकारी दी डॉक्टर रणवीर सिंह जी ने कि किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट यानी जो जिसे हम नए जमाने की खाद कह सकते हैं, कैसे किसान इससे जुड़ सकता है, उत्पादन कर सकता है और उसका रोजगार भी आगे बढ़ा सकता है, साथ ही साथ जो नए मॉडल तैयार किए गए हैं उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद का ये सौदा है और अपने खेतों की उपज बढ़ाएं, साथ ही साथ स्वरोजगार भी स्थापित करें। बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भेंटवार्ता जाको विषय हो बर्मी कंपोस्ट नए जमाने की खाद। जब ऐसा पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रणवीर सिंह, और आपसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा जी।
3: और भैया देखो, अब कृषि पत्रिका खेत खलियान में बारी है कृषि समाचार देन की।
2: जी
3: तो
2: भैया,
3: कृषि समाचार में हम किसान भाई इनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम अपने किसान साथियों को बता दें कि खरीफ फसलों का जो समर्थन मूल्य है
2: जी
3: वो जो है सरकार ने घोषित कर दिया है। तो बाद में किसान भाई इनको बता देना है कि कौन सी फसल में कितने रुपया बढ़ गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो देखो धान की जो हमारी सामान्य प्रजातियाँ हैं बाद में पिछले वर्ष से 2369 रुपया रेट हो, लेकिन अब जो है बढ़ाया गया 2441 रुपया कर दो हुए, जो कि 72 रुपया की बिक्री वृद्धि करी गई है। धान ग्रेड ए में वो पिछली बार जो है 2389 रुपये हो और अब जो है 2461 रुपया रेट कर दो हुए, जिस जो कि 72 रुपया इस बार जमा बढ़ाए गए हैं।
2: ऐसे भैया, ज्वार हाइब्रिड की बात करें तो पिछली बार जो रेट हो वो 3699 हो और इस बार बढ़ा कर 4023 रुपये कर दो, यानी 324 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है।
3: और बाजरा की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष बाजरा को भाव 2775 रुपया प्रति क्विंटल हो, लेकिन अब जो है 2900 रुपये प्रति क्विंटल है, जहाँ 125 रुपये की वृद्धि करी गई है।
2: और बात करें भैया मक्का की, तो पिछली बार जाको रेट 2400 हो जो इस बार 2410 कर गो, यानी 10 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है।
3: और भैया अगर हम रागी की बात करें
2: जी
3: तो रागी की पिछली बार जो बाजार भाव जो क्विंटल हो ना
2: जी
3: तो वह 4846.86 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य हो, और इस बार जो है 4850 रुपया प्रति क्विंटल जो है रखोग, यानी कि 450 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करी गई है।
2: जी भैया, और बात करें भैया ना मूंग की, तो पिछली बार जो रेट हो वो 8768 रुपये हो जो इस बार 8780 रुपये कर गो, यानी बढ़ोतरी की बात करें तो 12 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है।
3: और भैया उड़द की बात करें तो पिछली बार उड़द को भाव हो 7800 रुपया प्रति क्विंटल, जो कि अब किसे बढ़ाए के 8200 रुपया प्रति क्विंटल कर दो, यानी कि हम बात करें तो 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सरकार द्वारा करी गई है।
2: जी
3: ऐसे ही अगर हम तिल की बात करें
2: जी
3: तो तिल को पिछली बार भाव हो 9840 रुपया और अब किसे 10346 रुपया कर दो, 500 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है।
2: और बात करें भैया मूंगफली की, तो जो पिछली बार रेट हो वो 7263 रुपये प्रति क्विंटल हो, इस बार 7517 कर गो, यानी बात करें बढ़ोतरी की तो 254 रुपये बढ़ाए गए।
3: भैया ऐसे ही सोयाबीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन को पिछली बार भाव हो 5328 रुपया और अब किसे 5708 रुपये प्रति क्विंटल है, 380 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है।
2: और भैया बात करें सूरजमुखी की, तो जो पिछली बार जो रेट हो वो 7721 रुपया हो, इस बार 8343 रुपया करोगे, वो बात करें बढ़ोतरी की तो 622 रुपया भैया बढ़ाए गए।
3: देखो भैया, जब तो हमारे किसान साथी इनको हमने जानकारी दे दी, लेकिन इसके साथ साथ एक और जानकारी देने की बात है कि कल से भैया हमारे किसान भाई इनको जो खाद है ना वो ऐसे ही ना मिलेगा।
2: और भैया कैसे मिला है?
3: अब मिलेगा हमारे किसान भाई इनको जो फार्मर रजिस्ट्री है
2: जी,
3: जिसे हम किसान पहचान पत्र भी कहते हैं
2: जी,
3: बाको दिखाए के ही खाद हमारे किसान साथियों को मिलेगा। तो हम तो अपने किसान साथियों से जय कहेंगे कि भैया अब जो है आप

0: जब खाद लेने जाएं तो जब बात को ध्यान रखें, आप फार्मर रजिस्ट्री यानी कि किसान पत्र जो है, पहचान पत्र लेकर जाएं, और जिस हिसाब से आपकी ज़मीन होगी बाई के हिसाब से आपको खाद मिलेगा।
1: मिले जी।
0: और हम अपने किसान साथी को यहाँ पर यही बता दें कि इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत ना है, जितनी आपकी ज़मीन है बाई के हिसाब से आपको खाद मिलेगी। क्योंकि कई लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि भैया खाद ना मिलेगा, बहुत
1: जी
0: परेशानी है और खाद ना मिलेगा तो हम अपनी फसलें कैसे बोएंगे। तो भैया देखो, खाद की हमारे जिला में कोई कमी ना है, भरपूर मात्रा में खाद है और किसान भाई जो है आराम से जो है खाद ले सकते हैं, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री दिखा के ही खाद मिलेगी। तो देखो भैया, जब तो ही कृषि समाचार में किसान भाई के लिए जानकारी।
1: जी भैया
0: और भैया देखो, अब कृषि पत्रिका खेत खलिहान में बारी है मनोरंजन की,
1: जी
0: तो मनोरंजन तो हम अपने किसान साथियों को कराएंगे, लेकिन बात से पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भैया देखो, हमारे किसान भाई ने जो लोकगीत तो सुनो,
1: जी
0: और
1: भैया।
0: अब कृषि पत्रिका खेत खलियान में एक है विशेषज्ञ की राय में जानकारी, जिसको विषय है धान की प्रजातियां और नर्सरी डालने में सावधानियां। इस विषय पे जानकारी दे रहे हैं श्री जसवीर सिंह, और जो कि ग्राम पिपलिया एला बिलासपुर के रहने वाले हैं। तो आप सुनता हूँ उनसे करी गई है बातचीत।
1: आपका परिचय?
2: मेरा नाम जसवीर सिंह है, पिपलिया एला। जी
0: अच्छा, देखिए आज हमारी आपसे बात हो
2: भैया
0: रही है, तो आप तो जानना चाहेंगे इस समय हमारे किसान भाई धान की खेती के लिए नर्सरी डालने की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन कौन सी प्रजातियां लें और किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे।
2: सबसे पहले तो आपको समय का देखना चाहिए कि इस टाइम जो हम 15 जून के आसपास धान की बुआई करेंगे वो कम से कम 135 से 140 दिन की वैरायटी होनी चाहिए। उसके लिए हम PR 131, PR 121, PR 132
0: जी
2: इन धानों का चुनाव कर सकते हैं। कुछ जो नीचे इलाके हैं उनमें भी ये कामयाब हो जाता है जहाँ पानी ज्यादा रुकता है। और उसके बाद अगर आपने कम उम्र के धान जो लगाने हैं उसकी पौध की बुआई जो है वो 25 मई से लेके आप 15 जून तक कभी भी कर सकते हो। उसकी वैरायटी है जैसे PR 126 है, PB 1509 है, PB 1692 है और शरबती है। ये सब 15 जून तक, 20 जून तक आप इनको बो सकते हो।
0: यहीं पे आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम पौध डालते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमारी पौध अच्छी तरह से तैयार हो सके। जी
2: देखो दो विधियां होती हैं इसमें। एक तो लोग कदहर करके बोते हैं, जो पानी छोड़ के उसमें पटेला लगा के उसमें वैसे बोते हैं ट्रैक्टर घुमा के उसमें या बैलों से।
0: जी
2: और एक विधि होती है सूखी वाली, शुष्क विधि। उसमें आप उन्हें खेत पहले समतल कर लेना होता है, उसके बाद उसमें पानी छोड़ के तो उसमें बीज का छींटा लगा देना होता है। बीज छींटा लगाने से पहले आप उसको 12 घंटे से लेकर 15 घंटे तक उसको भिगोना होता है।
0: जी
2: को लगभग 24 घंटे उसको दबाना होता है। दबाने के दौरान उसमें सुबह शाम उसमें पानी डालना होता है, उसमें हाथ से उसकी पलटी लगानी होती है कि
0: जी
2: बीज गर्म ना हो।
0: अच्छा
2: और उसको ज्यादा मोटा नहीं डालना होता, कि कम से कम उसको बस 5 इंच से ज्यादा मोटा उसकी बिछाई नहीं करनी है। किसी भी पेड़ के नीचे ठंडी जगह में छाया में उसको रखना है तो वो गर्म ना हो, गर्म होने से उसकी जर्मिनेशन खराब हो जाती है।
0: अच्छा
2: और उसके बाद यह है कि जब आप जिस खेत में आप पौध डाल रहे हो पहले तो उसमें आपको क्या करना है कि NPK या DAP उसमें 10 किलो प्रति

0: 15 घंटे डुबो के रखना है,
1: जी।
0: इससे बीच जो है संशोधन हो जाता है, जो पीज ऊपर तैर रहे हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दें।
1: अब हम यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे कि आपने दो तरह के बीज बताए, एक तो लंबी समय वाली प्रजातियां बताई, एक कम समय वाली प्रजातियां बताई, जिनमें आपने 15-09 और 16-92 बताई। तो
0: जी
1: देखने में आता हमारे किसान भाई जब 15-09 या 16-92 लगाते हैं तो उसमें कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं, तो इस समय हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि वो बीमारियां ना लगे, हमारे पौध में ही उसका बचाव हो जाए।
0: सबसे पहले तो इसको किसी अच्छी कंपनी के सर्टिफाइड बीज ही बोने चाहिए। ये सारे बीमारी जो है ये बीज से शुरू होती है।
1: जी
0: जो अगर बीज आपके बढ़िया कंपनी अच्छे अच्छे होंगे तो उसमें जो कंडुआ वगैरह कोई नहीं आएगा। जैसे कुछ कंपनियां हैं जिनमें बहुत ना के बराबर जो है ये बीमारी आती है सूखने वाली, जिसको
1: जी
0: बकैना रोग कहते हैं। जैसे 15-09 है, 16-92 है,
1: जी
0: और इसमें PR 126 में जो हल्दी रोग आता है,
1: जी जी
0: उसके प्रकोप से बचने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का उपचार करना ही पड़ेगा।
1: बीज उपचार करना होगा
0: जी,
1: जी, बीज उपचार करके लगाएं
0: बीज
1: पौध में,
0: उपचार करके लगाएं, उसके बाद भी खेत में आप ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास जरूर डालें एक बार।
1: स्प्रे करें हमारे किसान भाई या खाद में मिलाकर डालें?
0: को आप गोबर की खाद में मिला के डालो या फिर गुड़ के घोल में बना के डालो तो वो ज्यादा बेहतर है।
1: तो ज्यादा अच्छा रहता है।
0: जी, उसका ज्यादा है।
1: इस समय हमारे बहुत से भाई आपको सुनना है, क्या सलाह देना चाहोगे पौध डालते समय, कोई विशेष बात हो जिस पर ध्यान रखें हमारे किसान भाई?
0: बस अच्छी कंपनियों के बीज कई सालों से चली आ रही हैं, उनकी के बीज डालें। सर्टिफाइड बीज से को जरा तौबा ही करें, ज्यादातर फाउंडेशन ही बीज बोया करें। बीजों में अच्छी क्वालिटी देखो, उसमें कंडुआ है या नहीं है, क्योंकि बीज में दिख जाता है कंडुआ, वो लगा हुआ दिख जाएगा कंडुआ। जिसमें कंडुआ दिख रहा है तो उस बीज को ना लें।
1: जी, आज आपसे बात हुई, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे विशेषज्ञ की राय, धान की प्रजातियां और नर्सरी डालने में सावधानियां, जानकारी दे रहे थे श्री जसवीर सिंह जी, और आपसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे थे हमारे प्रवीण भैया। तो प्रवीण भैया
1: और भैया देखो, अब जो है हमारा कृषि पत्रिका खेत कल्याण को कार्यक्रम हो ना, वो
2: जी
1: यहीं पे होता समाप्त।
2: जी

0: और भैया देखो, अब जो है किसान भाई इनको बता दें कल के मौसम को हाल, जिससे कि वे बाई के हिसाब से अपने खेती बाड़ी को काम कर सकें। और भैया देखो, कल को अधिकतम तापमान जो है वो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त करी गई है।
1: और वायुमंडल में आर्द्रता 45% और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बहने की उम्मीद करी गई है।
0: भैया देखो, जब तो हो मौसम को हाल, और अब चलते चलते बता दें कि कल हमारे कार्यक्रम में क्या क्या होगा। कल एक चर्चा होगी जिसका विषय होगा फसल चक्र का महत्व
1: और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
0: और
1: कार्यक्रम लोक मंजरी
0: जो कि हमारो फरमाइशी कार्यक्रम होगा, जिस पे हम किसान भाइयों को लोकगीत रसिया नौटंकी सुनवाएंगे। तो हमारे किसान भैया कल जो है पत्र भी भेज सकते हैं, और हमारे किसान भैया हमें कल फ़ोन भी कर सकते हैं, और फ़ोन करके जो है अपने पसंद के लोकगीत रसिया और नौटंकी जो है वो सुनना चाहते हैं वे सुन सकते हैं।
1: और भैया, कृषि संकेत में हमारे जो किसान साथियों को कल जानकारी दी जाएगी, सुकर पालन लाभकारी व्यवसाय और जाके साथ साथ मौसम की जानकारी भी दी जाएगी।
0: भैया देखो, अब अपने कार्यक्रम में समय बिल्कुल ना है
1: जी,
0: तो चलन से पहले किसान भाई को बता दियो कार्यक्रम को पतो। कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901। और अब अंत में अपने भैया प्रवीण
1: और भैया पंकज को दे अनुमति।
0: राम राम, राम।

प्रवीण कुमार और पंकज बाबू सक्सेना से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 7 बजे हैं।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य प्रभा। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे ब्रजेंद्र कुमार तिवारी से उनका काव्य पाठ।
1: कुछ गीत आपके सामने प्रस्तुत हैं। शुभ्र व्योम बदनाम हो गया तारा गण के व्यभिचारों से, उषा से आलिंगन जैसी लिपटी कोहरे की बरमाला, निशा द्वार पर नशा घोलती उन्मादिनी हवा की हाला। सुभग चांदनी कजराई है, सुभग चांदनी कजराई है संक्रमणों के अंधियारों से, शुभ्र व्योम बदनाम हो गया तारा गण के व्यभिचारों से। आतप व्यवहारों में रूठे फूलों से सबनम के मोती, आतप व्यवहारों में रूठे फूलों से सबनम के मोती, अरुणोदय की प्रीत सेज पर अस्तांचल की आभा सोती। आतप व्यवहारों में रूठे फूलों से सबनम के मोती, अरुणोदय की प्रीत सेज पर अस्तांचल की आभा सोती। सूरज का संन्यास भ्रमित है, सूरज का संन्यास भ्रमित है जुगनू दल के उजियारों से, शुभ्र व्योम बदनाम हो गया तारा गण के व्यभिचारों से। दिग्दर्शन के नक्षत्रों पर धौल रिक्त घन पर्दे डालें, स्वार्थ स्वान के काटे चाटे जैसी कर्म ग्रहों की चालें, स्वार्थ स्वान के काटे चाटे जैसी कर्म ग्रहों की चालें। आलोकों की अर्थी उठती, आलोकों की अर्थी उठती धूम्र केतु के गलियारों से, शुभ्र व्योम बदनाम हो गया तारा गण के व्यभिचारों से। अहम ज्योति के तेज उलझते लिविन की निहारिकाओं में, प्रणय तड़ित की छीण ज्योत्सना, प्रणय तणित की छीण ज्योत्सना अवशोषित सी उल्काओं में, दिशाहीन संदेशे बटते, दिशाहीन संदेशे बटते मेघदूत की बौछारों से, शुभ्र व्योम बदनाम हो गया तारा गण के व्यभिचारों से। हारे पग जो गए चांद तक व्योम कहाँ मुट्ठी में बंधता, ताज महल की मीनारों से प्रेम रथी का अथ कब दिखता। हारे पग जो गए चांद तक व्योम कहाँ मुट्ठी में बंधता, ताज महल की मीनारों से प्रेम रथी का अथ कब दिखता। मिलन हुआ साकार कभी क्या, मिलन हुआ साकार कभी क्या क्षितिज सरीखे अभिशारों से, शुभ्र व्योम बदनाम हो गया तारा गण के व्यभिचारों से। शुभ्र व्योम बदनाम हो गया तारा गण के व्यभिचारों से। एक दूसरा गीत प्रस्तुत है। बांसुरी खामोश रहना पांच जन्यों के सफर में, बांसुरी खामोश रहना पांच जन्यों के सफर में, हर अधर पर नाचती हैं अग्नि की अभिशारिकाएं, हर अधर पर नाचती हैं अग्नि की अभिशारिकाएं, हर नजर के तेवरों में दहशती बहती हवाएं, हर अधर पर नाचती हैं अग्नि की अभिशारिकाएं, हर नजर के तेवरों में दहशती बहती हवाएं। उंगलियों के रक्त डूबी गुरुपदी निष्पक्षताएं, धर्म की प्रतिबद्धताएं बाण सैया संग अधर में, धर्म की प्रतिबद्धताएं बाण सैया संग अधर में। बांसुरी खामोश रहना पांच जन्यों के सफर में। धर्म का जयनाद कितना, धर्म का जयनाद कितना युद्ध दुंदुभ के स्वरों में, पादुका सादर छिपी या छल छिपा पीतांबरों में। धर्म का जयनाद कितना युद्ध दुंदुभ के स्वरों में, पादुका सादर छिपी या छल छिपा पीतांबरों में। ऋषि मनह से अस्थियों के दान तक जायज हुए हैं, ऋषि मनह से अस्थियों के दान तक जायज हुए हैं। कोई मर्यादा कहाँ अवशेष बचती है समर में। बांसुरी खामोश रहना पांच जन्यों के।

सफर में बल मिले छल छद्म को ही, बल मिले छल छद्म को ही हर महाभारत क्षणों में बर्बरिक के शौर्य ढकते, बर्बरिक के शौर्य ढकते रण ध्वजा आरोहणों में अस्ति के अस्तित्व से ही, अस्ति के अस्तित्व से ही तर्क को औचित्य मिलता। आईने बिकते नहीं हैं सूरदासों के नगर में बांसुरी खामोश रहना पांचजन्यों के सफर में। खोज में अमरत्व के ही चिंतनी मंथन हुए हैं, खोज में अमरत्व के ही चिंतनी मंथन हुए हैं। नीलकंठी साधना पर शीश जग के नत हुए हैं, नीलकंठी साधना पर शीश जग के नत हुए हैं। अंजुरियों की कोख में फिर सिंधु भरना है अगस्त्यों, अंजुरियों की कोख में फिर सिंधु भरना है अगस्त्यों। आंसुओं का ज्वार उमड़ा दिखता हर एक नजर में बांसुरी खामोश रहना पांचजन्यों के सफर में। देवता की पंक्ति दानव युक्ति से फिर मिल गया है, देवता की पंक्ति दानव युक्ति से फिर मिल गया है। वह अंधेरा फिर धुआं बन रोशनी में घुल गया है, वह अंधेरा फिर धुआं बन रोशनी में घुल गया है। तीक्ष्ण गुण कारण सुदर्शन, तीक्ष्ण गुण कारण सुदर्शन नाचता है तर्जनी पर क्रांति के जय घोष से ही। चेतना है विश्व भर में बांसुरी खामोश रहना पांचजन्यों के सफर में, बांसुरी खामोश रहना पांचजन्यों के सफर में। एक हिंदी नज्म प्रस्तुत है। अभी उठकर चलें कैसे, अभी उठकर चलें कैसे पगों की बेड़ियां बनकर तुम्हारे नेह की प्रस्तुति डगर रोके खड़ी है। अभी उठकर चलें कैसे पगों की बेड़ियां बनकर तुम्हारे नेह की प्रस्तुति डगर रोके खड़ी है। नजर के सामने हैं व्याप्त, नजर के सामने हैं व्याप्त मोहक कल्पना के स्वप्न बेसुध जो हिरण जैसे भटकते ही रहे अक्सर। नजर के सामने हैं व्याप्त मोहक कल्पना के स्वप्न बेसुध जो हिरण जैसे भटकते ही रहे अक्सर। वो सपने भी हैं क्या सपने दिखे जो नींद के भीतर, करें जो कैद ही निदिया सपन वो हथकड़ी है। अभी उठकर चलें कैसे तुम्हारे नेह की प्रस्तुति डगर रोके खड़ी है। गढ़ूं कुछ शब्द के रूपक, गढ़ूं कुछ शब्द के रूपक गहूं कुछ अर्थ के आयाम, समझ लूं नेह में जूठे हुए अधरों की भाषा को ढुलकते ओट के आंसू की भी जलती पिपासा को। कहीं यह प्यास जीवन में रतन जैसी जड़ी है, तुम्हारे नेह की प्रस्तुति डगर रोके खड़ी है। झुके नैनों के आमंत्रण निरख करके पिघलते धैर्य के हिमखंड के झरने कपाते रूह अंदर तक, और बिखरती कुंतलों की गंध जोहे आस बिस्तर तक। कसम से किंतु मर्यादा इरादों से लड़ी है, तुम्हारे नेह की प्रस्तुति डगर रोके खड़ी है। विवस्ता की हवा कुछ और भी ज्वाला को भड़काती, निकटता दूरियों में खो विकल करती सकल संस्कृति। विदाई का समय आया निवेदित अश्रु की आहुति, मगर प्रस्थान से भारी प्रतीक्षा की घड़ी है, तुम्हारे नेह की प्रस्तुति डगर रोके खड़ी है। अभी उठकर चलें कैसे पगों

0: की बेड़ियां बनकर तुम्हारे नेह की प्रस्तुति डगर रोके खड़ी है।
1: ब्रजेंद्र कुमार तिवारी से अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ काव्य प्रभा। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: ये है आकाशवाणी रामपुर, जिसे सुन रहे हैं आप मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 7:15 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण। श्रोताओं, पहले सुनिए आज शेड सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:31 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत ये कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार होंगी सोनाली व रूप कुमार राठौर। रात्रि 8 आप सुनेंगे ईमेल फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। 8:15 पर हम आपको जुड़वाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे चार धाम यात्रा 2026 रेडियो रिपोर्ट। फिर 8:30 पर हम पुनः आपसे जुड़ेंगे आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से और आप सुनेंगे ईमेल फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। रात्रि 9:30 पर सबरस ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी आज शेष सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल प्रथम सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कल सवेरे 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:25 पर गांधी चर्चा स्वास्थ्य संदेश इस कार्यक्रम को हम आप तक पहुंचाएंगे 6:35 पर। इसके अलावा आप सुनेंगे 7 भारतीय संस्कृति में परिवार का महत्व, वार्ताकार होंगी प्रीति अरोरा। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा प्रातः 7:00। फिल्म संगीत का कम्पेट प्रोग्राम सुबह सवेरे आप तक पहुंचेगा 7:31 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे 102.9 मॉर्निंग हिट्स। उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से आप सुनेंगे 9:30 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत नातिया नशिस्त होगी जनाब मजहर अली, मोहतरमा फरीदा बेगम और जनाब आमिर रब्बानी की। इसके अलावा आप सुनेंगे जायके का सफर पर कंपेयरिंग। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाएंगी आयशा और फरीद उल्ला खां। पूर्वाहन 11:00 आप सुनेंगे धरोहर ये कार्यक्रम। इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जिंदगी के आईने में। कल आप तक पहुंचेगी इस धारावाहिक की कड़ी संख्या 2। श्रोताओं, ये थी एक जानकारी हमारे केंद्र से कल प्रथम सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 7:19 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 क्षेत्रीय रिस्पॉन्स सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई हैं। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवा कर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे एलपीजी पर निर्भरता हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देशहित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने, काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
4: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि जो साइकिल या ई कार्ट का प्रयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं वो ई व्हीकल का यूज, तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना विश्वविद्यालय का अपना कर्तव्य है।
0: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया।

0: और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
1: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए 1 माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
2: निराश्रित गोवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 2,71,093 सीटों के सापेक्ष 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत, 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा पशुपालक समितियों को 1 महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी रामपुर है। 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

अहले दिल्ली में से जिन लोगों ने मिर्जा को जवानी में देखा था, उनसे सुना गया है कि वो जवानी में शहर के निहायत हसीन लोगों में शुमार किए जाते थे। इस हुस्न ने हर इश्क में उन्हें आशिक से ज्यादा माशूक बनाया है। गालिब का इश्क उनकी शख्सियत की तरह रविश से अलग है।

0: रूप कुमार राठौर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं अब सोनाली, इनके स्वर में ये गीत।
1: रात में एक पैकर खूबसूरत कमाल खूबी के साथ मेरे मालिक ने मेरे हक में ये एहसान किया। खाकि नाचीज था मैं, सो मुझे इंसान किया। मुझको शायर न कहो मीर कि साहब मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया।

कायम नहीं रह सकता था। बेश्क जिंदगी वबाल है, इश्क में जी की बाजी लगा देना कमाल है। इश्क बनाता है, इश्क ही कुंदन कर देता है। दुनिया में जो कुछ है इश्क का जहूर है। आग इश्क की सोजिश है, पानी इश्क की रफ्तार है, खाक इश्क का करार है, हवा उसका इस्तरार है, मौत इश्क की मस्ती, जिंदगी इश्क की होशियारी है, रात इश्क का ख्वाब और दिन इश्क की बेदारी है, नेकी इश्क का कुर्ब है, गुनाह इश्क की दूरी है, जन्नत इश्क का शौक है, दोज़ख इश्क का शौक है। कौन मकसद को इश्क बिन पहुंचा, आरजू इश्क मुद्दा है, इश्क सारे आलम में भर रहा है इश्क।

रूप कुमार राठौर और सोनाली की आवाजों के साथ सुगम संगीत, ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8:01 हुए हैं। प्रस्तुत हैं ईमेल फरमाइशी आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को आकांक्षा की ओर से बहुत प्यारा सा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं देवदास इस फिल्म से। आज कार्यक्रम में आप कर सकते हैं हमें ईमेल। कार्यक्रम का ये गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिद दरानी और हिना कौसर। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। नूर महल महसौर सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, शाजिया शाहीन और इनके साथ हैं नाजिया नूरी नाज। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे।

खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कलानी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। और इन्हीं के साथ हैं जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार और उल्हा आसमा बेलदार। वंदना नगर इंदौर से हैं हमारे श्रोता पूजा, बबीता, शोभा, रेखा रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, परी नारायण, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक और नारायण भाव खर्चे। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए श्रेया घोषाल, इनकी आवाज में देवदास फिल्म का गीत।

गीत गाता चल कार्यक्रम में अब सुनते हैं आप सभी के लिए ये गीत। संत स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनम भाटिया और पप्पी भाटिया। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, सायना काजल, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नागमा नास मंसूरी। भोलेनाथ खलौनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण करजे। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयराम सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से हमारे श्रोता हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। बेरेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री टामड़े, वैष्णवी टामड़े, चंचल टामड़े, अर्जुन और धीरज। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में मुझसे शादी करोगी, इस फिल्म का गीत।

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल आकांक्षा के साथ। श्रोताओं, रात्रि के 8:15 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हमारा अगला कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, अब से कुछ ही पलों पहले तकनीकी कारणों के कारण आकाशवाणी रामपुर से हम फिर से जुड़ गए हैं। रात्रि के 8:20 हुए हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गाता चल। एक बार पुनः इस कार्यक्रम को जारी रखते हैं और सुनवाते हैं आपको कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में हेलो ब्रदर, इस फिल्म का गीत।

हेलो ब्रदर, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाएंगे आपको याराना। इस फिल्म से आवाज़ होगी कविता कृष्णमूर्ति की, संगीत अनु मलिक का। कार्यक्रम के ये दोनों गीत थे आप सभी श्रोताओं के लिए। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी। चक 5 MD पत रोड़ा से मंगल, रोशनी, अंकुर, इंदु और सुनील जनागल। गगनदीप थाटी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका, वाणी, ये हमारे श्रोता हैं टोरा वोला नवाशहर पंजाब से। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत सिद्दीकी, मोहम्मद रेहान, सिमरन परवीन और माहिरा नूर। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और निवान शर्मा। मेहरनगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर और प्रणीता गवाड़कर। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबे राही और महराज जहां, ये हमारे श्रोता हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। जामबुरुन से हमारे श्रोता हैं दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, साध्वी जोशी और इनके परिवार के सभी साथी। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, चमनलाल मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीत।

पूजा, बविता और अंशु। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरोला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, मुस्तबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम का अगला गीत याराना, इस फिल्म से।

0: या नाना इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल आकांक्षा के साथ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। आज ये कार्यक्रम है हमारा ईमेल पर आधारित। कार्यक्रम का ये गीत आपको सुनवाएंगे खूबसूरत, इस फिल्म से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल। वाड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। करूला मुरादाबाद से अयूब खान। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, ये हमारे श्रोता हैं ग्राम व पोस्ट लदावली से। दुर्गा कलानी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डाला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी, नजर अंसारी, छोटे भाई और फैजल अंसारी। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए खूबसूरत इस फिल्म का गीत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

0: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। 8:45 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 billion से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
4: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी विप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य

0: जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के ये भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पीचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces special intensive division phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. US President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS foreign ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but different.

0: A nation that depends excessively on others for critical defense capability remains vulnerable in times of crisis. We must design, develop, produce, maintain, and upgrade key systems within our own national ecosystem.
1: U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping today held talks in Beijing. Both leaders stressed on cooperation over confrontation despite tensions over trade, technology and regional security. The meeting marked Trump's first visit to China during his second stint of presidency. According to the White House, the two sides agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy. Addressing the gathering after the meeting, President of China Xi Jinping stressed on fostering cooperation over confrontation, saying that China and the United States should be partners, not rivals. Mr. Trump responded with an equally positive tone, saying U.S.-China relations would become better than ever before. In Asian Senior Weightlifting Championships, India's Ajit Narayan delivered a remarkable performance to secure a bronze medal each in both clean and jerk and overall in the men's 71-kilogram category at Gandhinagar, Gujarat today. Competing against some of Asia's finest weightlifters, Ajit showcased exceptional strength and composure to register a total lift of 314 kg, including 174 kg effort in clean and jerk to earn India place on the podium. In the Asian Boxing Under 15 Championships, India finished with an impressive 27 medals, including 9 gold, 6 silver and 12 bronze in Tashkent, Uzbekistan today. India topped the under 15 girls standing with 7 gold, 2 silver and 5 bronze medals, while the under 15 boys contributed 2 gold, 4 silver and 7 bronze medals. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Mahe, South Interior, Karnataka, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year, BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces special intensive division phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress an opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in the men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. And that is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नज़रसानी का तीसरा मरहला शुरू होगा। कांग्रेस लीडर वी.डी. सतीशन ने गवर्नर से मुलाकात की और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के वाकयात में 70 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुज खोले जाने पर जोर दिया। एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजित नारायणन ने गुजरात के गांधीनगर में मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बरस भारत की सदारत में ब्रिक्स कसीर सतहियत को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फरोग देने, इक्तसादी मजाहिमत को बढ़ाने और मजीद शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात के लिए आने वाले ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफद के सरबराहान के साथ बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को बढ़ाने और आलमी जुनूब की उमंगों को आवाज़ देने की गरज से ब्रिक्स एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग नई दिल्ली में इन दिनों जारी ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग से अलग मुनक़िद हुई। इससे कल ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही बयान में वज़ीर खारजा

0: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमन और सलामती को आलमी निजाम में मरकजी हैसियत ही हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया तनाज़ात मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत ही को उजागर करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दिनों जारी तनाज़ात इक्तिसादी गैर यकीनी की सूरत हाल और तजारत टेक्नोलॉजी और आबोहवा से मुतालिक चैलेंजेस आलमी मंजरनामे को शक्लो सूरत दे रहे हैं और इस नौ की तवक्कुआत बढ़ रही हैं कि ब्रिक्स इस सिलसिले में एक तामीरी और इस्तेहकाम अता करने वाला किरदार अदा करे। इस मीटिंग का मौजू है मज़ाहिमत इख्तराआत तआवुन और पायदारियत के लिए तामीर, इंसानियत को अव्वलियत देने और ब्रिक्स के अवाम मरकूज होने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन से इस मौजू के लिए तहरीक मिली है। कल दूसरे दिन ब्रिक्स मेंबरान और शरीक ममालिक एक इजलास में हिस्सा लेंगे जिसका मौजू है ब्रिक्स एट द रेट 20, मज़ाहिमत इख्तराआत तआवुन और पायदारियत के लिए तामीर। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर सतही निज़ाम में इस्लाहात के मौजू पर इजलास होगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात एशिया की तेजी के साथ बढ़ती हुई इक्तसादी शराकत दारियों में से एक को मजीद तौसी देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी आला सतही तबादला ख्याल की गरज से कल अबू धाबी पहुंच रहे हैं। इस तबादला ख्याल में तजारत, सरमायाकारी, तवानाई के तहफ्फुज और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी इक्तसादी मसरूफियात में तेजी के साथ होती हुई पेशरफ्त के माबैन हो रहा है। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात की तजारत माली साल 2024-25 में 100 अरब अमरीकी डॉलर के निशाने से तजावुज कर चुकी है। यह 2022 के जामे इक्तिसादी शराकत दारी के मुआहिदे या CEPA के तहत मुकर्ररा हदफ को मुकर्ररा वक्त से 5 साल पहले ही हासिल करना है। इस साल के अवाइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने 2032 तक बाहमी तजारत के निशाने को बढ़ाकर 200 अरब डॉलर मुकर्रर किया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी इक्तिसादी शराकत दारी के लिए मुसलसल कोशा हैं। जुमे के रोज होने वाली बातचीत में तवानाई के तहफ्फुज़ पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। UAE में भारत की तरफ से होने वाली बरामदात 36.63 बिलियन डॉलर से तजावुज कर गई है, जिसके सबब मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर में भारत की जानिब से होने वाली बरामदात का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि खुद किफालत और मिलकर काम करने की पहल दोनों ही कलीदी नौयत की खुद मुख्तारी हासिल करने और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए मुस्तकबिल में तैयार रहने की गरज से लाजमी हैसियत रखते हैं। जनाब सिंह ने नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे एडिशन के इफ्तिताही इजलास के दौरान एक वीडियो पैगाम में ये बात कही। वजीर मौसूफ ने खुद किफालत को न सिर्फ एक इक्तसादी हदफ बल्कि एक कलीदी जरूरत भी करार दिया। उन्होंने वजाहत की कि अगर कोई मुल्क अहम तरीन दिफाई सलाहियतों के लिए दूसरों पर ज्यादा ही मुनहसर हो तो वो बहरान के दौर में जद पजीर रहता है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत अपने कौमी निज़ाम के अंदरून अहम नौयत के दिफाई निज़ाम को वजा करे, तैयार करे, बनाए, बरकरार रखे और इन्हें अपग्रेड करता रहे ताकि वो कलीदी नौयत की खुद मुख्तारी हासिल कर सके। महकमा दिफा के वजीर मुमलिकत संजय सेठ ने ऑपरेशन सिंदूर को एक तारीखी कामयाबी करार दिया, जिसने भारत की मुल्क में ही तैयार हथियारों और निज़ामों को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई तेज और तालमेल पर मबनी ऑपरेशन अंजाम देने की सलाहियतों का मुजाहरा किया। भारत के चुनाव कमीशन ने ऐलान किया है कि राय दहिंदगान की फहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी SIR मरहला 3 शुरू किया जाएगा। इसे 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मरहलेवार मुनाकिद किया जाएगा। इस मरहले में जो रियासतें शामिल हैं उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल हैं। मरकज के जेर इंतजाम जिन इलाकों का इस मरहले में अहाता किया गया है उनमें दिल्ली का कौमी राजधानी खित्ता, चंडीगढ़ और दादर नागर हवेली, नीज, दमन और दीव शामिल हैं। SIR मरहला 3 के दौरान 3,94,000 से ज्यादा तादाद में बूथ लेवल अफसरान 36,73,00,000 वोटरान से घर घर जाकर मालूमात हासिल करेंगे। अपनी मालूमात अज खुद फराहम करने के मरहले के दौरान सियासी पार्टियों के जरिए मुकरर करदा 3,42,000 बूथ लेवल एजेंट उनकी मदद करेंगे। इसके साथ ही वोटर फहरिस्तों के SIR में मरहला 3 में पूरे मुल्क का अहाता किया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल नहीं है। इन 3 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मरदमशुमारी के

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। अब सुनिए रीता शर्मा के स्वर में भजन।

आकाशवाणी रामपुर से आप समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। अब सुनिए चार बैत, आवाज होगी साहबजादा की।

साहबजादा की आवाज के साथ सबरस। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में होगा।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है नाटक अहले वफा।

0: अरे बेटी जोया,
1: जी अब्बू जान,
0: जरा इधर आइए बेटी।
1: अभी आई अब्बू।
0: बात सुनिए।
1: जी कहिए
0: बेटी। आप हर वक्त पढ़ती रहती हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी खेला भी करो, दोस्तों में भी जाया करो, मिला करो उनसे, अम्मी भैया भाभी के पास भी बैठा करो।
1: हमें डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई भी मन से करनी पड़ेगी। और रही अम्मी भैया और भाभी की बात, तो आप तो जानते हैं अब्बू कि कोई भी हमसे ठीक से बात नहीं करता है।
0: अरे बेटा वो
1: बस बस एक आप ही हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं। सच कहें तो अम्मी और अब्बू दोनों का प्यार हमें आपने ही तो दिया है अब्बू, वरना इतनी बड़ी हवेली में हम खुद को तन्हा ही समझते हैं।
0: नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप असल में पढ़ती रहती हो ना, बस शायद ये सब लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते होंगे ना। बस बस यही बात है बेटी, बस बस।
1: नहीं नहीं अब्बू जान, अब हम बच्चा नहीं है। हम देखते हैं कि अम्मी आपकी तिमारदारी भी नहीं करती। हाँ बस एक हुस्ना आंटी और अहमद चाचा ही ऐसे हैं जो आपकी देखभाल करते हैं।
0: बेटी आप ठीक। ओह
1: अबू क्या हुआ अबू?
0: बेटी
1: अबू
0: जाओ जाओ जल्दी से।
1: अबू क्या हो गया आपको?
0: हुस्ना आंटी को बुला लो बेटी, हमारी हमारी
1: अबू
0: हमारी तबीयत बहुत बहुत खराब हो रही है बेटी, जल्दी आ।
1: अबू जान उन्हें बुलाने के लिए आप हमें ही भेजते हैं, हमें बहुत अजीब लगता है।
0: जल्दी जाओ बेटी,
1: हर वक्त वहाँ से गाने बजाने की आवाजें आती रहती हैं।
0: हमारा आखिरी आखिरी वक्त है शायद बेटी, जल्दी उन्हें।
1: ऐसी बातें ना करें अब्बू जान, मैं भी बुला कर लाती हूँ। आदाब आंटी।
2: हाँ
1: जल्दी चलिए, जल्दी चलिए आंटी, अब्बू जान की तबीयत बहुत खराब हो रही है।
2: क्या? अच्छा अच्छा चलो चलो चलो चलो जल्दी से।
1: अब्बू आज आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आप हौसला रखिएगा,

0: डॉक्टर को फोन करती हूँ अभी।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं उस नारा बेगम नहीं, कैंसर कभी ठीक नहीं होता उस नारा।
0: कैसी बात कर रहे हो आप?
1: बहुत बहुत देर हो चुकी है, ऐसा लगता है जैसे जैसे जैसे बदन में आग की भट्टी जल रही है सुनहरा। तुम मेरी बात गौर से सुनो सुनहरा।
0: बोलो बोलो
1: सुनो
0: बोलो।
1: ये देखो, फैजपुर वाली 20 बीघा जमीन का बैनामा मैंने मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। ये कागज तुम संभाल कर रख लो। दो लाख रुपए की FD जोया के नाम की है। इसे अच्छा अच्छा डॉक्टर बनाना सुनारा, अच्छा डॉक्टर बनाना। तुमने बहुत साथ दिया है मेरा सुनारा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें तुम्हारा असल मुकाम ना दिला सका उस नारा।
0: आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे शौहर हैं, मेरे सरताज हैं, मेरी जागीर तो आप हैं। आपके बिना यह जागीर मेरे किसी काम की नहीं। बस बस आप सलामत रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरी जिंदगी के नाखुदा हैं, जिसने मेरी कश्ती को गुनाहों के मझधार से निकाल कर नेकी और अच्छाई के साहिल तक पहुंचाया है। वरना ये जिंदगी तो कब के मौजे हवादिश में कहीं गुम हो चुकी होती।
1: जज्बात से काम ना लो हुस्नारा। हकीकत में जीना सीखो। पैसे के बिना जिंदगी एक आजाब सी लगती है उस
0: नारा। अरे देखो तो, बोलते क्यों नहीं मेरे खुदा। अबू जान, मेरा आखिरी सहारा भी तूने छीन लिया क्या? अबू जान, मेरे अबू जान, मुझे तन्हा छोड़कर मत जाइए, मत जाइए मेरे अबू जान।
2: क्या हुआ अबू जान को?
0: भाई जान अबू जान अब नहीं रहे, सबको छोड़कर चले गए हैं।
2: चुप हो जाइए सब लोग, अल्लाह की शायद यही मर्जी थी।
3: बेटे अफरोज, तुम्हारे अब्बू जान को गुजरे 15 दिन गुजर गए, पर ये हुस्नारा बेगम हवेली से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कल तुम इनसे बात करना। मैं तो बात करना पसंद नहीं करती हूँ, कहीं इनकी नजर हमारी जायदाद पर तो नहीं?
2: ठीक है अम्मी, मैं कल बात करूंगा। हुस्नारा बेगम,
3: हाँ?
2: अब्बू जान के इंतकाल को 16 दिन हो गए।
3: तो?
2: तब से तुम यही हो। तुम्हारे यहाँ रहने से हमारी इज्जत और हवेली की बदनामी हो सकती है। हम चाहते हैं कि अब तुम अपने घर चली जाओ। 10-20 हजार रुपए चाहो।

0: तो ले जाओ, वो भी इसलिए कि तुम हमारी सौतेली माँ हो। और फिर कभी हवेली मत आना, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, समझी?
1: अफरोज, तमीज से बात करो, मैं आपकी माँ जैसी हूँ। मैंने सोचा था कि 40 दिन यही रहूंगी, आप अच्छी तरह जानते हो मैं अपनी मर्जी से कभी हवेली नहीं आई, तुम्हारे अब्बू के बुलाने पर ही आती थी, उनका हुक्म मानना मेरा फर्ज था। वो तुम्हारी माँ की तरह मेरे भी शौहर थे, तुम्हारी माँ तो उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखती थी, इसीलिए हवेली आती थी, वरना मेरी भी कोठी है, समझे?
0: तुम्हारी कोठी नहीं, कोठा है कोठा, यही फर्क है। यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। और रही तमीज की बात, तो अब हमें एक तवायफ तमीज सिखाएगी?
2: बेटे, इसके मुंह मत लगो, 10-20 हजार रुपए इसके मुंह पे मारो, ये चली जाएगी।
1: बेगम, आप 10-20 हजार की बात करती हो? खान साहब से मैंने निकाह किया था, इसलिए खान साहब की जायदाद में मेरा आधा हिस्सा है, ये आधी हवेली भी आप लोगों से खड़े खड़े खाली करा सकती हूँ, समझे? क्यों, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अफरोज मियां, घबराइए नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। आपकी जागीर आपको मुबारक, मुझे खान साहब 20 बीघा जमीन दे गए हैं, जो मेरे लिए काफी है। आपकी इज्जत और वकार का मैंने हमेशा ख्याल रखा, यही वजह थी कि मैं कभी हवेली आबाद करने नहीं आई। और तो और, मैंने अपनी ममता का भी गला घोट दिया बेगम साहिबा, कभी जोया को यह नहीं बताया कि मैं तेरी माँ हूँ, मेरी बेटी माँ के प्यार को तरसती रही, और उस पर आप इस तरह मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको।
3: तो क्या आंटी, आप मेरी माँ हैं, आज तक आपने बताया क्यों नहीं?
1: हाँ बेटी, आज बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी तुझे।
0: ओह, तो तुमने अपनी औकात दिखा ही दी, 20 बीघा जमीन की खातिर अब्बू जान से निकाह किया था, तुम अपने मकसद में अपनी चालबाजियों से कामयाब हो ही गई, अपने जमीर को बेचकर ये साबित कर ही दिया कि तुम एक तवायफ हो, मालो दौलत ही हर तवायफ का ईमान होता है, यही औकात थी तुम्हारी।
1: खामोश अफरोज मियां, आप हमें हमारी औकात बता रहे हो, आप जैसे रईस ज़ादे सुबह शाम हमारी दहलीज पर नाक रगड़ते और खुशियों की भीख मांगते नजर आते हैं, रही मालो दौलत की बात, तो रोजाना ये दौलत हमारे फर्श पर हमारे पांव के नीचे नजर आती है, आप जमीर की बात करते हो, हम अपना फन बेचते हैं अफरोज मियां, जमीर नहीं, आप जैसे रही ज़ादों का क्या जमीर है, जरा अपनी हवेली के कालीन उठाकर तो देखिए, तब पता चलेगा इनके नीचे गुनाहों की इतनी दलदल है कि आप जैसे लोग इस दलदल में गले तक धंसे हुए नजर आते हो। और रही 20 बीघा जमीन की बात, तो यह लो कागजात, मैं थूकती हूँ इस पर भी, चलो चलो बेटी।
0: जोया नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, वो यहीं रहेगी।
3: अम्मी, मैं आपके पास ही रहूंगी, आज तक आपने मुझे अपने से दूर रखा है, आज मुझे अपने साथ ले चलिए।
1: हाँ बेटी,
3: मैं तरस गई हूँ आपके प्यार के लिए, अब इस हवेली में नहीं रहूंगी, काफी बेइज्जती सहली, अब नहीं,
1: तो चलो चलो बेटी यहाँ से। आओ, आज से यही तुम्हारा घर है बेटी, यहाँ तुम्हारे आराम की हर चीज मौजूद है।
3: पर अम्मी, ये सब माजरा क्या है, मेरी समझ में नहीं आया।
1: आज ये सब तुम्हें बताना बहुत जरूरी समझती हूँ मैं, कहानी बहुत लंबी है, पर मुख्तसर सुनाती हूँ तुम्हें। मैं बेहद गरीब खानदान से थी, मैं किसी लड़के के साथ नहीं, अमीर बनने का ख्वाब लेकर घर से भागी थी। मुझे याद है वो ट्रेन, इसने ना जाने कौन से शहर मुझे छोड़ा था, शायद वो ट्रेन का आखिरी स्टेशन था, दो वक्त की भूखी प्यासी मैं जब स्टेशन से निकल कर शहर की तरफ भागी, मुझे चक्कर आ रहे थे, तभी मैं एक कार से टकरा गई, और जब होश आया तो खुद को शानदार कोठी में पाया, मेरे पास दो लोग बैठे थे, वो मियां बीबी थे, उन्होंने मेरे बारे में जानने की बहुत कोशिश की, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, उन्होंने मुझे घर पहुंचाने को भी कहा, पर मैंने कहा

0: अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बोले ठीक है तो तुम यही रहो, ये हमारा नौकर है नसीर, किसी चीज की जरूरत हो तो इससे कह देना। वो दोनों बड़े ही नेक इंसान थे। फिर एक दिन बीबी जी ने मुझसे कहा, बेटी इतनी बड़ी जिंदगी तन्हा कैसे गुजारोगी, ये नसीर भी अकेला है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा निकाह इस लड़के से हम करवा दें। मैंने भी हाँ कर दी, मेरा निकाह नसीर से हो गया। 3 महीने बाद नसीर ने मुझसे कहा, चलो चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, तुम्हें देखकर सब लोग बहुत खुश होंगे। मैंने साहब से छुट्टी ले ली है। हम दोनों रात भर ट्रेन में सफर करते रहे। सुबह को नसीर मुझे इस बाजारे हुस्न में दिलावर नाम के गुंडे के हाथ बेचकर कहीं गायब हो गया। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। दिलावर के कोठे पर तुम्हारे अब्बू का आना जाना था। एक रोज उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने दिलावर से कहा, इस लड़की से कुछ ना कहना, तुम्हारे अब्बू बड़े रसूख वाले थे, बड़े बड़े अफसरों और नेताओं से उनके ताल्लुकात थे। दिलावर डर गया। एक रोज तुम्हारे अब्बू ने मुझे निकाह की पेशकश की, जिसे मैंने कबूल कर लिया और आज मैं इस बाजार की मलिका हूँ। दिलावर जैसे गुंडे मेरे पीछे दुम हिलाते घूमते हैं। बेटी यह तो थी मेरी मुख्तसर कहानी, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, कहाँ एडमिशन लेना चाहती हो तुम?
1: अम्मी मुझे डॉक्टर ही बनना है, BBR मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है।
0: हाँ काफी दूर जगह है। खैर मैं दिलावर को बोल दूंगी, वह सुबह गाड़ी लेकर तैयार रहेगा, मेरे साथ चलना।
1: ठीक है अम्मी।
0: लो बेटी आ गया तुम्हारा कॉलेज, खूब मेहनत से पढ़ना।
1: जी अम्मी।
0: और हाँ अपना ख्याल भी रखना।
1: जरूर।
0: किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फोन करना, दिलावर लेकर आ जाएगा। अच्छा अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज अम्मी।
2: हेलो मेरा नाम रुखसार है।
1: हेलो मेरा नाम जोया है, आइए बैठिए।
2: कई रोज हो गए तुम्हें कॉलेज आए हुए, मैं देख रही हूँ या तो तुम पढ़ने में मशगूल रहती हो या फिर तन्हा रहती हो, न जाने किन ख्यालों में गुमसुम सी रहती हो।
1: नहीं रुखसार ऐसी बात नहीं है, आदमी को हमेशा अपने टारगेट को सामने रखकर सोचना चाहिए तो वो कभी भी अपनी मंजिल से भटक नहीं सकता, बस इसी तरह सोचती हूँ।
2: अच्छा मैं जरा लाइब्रेरी जा रही हूँ, एक बुक लानी है।
1: ओके।
3: हेलो मेरा नाम वामिक है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप हमेशा तन्हा नजर आती हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है शायद?
1: मैं जोया फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, और रही दोस्ती की बात तो दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर बनाना चाहिए। इस दौरे हाजिर में हर तरफ खुदगर्जी मतलब परस्ती का बाजार गर्म है।
3: वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? माशाल्लाह आप इतनी हसीन हो कि सारी उम्र आपके साथ गुजार सकता हूँ।
1: शुक्रिया, अच्छा चलती हूँ, खुदा हाफिज।
3: अरे आज फिर आप अकेली हैं?
1: अकेली कहाँ हूँ, आप जो आ गए हैं बैठिए।
3: शुक्रिया नवाजिश। वैसे जोया आपके फादर का क्या बिजनेस है?
1: मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है, हम जहानाबाद से हैं।
3: अच्छा।
1: और मेरे फादर एक टैक्सी ड्राइवर हैं।
3: जरा मुझे लाइब्रेरी जाना है। अच्छा फिर मिलते हैं, ठीक है, खुदा हाफिज।
2: अरे जोया देखो तो सही,
1: क्या
2: ये कार में वामिक ही है ना, लगता है इसने शादी कर ली, तभी तो ये लड़के वामिक को विश कर रहे हैं।
1: हाँ जानती हूँ जोया तुम्हारे दिल पर चोट लगी है। रुखसार ये अच्छा ही हुआ, झूठे एतवार का टूटना ही अच्छा है, शायद वो ये समझ बैठा कि ये गरीब लोग हैं, मोहब्बत के सिवा क्या दे सकते हैं, ऐसे लोग दौलत के पुजारी होते हैं। रुखसार वो केमिस्ट्री की बुक नहीं मिल रही है, जरा हेल्प करो यार।
4: वो मेरे पास है, आप ले लें, मैं बाद में पढ़ लूंगा।
1: नहीं नहीं आप पढ़िए, मैं कल देख लूंगी, कोई बात नहीं।

0: नहीं, ये लीजिए।
1: शुक्रिया।
0: नवाजिश, लगता है बहुत लगन है आपको, काफी मेहनत से पढ़ती हैं आप। ऐसे लोग ही मंजिलों की ऊंचाइयों को छूते हैं। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम जोया है, और आप?
0: जी, मुझे अरवाज खान कहते हैं।
1: आप भी मेहनत और लगन से पढ़ते हैं?
0: अगर सच पूछो तो आज मैं पढ़ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको देखने आया हूँ। वजह यह है कि कल यहीं आपको देखा था, ना जाने ऐसा क्या लगा जैसे इस वीरान दिल की जमीन पर चाहतों के कितने गुलाब खिल गए हैं। न जाने कौन सी कशिश है आप में, इसे इजहार मोहब्बत समझें या मेरा पागलपन, फैसला आप पर छोड़ता हूँ।
1: अरबाज साहब, ये जिंदगी के फैसले हैं, बहुत ही सोच समझ कर किए जाते हैं। मोहब्बत के पौधे को दिल की जमीन पर बोकर इसमें यकीन की खाद डाली जाती है और खूने दिल से इसे सींचा जाता है, तब कहीं जाकर ये पौधा परवान चढ़ता है।
0: अरे अरे, आप तो इमोशनल हो गई। मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं अहले वफा हूँ, पर वक्त आने पर ये साबित कर दूंगा। बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे फादर का कनाडा में होटल है, मैं यहीं अपने शहर में अपना एक अस्पताल खोलना चाहता हूँ, और मुझे आपका सहारा चाहिए।
1: डरती हूँ मेरी हकीकत सुनकर कहीं आपका ये खुमार उतर न जाए। फिर भी आज आपको बता रही हूँ कि मैं बरौरगंज की रहने वाली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक माँ के सिवा। जानते हैं आप मेरी माँ कौन है?
0: कौन है?
1: एक तवायफ है, तवायफ।
0: खामोश, खामोश हो जाइए सोया। अपनी औलाद के लिए कोई माँ तवायफ नहीं होती, वो सिर्फ माँ होती है। माँ, मैं सिर्फ जोया को जानता हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे हमेशा आपका इंतजार रहेगा।
1: रुखसार, रुखसार, उठो, जल्दी उठो रुखसार, जल्दी उठो रुखसार। आज मैं यतीम हो गई रुखसार।
2: क्या हुआ जोया?
1: मैं अकेली रह गई। आज मेरे सर से मेरी माँ का साया भी उठ गया।
2: क्या? क्या?
1: मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता।
2: हाँ, संभालो अपने आप को।
1: अभी अभी फोन आया है।
2: अरे,
1: कि अम्मी का इंतकाल हो गया।
2: हाँ, तो
1: अभी सम्भालो। निकलना है मुझे। दिलावर अंकल, दिलावर अंकल, ये क्या हो गया? क्या हुआ था अम्मी को? अब मैं अकेली रह गई, क्या करूं मैं, क्या करूं?
3: तुम्हारी माँ को रात 2 बजे हार्ट अटैक हुआ था।
1: क्या अम्मी?
3: पर तुम फिक्र मत करो,
1: अम्मी
3: मैं हूँ। वैसे भी सबको ये दुनिया छोड़कर जाना है एक दिन।
1: दिलावर अंकल, आज 15 दिन हो गए हैं अम्मी के इंतकाल को, 10वां भी हो गया। मेरी पढ़ाई जरूरी है, मैंने बैग तैयार कर लिया है। आप मुझे सुबह कॉलेज छोड़ाएंगे?
3: कैसा कॉलेज? अब तुम कहीं नहीं जाओगी।
1: क्या?
3: यहीं रहोगी, यहीं।
1: नहीं।
3: जो तुम्हारी माँ क्या करती थी, वही सब कुछ तुम्हें भी करना है, समझी?
1: नहीं, कभी नहीं।
3: और वैसे भी उनके मरने के बाद धंधा भी चौपट हो गया है, और फिर तुम्हारी माँ ने मुझसे काफी कर्ज लिया था।
1: क्या?
3: तुम्हारी पढ़ाई के लिए। वो कौन देगा? तुम्हारा बाप।
1: ये आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं? मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा आखिरी साल है। और रही बात कर्ज की, तो झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी पढ़ाई के लिए अब्बू जान ने मुझे पैसे दिए थे, और वही पैसे खर्च हुए हैं आज तक। आप भले ही मुझे ना पहुँचाए, मुझे सुबह हर हाल में जाना है। मैं खुद ही चली जाऊंगी।
3: मैं भी देखता हूँ तो कैसे जाएगी।
1: क्या
3: शबो?
1: नहीं,
3: इसकी निगरानी रखो, इसका खाना पीना सब बंद कर दो।
1: नहीं, ऐसा।
3: और ये कमरे से बाहर ना निकले, फिर भी ये ना माने तो हंटर से इसकी खार उधेड़ देना।
1: ऐसा मत करो, प्लीज।
3: और इसका फोन भी छीन लो।
1: मत करो ऐसा, प्लीज।
0: अरे रुखसार।
2: हाँ बोलो।
0: जोया को पूरा 1 महीना हो गया, फोन वगैरह भी नहीं किया। मैंने सोचा तुम्हें शायद कुछ पता हो।
2: अरबाज साहब, लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे तो उसने कभी अपने शहर का नाम तक नहीं बताया।
0: मुझे मालूम है।
2: अच्छा,
0: अब बरौरगंज, मैं वहीं तलाश करूंगा।
2: हाँ।
0: यही बाजार हुस्न है, जोया को यहीं कहीं होना चाहिए, आज नहीं तो कल सही।
1: अरबाज, अरबाज।
0: अरे, ये आवाज़ तो जोया की है, ऊपर कहीं से आई है। अरे जोया, तुम?
1: मैं अभी आई।

0: ये क्या? ये फेंका है जोया ने? क्या लिखा है इस पर्चे में, जरा देख तो लूं।
1: हरबाज, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरी निगरानी की जा रही है, मैं कैद में हूँ। आप इस वक्त यहाँ से चले जाओ और रात को 2 बजे गली के पहले मोड़ पर मिलना, तभी तुम्हारे साथ चलूंगी।
0: 2 बज चुके हैं। जोया अभी तक नहीं आई। शायद यही है। हाँ, भागती हुई आ रही है। यही है जोया।
1: चलो जल्दी निकलो। हाँ, चलो, निकलो यहाँ से अरबाज।
0: चलो जल्दी चलो।
2: ए, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? रुको,
1: जल्दी भागो।
2: रुको वरना गोली मार दूंगा। रुको सोया, मैंने तुझे देख लिया है। रुक जा वरना।
1: अरबाज, ये क्या हो गया? अरबाज, आप ठीक तो है?
0: हाँ, मैं ठीक हूँ।
2: तू क्या समझती है, दिलावर के जाल से आजाद हो जाएगी? ये कल का छोकरा दिलावर को बेवकूफ बना देगा। चल उठ, चल,
3: इसके पास छोड़ दे, चल, इसे जाने दे, चल।
0: भले ही मुझे गोली मार दे मेरे सीने में,
3: इसे जाने दे। अरे मैं कहता हूँ जाने दे दिलावर।
2: अच्छा, तो तू आशिक है इसका? तेरा खात्मा तो बहुत जरूरी है बच्चे।
1: अरे क्या आपने दिलावर को गोली मार दी या किसी और ने?
0: नहीं, मैंने ही अपने रिवॉल्वर से गोली मारी है इसके। मैं जोया पूरी तैयारी से आया था। शायद मेरा पांव बेकार हो चुका है जोया, गोली ने बस। जल्दी से मुझे सड़क तक ले चलो।
1: मैं भी ले चलती हूँ, आप घबराइए मत।
0: वह डॉक्टर मेरा दोस्त कार लिए खड़ा है। चलो जल्दी,
1: चलिए,
0: खून काफी बह चुका है। चलो सोया,
1: चलिए। हर बस आप ठीक है ना
4: जोया? ऐसा करो, इसे जल्दी से गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा दो।
1: मैं अभी लेटाती हूँ।
4: और ठीक है जोया, और तुम फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं हूँ ना। चलो क्लिनिक चलते हैं।
1: चलिए जल्दी चलिए।
4: अरबाज लगता है बेहोश हो गया है।
1: अरबाज जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए प्लीज।
4: जोया मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, अरबाज की टांग काटनी ही पड़ेगी।
1: क्या?
4: और जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, गोली का असर ऊपर चढ़ रहा है, खतरा हो सकता है।
1: अरबाज, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, खुदा के वास्ते इनकी जान बचा लीजिए प्लीज।
4: ठीक है, तुम फिक्र मत करो जोया, अरबाज मेरा भी दोस्त है।
1: अरबाज,
0: जोया,
1: अरबाज
0: देखो ये मेरी कटी हुई टांग, आपको हमेशा मेरे अहले वफा होने का एहसास दिलाती रहेगी।
1: नहीं अरबाज, नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आगे आगे कुछ मत कहिए। मैं तमाम उम्र आपके साथ गुजार दूंगी, एक साई की तरह।
0: जोया
1: चलो, मैं आपका ख्वाब पूरा करूंगी, हम साथ रहकर अपना अस्पताल खोलेंगे।
0: जोया,
1: अरबाज,
0: जोया,
1: अरबाज।
5: अहले वफा, अभी आप सुन रहे थे ये नाटक। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फरमाइशी कार्यक्रम गीतांजलि। गीतांजलि कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को आकांक्षा की ओर से बहुत प्यारा सा नमस्कार।

शोर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी मुकेश की, साथ निभा रही थी लता मंगेशकर। गीत को लिखा था संतोष आनंद ने। गीतांजलि कार्यक्रम में सुनवाएंगे आपको अगला गीत काला बाजार। इस फिल्म से आवाज होगी मोहम्मद रफी की। गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। सरो चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया शुएब खान, साइमा खान, मुस्तबा खान, आफिया खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। बटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खांडवा, ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, गायत्री धनजे, विशाल कुमार धनजे और शीला धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या प्रियंका। जर्डू वर्डू से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबेराही और महराज जहां। दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिर्क, जयतेक बिर्क और मीका बिर्क। आई सुनते हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये गीत, शैलेंद्र का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज में बना हुआ और फिल्म का नाम है काला बाजार।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि आकांक्षा के साथ। अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। वैष्णव कलानी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलगमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामबुरुन से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष, पृथ्वीराज, साध्वी और इनके परिवार के सभी सदस्य। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। एंड्रोम थाने के पास बंद्रा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज में शब्दों को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर और मुकेश की। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाएंगे आपको वंश, इस फिल्म से आवाज़ होगी लता मंगेशकर और एसबी बाला सुब्रमण्यम की। कार्यक्रम के ये दोनों गीत हैं आप सभी श्रोताओं के लिए। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सनील पोहरकार, साहिल पोहरकार और सुजाता पोहरकार। कोहिनूर तिराहा के पास से अख्तर हुसैन, बहरूनिशा असलम हुसैन, महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत रॉय, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुड़त। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय आंचल, आकांक्षा, आकाश, विक्की सैनी, दक्ष, छवि, रुद्र, मानवी और इनके परिवार के सभी साथी। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए वंश, इस फिल्म का गीत।

0: कार्यक्रम के इसी गीत के साथ गीतांजलि अब संपन्न करने की आकांक्षा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 11 बजने को है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप

0: कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected to focus on trade, investment, energy security and emerging technologies. India-UAE trade crossed the $100 billion mark in the financial year 2024-25, achieving the target set under the 2022 Comprehensive Economic Partnership Agreement or CEPA 5 years ahead of schedule. The Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. This phase will cover Andhra Pradesh, Telangana,